विविध भारती का ये नागपुर केंद्र है। श्रोताओं, ठीक 6 बजे आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से। प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण

0: बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज हुरमुज जल डमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हुरमुज जल डमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारत।

स्वयं पर विश्वास सदैव रखना चाहिए। ये था आज का चिंतन। लीजिए सुनते हैं भक्ति रचनाएं वंदनवार में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती झरोका में। लीजिए सुनिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 229 6:35 से। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार, कलाकार एसएल कंडारा। इस कार्यक्रम का 7वां भाग आज आप सुनेंगे समय सुबह व शाम 6:45 से। सात बजे लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत 7:30 से हम है राही प्यार के। आठ बजकर 15 से और दिन में 2 से त्रिवेणी आप सुनेंगे। चित्रलोक का समय होगा सुबह 8:30 से और रात्रि 8:15 से। 9:30 से आज के फनकार केंद्रित होगा अभिनेत्री करिश्मा कपूर पर। दस बजे से पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे, गीतकार शायर और लेखक शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग आज आप सुनेंगे। समय 10 बजे।

11 बजे से लेकर आएंगे रंग तरंग और 12:05 से समय होगा यादों की महफिल का। एक बजे से वक्त होगा सुरीला सफर का। 2:30 से सदाबहार नगमे आप सुनेंगे।

चार बजे से पिटारा में आज के मेहमान चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत का भाग आप सुनेंगे। संपादन सहायक काजल भद्रगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। वक्त हमने बताया चार बजे दिन में। पांच बजे से छाया गीत, 5:30 से तराने नए पुराने लेकर आएंगे। छह 6:35 से वक्त होगा भक्ति रचनाओं का संध्या रंजन में। 7 से फौजी साथियों के लिए जयमाला लेकर हाजिर होंगे। 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग सुनिएगा। 8 से हवा महल में सुनिएगा झलकी वो कैसी होगी, लेखक सुधा जौहरी, निर्देशक H.S. व्यास। 9 से प्रोग्राम होगा आपके लिए। 9:30 से आज के फनकार और 10 से छाया गीत आप सुनेंगे। दस से ढलती जाए रात। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

श्री राम के मन में ये सोच व्याप्त है कि राजा जनक समेत भरत सभी माताएं अयोध्या तथा जनकपुरवासी दुखी हैं और व्यर्थ ही चित्रकूट में वनवास के कष्ट भोग रहे हैं। उनकी चिंता सुनकर वशिष्ठ जी मिथिलापति से सबकी दुविधा समाप्त करने का आग्रह करते हैं। मुनिवर के वचन सुनकर जनक जी का ज्ञान और वैराग्य तिरोहित हो गए। वो प्रेम और मोह के वशीभूत हो गए। उन्हें लगा कि यहाँ आकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ ने तो पुत्र विरह में अपने प्राण त्याग दिए और वे उन्हें

और गहन वन में भेजकर अपने प्राण भी नहीं त्याग सकेंगे। मिथिला पति को नहीं समझ में आता कि अब क्या किया जाए। अतः क्या किया जाए इसका निर्णय उन्होंने भरत पर छोड़ दिया। भरत ने कहा, सारा जगत जानता है कि सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। स्वामी धर्म और स्वार्थ एक दूसरे के विरोधी हैं। बैर अंधा होता है और प्रेम में बुद्धि साथ छोड़ जाती है। अतः मुझसे न पूछकर श्री राम की रुचि का ध्यान रखते हुए वही करना चाहिए जो सर्वसम्मत तथा सबके लिए हितकारी हो।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी।
1: सभी संगीत प्रेमियों का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित एस एल कंडारा जी। आपको तबले पर संगति कर रहे हैं श्री संतोष मिश्र जी। पंडित जी, रागों की चर्चा हो रही है। पिछली कड़ी में हमने राग शंकरा की बात की, आज

0: राग बिशर खमाज के बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
1: जैन जी, ये बहुत रेलिवेंट और बहुत आपने अच्छा चयन किया, क्योंकि शंकरा बहुत गंभीर राग है
0: जी,
1: जबकि मिश्र खमाज लाइट प्रकृति का राग है, सुगम संगीत में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है
0: जी जी।
1: और ठुमरी दादरे में मुख्य रूप से खमाज में ठुमरी गाई जाती है
0: जी, बिल्कुल।
1: और लाइट म्यूजिक का सबसे प्रिय राग है ये मिश्र खमाज।
0: हाँ,
1: ठुमरी दादरा में बनारस और पटियाला, ये दो स्कूल बहुत बड़े स्कूल रहे हैं
0: जी।
1: पटियाला में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उनके बेटे मुनव्वर अली खान, अजय चक्रवर्ती, जगदीश प्रसाद पंडित, ये सब लोग उस परंपरा को फॉलो करते रहे
0: जी।
1: जबकि बनारस घराने की जो स्टाइल है ठुमरी, उसमें सिद्धेश्वरी देवी और महादेव प्रसाद मिश्रा, उनके पहले मौजुद्दीन खां, और बड़ा उनका इतिहास
0: जी।
1: लेकिन जो उसके बाद जो कलाकार मुख्य रूप से जिनका योगदान रहा है, वो गिरजा देवी जी, और गिरजा देवी जी के बाद सिद्धेश्वरी देवी, या उनकी समकालीन कह लीजिए आप, और पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा जी, जो इस परंपरा के बहुत बड़े एक्सपोनेंट थे। तो उनके साथ मैंने कुछ कॉन्सर्ट संगत की थी, तो मुझे भी उनके गाने की बड़ी मन में उनका गाना बैठा, तो उनकी परंपरा से मैं एक ठुमरी पेश करना चाहता हूँ आज। मिश्र खमाज।
0: स्वागत है।

0: क्या बात है पंडित जी, जैसे जैसे इस ठुमरी के स्वर गूंज रहे थे मन में गीत उभर रहा था फिल्म बुढ़ा मिल गया।
1: अरे बहुत अच्छा मन्नाडे साहब का गाना।
0: मन्नाडे साहब का गाना है
1: बिल्कुल,
0: आयो कहां से घनश्याम।
1: बिल्कुल,
0: और ये शब्द मजरू सुल्तानपुरी के हैं, संगीतकार राहुल देव बर्मन। यही गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं
1: जरूर।

0: मिश्र खमाज पर आधारित बुढ़ा मिल गया फिल्म से ये गीत हमने आपको सुनवाया श्रोताओं। इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी अब समाप्त हो रही है। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगति संतोष मिश्रा की।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

धरती माता, ये था फिल्म का नाम। पंकज मलिक, उमा शशि, केएल सहगल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। पंकज मलिक ने संगीत दिया और पंडित सुदर्शन ने इसे लिखा है।

Thank you.

0: पहिला पप्पा पहिला
1: गोला
0: का गोला।

0: शमशाद बेगम और गीता बाली की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। रंगीन रातें फिल्म का नाम था। केदार शर्मा ने इसे लिखा, रोशन का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।
4: अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। अरे

0: अरे भाई, अरे भाई,
1: अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से, अरे भाई।

एहसान सहारों का मत ले, एहसान सहारों का मत ले, खुद अपने मन को दीप बना, खुद अपने मन को दीप बना, तू रस्ते

0: सुधा मल्होत्रा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, तू अपने मन का, ये गीत था, जलदीप फिल्म का नाम था।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में, वो एज एन अनाउंसर उन्होंने

0: किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। बंदी फिल्म का नाम था। इंदिवर ने इसे लिखा, श्यामलाल मित्रा का संगीत।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

ये सुदास हेमलता और बंसरी सेनगुप्ता की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। दुल्हन वही जो पिया मन भाई फिल्म का नाम था। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और उन्हीं का संगीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में धर्मवीर इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

एफएम बैंड 100.6 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती का ये नागपुर केंद्र है। श्रोताओं, ठीक 8 बजे आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से। प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरगेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लफान परियोजना में जो वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेशी सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
3: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पैनल

0: फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है, हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस

0: समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून। जबकि दैनिक भास्कर का कहना है, मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

आज की त्रिवेणी में पड़ोसियों की चर्चा। वर्तमान समय में अधिकांश लोग अपने कामकाज और नौकरियों के कारण प्रायः एकल परिवारों में रहते हैं। यहाँ पति पत्नी और एक या दो बच्चों का परिवार होता है। सगे संबंधी दूसरे शहरों या गांवों में छूट जाते हैं। ऐसे में पड़ोसी ही सुख दुख के साथी होते हैं। वैसे भी ये सच है कि किसी भी बड़ी मुसीबत में पड़ोसी ही मदद के लिए सबसे पहले काम आते हैं। पड़ोसियों से हमें हमेशा मृदु व्यवहार और सहयोग का भाव बनाकर रखना चाहिए। अगर पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार है तो जीवन की मुसीबतें बहुत आसान हो जाती हैं।

हम में से बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई करने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने अथवा दूसरे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए किराए के मकान लेकर रहते हैं। ऐसे लोगों को पड़ोस में बहुत सजग रहना चाहिए। उन्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे यहाँ केवल अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। उन्हें रास्ते से भटकाने के लिए पड़ोस में बहुत से आकर्षण मौजूद होते हैं।

0: करता है।
1: ऐसा नहीं है कि पड़ोसी केवल मुसीबत में ही काम आते हैं, वे हमारे किसी पार्टी या शादी समारोह में भी बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। कई बार दोनों की छतों का उपयोग करके हम छोटी मोटी पार्टी के लिए एक अच्छा स्पेस निकाल सकते हैं। अच्छे पड़ोसी अपनी छत का उपयोग और कई रोचक कार्यों के लिए कर सकते हैं, जैसे

0: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: FM बँड 100.6 मेगाहर्ट्ज वर आकाशवाणी नागपूरचं हे विविध भारती केंद्र आहे। 8:30 होत आहेत। प्रसारित करीत आहोत मराठी गीतांचा कार्यक्रम गीतगंगा।

टू स्टेट्स, ये था फिल्म का नाम। अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। शंकर एहसान लॉय का संगीत और अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा।

0: फिल्म वेकअप सिड से ये गीत अभी आप सुन रहे थे कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: जब वी मेट इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में, इरशाद कामिल ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

0: शाहिद माल्या की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, उड़ता पंजाब फिल्म का नाम था। इसके साथ ही आज का ये चित्र कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी नागपूर केंद्र आणि विविध भारतीवरून एकाच वेळी प्रसारित करीत आहोत लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर। श्रोते हो नमस्कार, माइंड ओवर मॅटर क्लिनिक धंतोली नागपूर हॅलो डॉक्टर या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमात आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। श्रोते हो, आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे विविध वयोगटातील मुलं आणि पालकत्व, आणि याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित आहेत मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर कनक किल्लूरकर। श्रोते हो, विविध वयोगटातील मुलं आणि पालकत्व या विषयाशी संबंधित आपल्या मनात काहीही शंका किंवा प्रश्न असतील तर आपण लगेच फोन करून विचारू शकता। त्यासाठी आमचे फोन नंबर्स 6940067 2560101 आणि 2529266 आणि STD कोड आपण जाणताच 0712। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत माइंड ओवर मॅटर क्लिनिक धंतोली नागपूर। मॅडम नमस्कार, आजच्या कार्यक्रमात आपलं खूप खूप स्वागत।
2: थँक्यू
1: मॅडम। पालकत्व म्हणजे अगदी रोज एक नवीन पेपर असं म्हणायला हरकत नाही, कारण रोजच काहीतरी वेगळ्या समस्या आपल्या समोर येतात आणि आपल्याला त्याचं समाधान करावं लागतं। तर आपण अगदी लहान बाळ घेऊ किंवा 16 वर्षाचा युवक घेऊ तर दोघांसोबत आपण एकसारखं वागू शकत नाही, त्यांच्यासाठी पालकत्व वेगळंच लागतं।
2: करेक्ट।
1: ते तर हे का आणि कसं?
2: करेक्ट। ज्या प्रकारे आपला बॉडी साईज चेंज करतो त्याचप्रकारे आपला ब्रेन साईज चेंज करतो। तर फॉर एक्झाम्पल जर का आता इट्स अ न्यू बॉर्न बेबी है ना, जो 0-3 इयर्स पकड़ लो टॉडलर एज के पहले, उनका ब्रेन जिस तरीके से डेवलप हुआ है और हो रहा है वर्सेस 3 साल से 6 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में जिस तरीके से डेवलप हो रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बच्चे दिखते ही अलग है, फिजिकली चेंज हो रहे हैं तो वैसे ही अंदर से शरीर चेंज हो रहा है। तो उस हिसाब से पेरेंटिंग अगर हम करें, जो पहले शायद हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं थी, बट अभी साइंस है जो हमको बहुत सारी रिसर्च का डेटा दे रहा है, साइकोलॉजी कैसे चेंज होती है, ब्रेन कैसे चेंज होता है और उस समय परवरिश से क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर हमारे पास साइंस का इतना इन्फॉर्मेशन है तो हमने यूज़ करना चाहिए है ना। सो दैट्स वाई आई फील माइंडफुली अगर हम पेरेंटिंग करें तो बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने ये भी देखा है कि उन बच्चों में जिनमें माइंडफुली पेरेंटिंग की गई है अडल्टहुड में उनको मानसिक बीमारियां, मानसिक तकलीफें बहुत कम हुई हैं। और जिनको हाँ अरे ऐसे ही चलता है, ये तो होते रहता है, अरे हमको भी तो ऐसे ही परवरिश की थी माँ बाप ने, जिन माँ बाप ने इस एटीट्यूड से परवरिश की हुई है उनके बच्चों को अडल्टहुड में बहुत
1: प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े होंगे।
2: और सिर्फ खुद के या प्रोफेशनल नहीं बट पर्सनल रिलेशनशिप्स सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं क्योंकि हमारा स्वभाव राइट। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि हर एज ग्रुप को समझ के, उनकी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स समझ के अगर हम उस हिसाब से पेरेंटिंग करें तो हम फ्यूचर जनरेशन को एक बहुत अच्छा यू नो पूंजी देके जाएंगे।
1: माइंडफुली हे सगळ्यात महत्त्वाचा शब्द आहे, कारण जर तुम्ही अगदी समजून मुलांची मानसिकता समजून जर त्यांचं पेरेंटिंग केलं तर ते नक्कीच फायदेशीर ठरेल।
2: 100%।
1: श्रोते हो, आपण ऐकत आहात माइंड ओवर मॅटर क्लिनिक धंतोली नागपूर हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम। आजचा विषय आहे विविध वयोगटातील मुलं आणि पालकत्व, आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित आहेत मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर कनक किल्लूरकर। या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आमचे फोन नंबर्स 6940067 2560101 आणि 2529266 STD कोड 0712। मॅडम तुम्ही आता सांगितलं की माइंडफुल पॅरेंटिंग खूप महत्वाचं आहे, तर मग आपण अगदी नवजात बाळापासून तर 3 वर्षांच्या मुलांपर्यंत आपण काय करू शकतो?
2: राईट राईट ऑन ट्रॅक, एकदम सही सवाल से हम शुरू करें। बट वो सवाल के पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी अपने

0: लिसनर्स को, जिस तरह से हमारी फिजिकल नीड्स होती है ना, बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, उस तरह से हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती है. सो अगर हर पेरेंट ये चार साइकोलॉजिकल नीड्स समझ लें कि ये चार हर उम्र में बच्चों को लगता है. सबसे पहला है सेफ्टी, सिर्फ फिजिकल सेफ्टी नहीं बट इमोशनल सेफ्टी. मतलब मुझे आपसे कितना डर लग रहा है, मैं बेझिझक मेरे माँ बाप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ या नहीं, ठीक है. फिर है कनेक्शन, कनेक्शन यानी जुड़ाव, सिर्फ लगाव नहीं, जुड़ाव. तो अगेन वो भी फिजिकल नहीं, आजू बाजू में मम्मी है, फोन में लगे हुए हैं, पापा अपने लैपटॉप में काम कर रहे हैं, बेबी खेल रहा है, इट्स नॉट द सेम थिंग एज कनेक्शन.
1: कनेक्शन
0: तो वहां पे हाउ द चाइल्ड फील्स सीन, मुझे समझ के देखा जा रहा है, उस तरह का जो फील है वो कनेक्शन. थर्ड है ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी मतलब सिंपलेस्ट भाषा में बोला जाए तो स्वराज्य, कि मैं छोटे छोटे डिसीजंस मेरे, हाँ करेक्ट. तो बेसिक थिंग्स कि आज किस क्या कपड़े पहनने, कहाँ घूमने जाना है, आपको ये बॉटल लेके जानी या ये लेके जाना, सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल डिसीजंस. बच्चे के हिसाब से बहुत बड़े हैं बट वो खुद वो डिसीजंस ले पा रहे हैं.
1: अच्छा,
0: राइट. फोर्थ है वैलिडेशन. वैलिडेशन यानी मान्यता, मतलब आपकी भावनाएं, आपके जो भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो वैलिड है बेटा. मतलब हम जनरली क्या कर देते हैं गलती में कि अरे ये सबको होता है, इस इतनी सी बात पे चिढ़ना पड़ता है क्या. राइट. किसी को बोल दिया कि टीचर ने ना उसको ज्यादा ध्यान दिया, मुझे नहीं दिया, एंड बच्चे ने घर आके बोला लाइक हाँ तो ठीक है ना,
1: होता रहता है
0: इतनी सी बात पे बुरा मानना है. तो हमने उनके इमोशन को ऑल ओवर निग्लेक्ट कर दिया.
1: अच्छा.
0: सो यही बच्चा बड़ा होके इस टाइप का एडल्ट बनेगा जो खुद की भावना को निग्लेक्ट करता जाए, और सडनली फिर बॉम्ब फूटेगा, सडनली गुस्सा आएगा, सडनली रेज आएगा, और उन्हें नहीं पता कि मेरे को ये भावना कैसे हैंडल करनी है.
1: नेगेटिविटी भी बहुत आती है.
0: एग्जैक्टली. सो ये चार नीड्स है, सेफ्टी, कनेक्शन, वैलिडेशन और ऑटोनॉमी. अगर हम ये चार नीड्स हर उम्र में उनके हिसाब से समझ के ले लें तो आप बहुत बेहतरीन पेरेंटिंग कर देंगे. आपको किसी
1: और आगे चलकर उनको कुछ तकलीफों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा.
0: वहीं आता है आपका जो 0 to 3 वाला क्वेश्चन है.
1: डॉक्टर, हम हमारे श्रोताओं को बता दें. श्रोतियों, आप एकत आहत माइंड ओवर मैटर क्लिनिक धंतोली नागपूर. हेलो डॉक्टर, हा लाइव फोन इन कार्यक्रम. आजचा विषय आहे विविध वयोगटातील मुलं आणि पालकत्व. याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित आहेत मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर कनक किल्लूरकर. या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आमचे फोन नंबर्स 6940067256010 आणि 2529266. फोन नंबर्स पुन्हा एकदा 6940067256010 आणि 2529266 आणि STD कोड आपण जाणताच 0712. मॅडम, आपने अभी आपने चार नीड बताई, तो हर एक उम्र के हिसाब से ये चार जो नीड है वो कैसे फुलफिल कर सकते हैं.
0: राइट. तो अगर हम इन्फेंट्स की बात करें, जो 3 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट नीड है सेफ्टी. कि मैं जहाँ हूँ, जो मेरे प्राइमरी केयर गिवर है, कई जगह वो मम्मी पापा होते हैं, कई जगह वो दादा, तो उनके साथ मैं सेफ हूँ, फिजिकली और इमोशनली सेफ हूँ. और उस उम्र के बेबीज को एक्सप्रेस करने में एक ही लैंग्वेज आती है, वो है रोना. राइट. भूख लगी तो रोना है, नींद आई तो रोना है, अनईजी हो रहा है तो रोना है, कोई भी चीज हो. राइट. सो उसी टाइम पे मम्मी पापा स्लीप डिप्राइव्ड है ना, नींद नहीं हो रही है, हार्मोनल क्रैशेस है, काम भी संभालना है. आजकल मदर्स भी वर्किंग है, तो उनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल बर्डन है, तो उनका फ्रस्ट्रेशन कई बार अगर बच्चा रो है ना तो बच्चे पे निकल जाता है हमारा गुस्सा.
1: मैडम, इस बारे में हम बात करेंगे. फोन ले लेते हैं. हेलो.
2: हेलो.
1: हाँ नमस्कार.
2: मैं नागपुर से बोल रही थी. मेरा क्वेश्चन था कि आपने, मैडम ने भी पेरेंटिंग का बोला है, अगर मदर वर्किंग है और फादर अर्निंग के हिसाब से जो गाली गलौज है कुछ है, तो इसमें कोरोना पेट के बच्चे पे असर होता है, उसको मोबाइल का एडिक्शन है.
0: यस.
2: तो ये सब चीजों में माँ ने क्या कदम लेना चाहिए.
0: राइट. मैम, आपका बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल काफ़ी कॉमनली हो रहा है. विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट थिंग जो मैं बोलने वाली थी, कि ये जो 3 साल

0: तक के बच्चे हैं उनका ब्रेन इतना न्यूरोप्लास्टिक है. न्यूरोप्लास्टिक मतलब बहुत सारे कनेक्शंस एक ही समय पे बन रहे हैं, एक एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ कनेक्शंस बन रहे हैं. तो जो चीज़ वो एक्सपीरियंस करेंगे, खाना पीना, आवाज़ें, लाइट्स, हर चीज़ उनके ब्रेन में वायरिंग होती जाएगी आगे जाके, आगे के लिए. सो उस समय अगर घर में माहौल ख़राब है, झगड़ा होता है,
1: हाँ.
0: गाली गलौज होती है, या पापा को देख रहे हैं कि पापा तो फ़ोन में ध्यान दे रहे हैं, अडिक्टेड हैं, या मम्मी पे चिल्ला रहे हैं, तो वो चीज़ इतनी डीपली वायर होती है ब्रेन में कि या तो बच्चे बड़े होके उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं अपनी,
1: या सहमे
0: अपनी
1: सहमे
0: वाइफ
1: से रहते हैं.
0: यस, या इतने सहमे हो जाते हैं कि हर रिश्ते से दूर हो जाते हैं. एंड उसके अलावा ये तो सिर्फ बेसिक चीज़ हो गई, बहुत गहरे गहरे इम्पैक्ट्स हो जाते हैं जो समझ में ही नहीं आते कि इस वजह से हुए.
1: अच्छा.
0: सो ऐसे टाइम पे मदर्स को थोड़ा स्ट्रांगली फुट डाउन करना पड़ेगा,
1: अच्छा,
0: या तो बच्चे को उस माहौल से हटाना पड़ेगा अगर मदर वर्किंग है, और कोई और रिश्तेदार है आजू बाजू जिन पे आप भरोसा करके बच्चे को छोड़ सकते हैं तो वो कीजिए, या अगर आपके पास ये ऑप्शन है साथ लेके जाने का तो वो कीजिए, या डे केयर के लिए आप अफोर्ड कर सकते हैं, या यू नो उतने समय के लिए किसी को पे करके आप वहाँ पे बच्चे को छोड़ सकते हैं. अगर ये सब तब होगा जब आप आपके पति को समझा चुके हैं और वो नहीं समझ रहे हैं, या आजकल दादी दादा भी है ना, कई बार हो जाता है कि मम्मी ये बता रही कि इस तरीके से बिहेव करना है, या मीठा नहीं देना है, या ये नहीं खिलाना है, और दादी फिर छुपके से पीछे से दादाजी कि अरे पापा को नहीं बताना, मैं तो दिला दूंगा तुमको. तो अगर ऐसी टाइप की पेरेंटिंग होती है तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, माँ बाप की रिस्पेक्ट रहती नहीं है उस टाइम पे, दादी दादा की हो जाती है. तो हमें वो चीज़ थोड़ा समझ के अगर ऐसा है तो मदर्स को थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है.
1: यानी म्हणजे जर घरामध्ये दोन्ही असतील पेरेंट्स म्हणजे तर दोघांनी सहमतीने व्यवस्थित अंडरस्टँडिंग
0: मिलजुल के, हाँ. आपको साथ रहना है तो मिलजुल के एक डिसीजन रखना पड़ेगा कि हमको हाँ. इस तरीके से परवरिश करनी है. आप ये नहीं कर सकते कि चार अलग लोग हैं और चार अलग तरह से परवरिश कर रहे हैं.
1: ये तो होता ही है. मैडम हम बात कर रहे थे कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी पेरेंटिंग करते वक्त उनको सेफ्टी के बारे में.
0: यस यस. तो उस समय मदर्स का, फादर्स का, जब बच्चे रो रहे हैं और आप खुद गुस्से में हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, मैं समझती हूँ कि इट्स अ ट्रबल, क्योंकि मैं खुद न्यू मॉम हूँ और मुझे पता है कि उस समय कितना डिफिकल्ट होता है खुद की इमोशन हैंडल करना कि बच्चे पे ना निकले. बट आपको उस समय खुद को हैंडल करना सीखना है, जिससे कि आपका वो गुस्सा, आपकी वो चिड़चिड़ बच्चे पे ना निकले. कई बार ऐसा भी होता है कि हमको एडवाइस दी जाती है कि अरे बच्चा हर तो रोते ही रहते हैं, हर बार उसको पास मत लो, उसको आदत लग जाएगी. वर्किंग मदर्स को स्पेशली बोला जाता है कि तुम थोड़ा उसको दूर रखना शुरू करो जिससे कि वो तुम्हारे बिना रह ले.
1: ऐसे बोला ही जाता है क्योंकि वो बच्चे को आदत ना हो जाए,
0: आदत ना हो जाए. पर बच्चे को उस समय सबसे ज्यादा यही करीबी इसकी जरूरत है.
1: एक फोन है.
0: यस,
1: हेलो.
2: हेलो.
1: हाँ, आपलं नाव सांगा आणि प्रश्न विचारा.
2: हा, माझं नाव आहे ब्रिगेडियर सुनील गावपांडे.
1: हा जी.
2: मी मिलिटरी ऑफिसर आहे, इथून नागपूरहूनच बोलतोय, प्रतापनगर.
0: जी.
2: अच्छा, मेरा एक दो पॉइंट आहे, दो भाग में. एक तो आपका जो
1: तुमच्या रेडिओ साइटचा आवाज कमी करा आणि मग प्रश्न विचारा.
2: हा, आता ठीक आहे. हॅलो.
1: हा, प्रश्न विचारा आता आपला.
2: नाही, माझं काय ऐकतंय ना, याच्यामध्ये जे तितके शब्द वापरतात ते कम्प्लिटली इंग्लिश शब्द वापरतात, काही काही खालच्या लोकांना कळणार नाही. तर एक त्यांना म्हणा की थोडंसं व्हॅलिडेशन, ऑटोनॉमी अँड ऑल दॅट, ठीक ना, दे आर गुड फॉर मी, पण थोडंसं केलं तर बरं राहील. आणि दुसरा मुख्य प्रश्न माझा असा आहे मॅडमला की पालकत्व आणि पेरेंटिंग जे याच्यामध्ये आहे ना, तर त्याच्यामध्ये याच्यावरती जसा क्वालिटी टाईम असतो आपला, जो क्वालिटी टाईम मी पण देतो लहान मुलांना, मला 40 वर्षापासून सांभाळतोय मी बॉर्डरवर आतंकवाद्यांच्या मुलांना, याच्या त्याच्यामध्ये सैन्य दलात असल्यामुळे आपल्याला एक क्वालिटी टाईम दिला तर त्याच्यातून आहे ना, क्वालिटी टाईम म्हणजे जो महत्वाचा वेळ आहे आपला किंवा त्या मुलांचा जो महत्वाचा वेळ आहे त्यावेळेस उपलब्धता असलेली बरं आहे. थोडंसं मराठी किंवा हिंदी शब्द वापरले तर माझ्या जो दोन पेरेंट्स असले त्यांनाही कळेल, कारण ते विचारायला कळणार नाही. तर क्वालिटी टाईम जो आहे किंवा उपलब्धता आहे चांगल्या वेळेची, ती आई वडिलांनी मुलांना देण्याची कृपा करावी. किती त्यांचं बिझी शेड्यूल असलं तर पेरेंटिंग चांगलं होईल, याच्यावर थोडं मॅडमला बोलायला सांगा.
0: थँक्स फीडबॅकसाठी तुमच्या, पण मी प्रत्येक इंग्लिश शब्दाला एक्सप्लेन करून सांगितलेलं आहे, कनेक्शनला जुडाव, ऑटोनॉमीला स्वराज्य, मी सगळं व्यवस्थित सांगितलेलं आहे. काही काही शब्द सायंटिफिक आहेत त्यांचं एक्झॅक्ट ट्रान्सलेशन

0: नहीं होना, जैसे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी, तो मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ क्या है. जो आपने बोला क्वालिटी टाइम, एक्झॅक्टली तेच आहे जे मी कनेक्शन बोलत होती की आई वडील सोबत तर बसले, पण वडील लॅपटॉपवर काम करते, आई फोनमध्ये लागलेली आहे, तर ते क्वालिटी टाईम नाहीच झालं. बाळासोबत त्या प्रकारे वेळ स्पेंड करणं खूप गरजेचं आहे. प्रेझेन्स, 10 मिनिट्स तुम्ही दिले पण पूर्ण अटेन्शन तुमचं बाळावर आहे, ते जास्त इम्पॉर्टंट आहे रादर देन दिवसभर तुम्ही त्यांच्यासोबत काढलं बट वन ऑन वन आय कॉन्टॅक्ट करून कनेक्शन खूप कमी केलं ते नाही. यापुढे जर का आपण बोललो तर वी कम टू द नेक्स्ट एज ग्रुप, 3 वर्ष ते 6 वर्ष, म्हणजे बिटवीन द टॉडलर्स, याला आपण टॉडलर्स एज ग्रुप म्हणतो. 6 वर्षांपर्यंत ना आपण त्यांचं आता ऑटोनॉमी बनतोय, स्वराज्य बनतोय. तर या एज ग्रुपमध्ये बेबीज मेनली काय करतात, तुम्ही जे म्हटलं त्याचं उलट, आपने जो बोला वो नहीं सुनेंगे, ये नहीं खाना है, अच्छा यही खाना
1: है,
0: ये गर्म है इसको हाथ मत लगा, उसी को पकड़ेंगे, उसी को हाथ लगाएंगे. तो आपको ये लगता है कि बच्चा तो एकदम यू नो मेरे तो रूल्स फॉलो ही नहीं कर रहा है, जिद्दी हो रहा है, बैक आंसर कर रहा है, या यू नो बहुत ही बदमाशी करता है. गुड बिहेवियर्स इंडियन पेरेंटिंग में क्या है, हमारी एक गलती है कि हम ओबीडियंस, म्हणजे मेरा कहना सुन लो तो ज्यादा अच्छा बच्चा है. लेकिन अगर उस बच्चे ने आप
1: थोड़ा सा पण वेगळा बोललं तर आपण मुजोरी करतो,
0: आपसे हटके थोड़ा सा अलग कुछ किया तो ये बच्चा तो ओवर स्मार्ट है या यू नो मुजोर. वो हमारी एक गलती है. उस समय जो हमारे टॉडलर्स हैं उनको ये जरूरत है कि उनका फ्रंटल लोब जो है ब्रेन का, जो सबसे सामने का हिस्सा है, जो हमें कंट्रोल करना सिखाता है, संयम सिखाता है, विवेक देता है, वो डेवलप ही नहीं हुआ है.
1: बराबर.
0: तो उस समय वो इम्पल्सिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, जो मन में आया वो कर देंगे, जैसा आया वैसा सोच पहले करेंगे फिर सोचेंगे. राइट. तो
1: मैडम म्हणजे नक्कीच मुलांनी कसं वागायला हवं याच्यासाठी आपणच जबाबदार आहोत. एक फोन घेऊया. हॅलो.
2: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, मैं अमरजीत सिंह बोल रहा हूँ. मैम मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है ये कि क्या आपको नहीं लगता मैम कि अपने इंडिया में भी, मतलब जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा हुआ है कि 16 साल से कम बच्चों को सोशल मीडिया का एक बैन होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ ब्लैंकेट मतलब कवर होनी चाहिए.
0: यस.
2: क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें मैम जो उनको नहीं पता लगनी चाहिए, उनको टाइम से पहले मालूम चलने लग गई है.
0: बिल्कुल.
2: और कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी, जो आर्ट होती, क्यूरियोसिटी, ये कहीं ना कहीं किल हो रही है और उनमें एग्रेशन वायलेंस की तरफ वो कहीं ना कहीं हम लोग उनको मतलब इनडायरेक्टली मतलब प्रमोशन हो ही रही है कहीं ना कहीं. तो आपका क्या मानना है, जैसे बच्चों को मतलब अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना ना सिखाना पेरेंट्स का, ये भी तो सबसे बड़ा एक रीजन है घरों में, अगर आप देखते ही होंगे अपने आस पास.
0: बहुत बेहतरीन चीज बोले सर आप, बहुत बेहतरीन चीज बोले कि जैसा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है और उसकी वजह से कम एज में जो चीजें एक्सपोज हो रही है बच्चों को, और वो हैंडल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स ने सिखाया नहीं है भावनाओं को कैसे हैंडल करना. पेरेंट्स ने ओपनली अपनी स्पेस रखी नहीं है कि बच्चों तुम मुझे बेझिझक निडर होके सवाल कर सकते हो कि ये आपको इंटरनेट पे दिखा, ये क्या है. है ना. एंड इस चक्कर में ही मेंटल हेल्थ हमारे यूथ का इतना गिर रहा है और इतने सुसाइड अटेम्प्ट्स, सुसाइड केसेस इतने बढ़ रहे हैं बिकॉज मैं मेरी बड़ी भावनाएं कैसे हैंडल करूं मुझे नहीं पता. मम्मी पापा ने जिस तरीके से किया वो था चिल्ला के या गुस्सा करके या झगड़ा करके, मुझे वो नहीं सीखना था तो मैंने वो नहीं सीखा. मैंने अंदर दबा दिया.
1: अच्छा.
0: पर अंदर दबाते दबाते मुझे समझा ही नहीं उसे मैं रिलीज कैसे करूं, और अचानक प्रेशर कुकर का सीटी फटता है और सब कुछ फैल गया. यहाँ पे ये इसी वजह से, ये जो मैं एज ग्रुप्स की बात कर रही हूँ, हर एज ग्रुप में एक चीज इंपॉर्टेंट है. जैसे 0 to 3 में सेफ्टी, आपने कनेक्शन बैठाना है. एंड 3 to 6 में जो मैं अभी कह रही थी कि जब टॉडलर मेल्टडाउन करता है, टेंट्रम थ्रो करते हैं, रस्ते पे लोटपोट कर देंगे, मुझे यही लेके दो, मुझे यही चाहिए, या मेहमानों के सामने ज्यादा होता है वो बिहेवियर. राइट. तो उस समय आपको गुस्सा आ रहा है तो आपने थप्पड़ लगा दिया.
1: हाँ.
0: या आपने चिल्ला दिया नहीं, या आपने दे दिया जो उनको चाहिए था. ये तीनों चीजें अगर आपने की तो आप उनके वो बर्ताव को गलत दिशा में भेज रहे हैं, उस समय आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा बच्चा जानबूझ के नहीं कर रहा है, उसको एक बहुत बड़ी भावना आ रही है जो वो समझ नहीं पा रहा है कैसे संभालो। उस समय ईर्ष्या, जो जेलेसी है कि उस बच्चे के पास तो ये है, मेरे पास नहीं है, तो जिद करेगा, कुछ चाहिए, जिद करेगा। या वो समझ नहीं पा रहा है कि मुझे किस तरीके का खाना खाना है।

0: अब मेल्टडाउन आए हैं, ऐसे भी चीज़ों पे होता है, तो उस समय आपको उसको पहले कनेक्शन देना है, पहले प्यार देना है. बच्चा अगर चिड़चिड़ कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है या लोटपोट कर रहा है, आप उसके लेवल पे जाइए, उसके पास बैठिए, वो ज़मीन पे ज़मीन पे बैठिए, उसको गले लगाइए या उसके पास बस बैठिए, जितने देर तक वो चिड़चिड़ करता है करने दीजिए, वो भावना रिलीज करने दीजिए. आप इतने बड़े होने के बाद अपना गुस्सा हैंडल कर पाते हैं क्या?
1: नहीं कर पाते.
0: बच्चा कैसे करेगा?
1: बराबर.
0: वो आपको देख के सीखेगा. तो उस समय अगर आप शांत हैं, वो आपको कॉपी करेगा धीरे धीरे, आगे जाके यही होगा. एंड पहले कनेक्शन फिर करेक्शन, ऐसा हम बोलते हैं.
1: अच्छा.
0: तो पहले उनसे आप कनेक्शन बैठाइए, रिश्ता बनाइए, उनको अपनी शांतता दीजिए, उनके गुस्से में आप मत जाइए.
1: हाँ, यानी गुस्से पे गुस्सा yes, और ज्यादा हो जाता
0: yes. है. उनको आपकी शांतता बोरो करने दीजिए, फिर आप उनको बाद में जब वो शांत हो जाए फिर सिखाइए या पूछिए कि क्या हुआ था, या ये सिखाइए कि बेटा आपने आंटी के सामने ऐसे बिहेव किया, ये गलत. पर आप गुस्से में ही सिखा दोगे तो नहीं सीखने वाला.
1: हाँ, उनको लगता है कि अटेंशन नहीं दे रहे ऐसा.
0: राइट.
1: मैडम एक फोन लेते हैं.
0: यस.
1: हेलो.
2: हेलो.
1: हाँ
2: हाँ मॅम, माझा प्रश्न असा आहे की माझा मुलगा 4 वर्षाचा आहे आणि तो कसं जसं कुठल्याही गोष्टीची डिमांड करतो की मला हे घेऊन देशील ते घेऊन देशील, आम्ही कसं जनरली घेऊन देतो, पण इनकेस जरा मला ती गोष्ट नाही घेऊन द्यायची तर ते प्रश्न कसे टॅकल करायचे?
0: करेक्ट. व्हेरी इम्पॉर्टंट.
2: हा पहिला. आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की माझ्या जाऊचा मुलगा, हे दोघं पण सेम एजचे आहे, जॉईंट फॅमिली आहे आमची, तर आमच्याकडे प्रत्येक गोष्ट दोन येतात, खेळण्यापासून पुस्तकांपासून सगळ्या गोष्टी दोन येतात, तर हे बरोबर आहे की नाही?
0: वाव. बहुत अच्छा. खूप डीप क्वेश्चन आहे आणि जितक्या कमी टाईममध्ये मी तुम्हाला याचं सोल्युशन, हा आय विल ट्राय माय बेस्ट. सगळ्यात आधी हे की दर गोष्ट घेऊन नाही द्यायची. आपको अभी आपके बच्चे को ना ये चीज सिखानी है, हम इसको बोलते हैं इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन. ग्रेटिफिकेशन मतलब संतुष्टि, रिलैक्स हो गया, अच्छा लगा. उदाहरण के लिए आपको अगर सुबह चाय कॉफी की आदत है, आपने नहीं भी आपको चिड़चिड़ होगी, आपने तुरंत उठते से ही चाय बनाया, आपको संतुष्टि मिली, दैट इज इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन. आपको जिम जाना है पर आपको सुबह उठने में कंटाल आ रहा है, पर आपको पता है कि अगर मैं कंसिस्टेंटली जिम जाऊंगी तो मेरी बॉडी जो फिजिकल फिटनेस और हेल्थ में रहेगी, मुझे वो चाहिए. वो लॉन्ग टर्म हो गया, वो हो गया डिलेड खुशी.
1: अच्छा.
0: कि अभी मैं तकलीफ में रहूं जिससे आगे जाके मुझे खुशी मिले, मेहनत करके. वो चीज आपको बच्चों को सिखाना है. मोबाइल फोन्स और टेक्नोलॉजी, जो सर ने पहले का क्वेश्चन पूछा, वो यही गड़बड़ कर रहा है कि पेशेंस खत्म कर दे रहा है. एक फिंगर टिप पे तो सब कुछ
1: सब मिल रहा है.
0: करेक्ट. आजकल हम ब्लिंकिट, स्विगी, जोमैटो, अमेजोन सब ऑनलाइन कर लेते हैं, तो हमको ही हमारा ही पेशेंस खत्म होने लग गया है. तो बच्चों को अगर हर चीज तुरंत यूट्यूब पे क्लिक करते से दिख जाएगी तो उनको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन आएगा, जो डोपामीन है, जिसकी वजह से एडिक्शन होता है. राइट. तो अगर आप तुरंत आपके बच्चे को हर चीज दिला दोगे, भले उसमें कोई गलत नहीं है जो उसने मांगा है, आप दिला सकते हो, बट आपको यहाँ पे काम है कि आप उसको सिखाओ. लेसन्स आप ही दोगे, है ना? तो यहाँ सिखाना कि बेटा एक काम करते हैं, अपन आज नहीं लेंगे, हम कल लेंगे.
1: हाँ.
0: बस इतनी सी चीज करनी है, और ये थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ेगा, तुरंत नहीं होगा, बट करिए. आसान है जो चीज दिला सकते हो उसमें भी करो, तब जाके आगे जो चीज सही में नहीं दिलानी चाहिए वहां पे उसको संयम.
1: हाँ, संयम.
0: संयम सिखाना ये आपका काम है.
1: हाँ, संयम सिखाएंगे, लेकिन एक फोन ले लेते
0: yes.
1: हैं. हेलो.
3: हेलो, नमस्कार.
1: हाँ नमस्कार.
3: हाँ, लीलाधर चोपडे बोलतो आहे कारंजा घाडगेवरून.
1: हाँ बोला
3: मॅडम. माझा प्रश्न असा आहे की माझा नातू आता जवळपास 3 वर्षाचा आहे आणि काय झालंय, 14 महिन्याचा होता तेव्हा त्याला इथे दूध तोडायसाठी आमच्याकडे आणलं आणि त्याच्यानंतर मग इथे रुडला, तर आज त्याचे आई वडील त्याला नेण्याचाही प्रयत्न करतात, म्हणजे त्याला काही करतात, पण तो आमचं घर सोडायलाही तयार नाही आणि आई वडिलाकडे जायलाही तयार नाही, म्हणतो की जे काही करत ते इथेच. आणि पुन्हा दुसरा एक माझा प्रश्न असा आहे की या प्रकारचे जे मुलं असतात, म्हणजे यांना नेमकं काय म्हणावं आपण?
0: हो. हा ना, खूप दुविधा वाला क्वेश्चन आहे. ऍक्च्युली पहिली चीज तो ना, जो मम्मी पापा ने किया एक्स्ट्रीम स्टेप हो गया कि दूध छोड़ने के लिए सीधे दादी दादा के पास ले गए, यू नो, क्योंकि उस एज में माँ बाप के करीबी बहुत जरूरी. मैंने बोला ना, कनेक्शन चाहिए. उस एज में जो प्राइमरी रहेगा उसके साथ कनेक्शन हो जाएगा. तो अब वो कनेक्शन कैसे तोड़ेंगे आप? नहीं तोड़ सकते. अब अगर मम्मी पापा ने फिर से एक्सट्रीम स्टेप लेके जबरदस्ती लेके चले गए, तो फिर वो कनेक्शन का भी

0: इम्पैक्ट हो जाएगा ब्रेन पे और मम्मी पापा से भी दूरी हो जाएगी. तो अब धीरे धीरे करना पड़ेगा. पहले एक दिन घुमाने लेके गए, फिर दो दिन घुमाने लेके गए, फिर कहीं और रहने गए, फिर दादी दादा के साथ ट्रिप निकाली कि साथ में जाएंगे, उस समय मम्मी पापा के साथ रूम में शेयर किया और दादी दादा को दूसरा रूम, थिंग्स लाइक दैट. धीरे धीरे, अगेन ये बहुत डिटेल में हमारे पास आई डोंट थिंक उतना टाइम है.
1: श्रोतियों आपण ऐकत आहात माइंड ओवर मॅटर क्लिनिक धंतोली नागपूर. हॅलो डॉक्टर, हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम. आजचा विषय आहे विविध वयोगटातील मुलं आणि पालकत्व, आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित आहेत डॉक्टर कनक गिल्लूरकर. या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आमचे फोन नंबर्स 6940067256101 आणि 2529266, एसटीडी कोड 0712. मॅडम एक फोन आहे. हॅलो.
2: हेलो. हाँ मैम, पेरेंटिंग करते करते कभी ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस आने लगता है.
0: हेलो जी. करेक्ट. करेक्ट.
2: कभी हाँ, और क्या है हार्मोनल चेंजेस की वजह से कॉर्टिसोल का क्या रोल है? कभी कभी हिस्टामाइन का आंग में इतना खुजली होता है तो एंटी हिस्टामाइन लेना पड़ता है, हार्ट पे प्रेशर आ जाता है. तो ये सब अपने को सेटिस्फाइड लेवल पे लाने के लिए, और एक एम्बिशियस रहते हैं अपन की एज में क्यों ऐसा हो रहा है अपने साथ, तो ये सब अपन कैसे सेटल कर सकते अपने ही प्रॉब्लम को? नेचर तो अपन एक्चुअली चेंज नहीं कर सकते.
0: Correct.
2: अपना जो नेचर रहता है एम्बिशियस नेचर, ये भी बहुत डेंजरस है.
0: Right.
2: मुझे इस वक्त लग रहा है. आफ्टर 50
0: 100%
2: मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, और उसकी वजह से संतुष्टि कहीं ले नहीं पाते. वो मुझे थोड़ा
0: 100% ब्रीफ में एक्सप्लेन करती हूँ. पहली चीज तो आपको जो बॉडी इश्यूज है जैसे एलर्जी इशू एंड ऑल ऑफ दैट, मेरा पहला सजेशन है कि एक फिजिशियन को जरूर दिखाइए आप, या यू नो, क्योंकि पोस्टमार्टम बॉडी बहुत चेंज हो जाता है, सारी ही केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, तो जरूरी है कि यू गेट दैट टेस्टेड. दूसरा, एम्बिशियस होना बिल्कुल भी गलत नहीं है मैम. ये तो है कि वी कांट हैव इट ऑल. अपने को दोनों नाव में हम पैर डाल के चलना थोड़ा मुश्किल है. पर मॉडर्न औरतों के लिए और भी ज़्यादा, क्योंकि मैंने कहा ना एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. काम भी करना है, फाइनेंशियल बर्डन भी संभालना है, बच्चे की अच्छी परवरिश हो वो भी देखना है. सो उस चक्कर में आपको एक सपोर्ट सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है. ये मेरी पर्सनल एडवाइस है हर वर्किंग मॉम के लिए. इनफैक्ट हर मॉम के लिए आपका एक सपोर्ट सिस्टम, भले वो दादी हो, वो नानी हो, वो मासी हो, वो बुआ हो, वो आपके हस्बैंड हो, एनी बड़ी, बट दो तीन ऐसे लोग जो आपके साथ चल के आपने जैसा बताया वैसी परवरिश करने में आपकी मदद करे. ऐसा नहीं कि आपको पता है कि मेरी पीठ पीछे ये वो फॉलो नहीं करेंगे, है ना. सो एक ऐसा ट्रस्टवर्दी सर्कल आपका होना बहुत जरूरी है, तभी आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होके काम पे ध्यान दे सकते हैं. बट मॉम गिल्ट नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. अब मातृत्व का वो पार्ट एंड पार्सल है.
1: क्योंकि क्या, घर भी संभालना पड़ता है और जॉब भी करना पड़ता है, तो उसमें ये तो होना ही है.
0: मैं आखिर में दो चीजें ये जरूर बोलूंगी कि जीरो टू जो 6-12 के बच्चे हैं उनको खेलने से ना रोकिए. हम उस समय एक गलती ये करते हैं कि हम अकेडमिक्स पे ध्यान देते हैं, मार्क्स, एग्जाम, इन चीजों पे, पर प्ले, स्पोर्ट्स, गेम्स, ये चीज़ें ब्रेन इतना बेहतरीन बिल्ड करता है जो एकेडमिक्स नहीं करेगा. और दूसरा, टीनेजर्स ना ऑलरेडी बहुत सारी दुविधा में चल रहे हैं. एक तो उनका ब्रेन पूरे हॉर्मोन्स में फ्राइड है, दूसरा एकेडमिक प्रेशर है, खुद की आइडेंटिटी बनानी है, करियर, इमोशनल कन्फ्यूजन, पीयर प्रेशर, फिर जैसे टेक्नोलॉजी है उसका बहुत सारा इम्पैक्ट. उस वजह से आप उनको लेक्चर्स ना दें. आपका अगर टीनेज कोई चाइल्ड है, उनको एक सेफ अडल्ट चाहिए जो नॉन जजमेंटल स्पेस रखे और उनके दिमाग में जो भी सवाल है वो आके बताए. अगर एडिक्शन की कोई क्वेश्चन है तो आके बताए, अगर सेक्सुअल रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आके बताए, बट आप वहाँ पे लेक्चर देंगे तो वो आपसे दूर होते जाएंगे. आपको वहाँ उनका दोस्त बनना पड़ेगा. सो ये चार एज ग्रुप्स के हिसाब से चार बेसिक चीज़ें हैं, वरना तो इतना लंबा टॉपिक खत्म नहीं होगा.
1: बरोबर आहे. म्हणजे पालकत्व हा तसा खूप मोठा विषय आहे, पण त्याच्यामध्ये आपल्याला मुलांचं मित्र आणि आई वडील असं दोन्ही बनून आपण त्यांना सांभाळायचं आहे.
0: करेक्ट.
1: तरच आपण एक म्हणजे योग्य पिढी आपण नक्कीच तयार करू शकू.
0: बॅलेन्स
1: त्याचं राखणं खूप गरजेचं आहे. आणि तुम्ही आतापर्यंत सांगितल्याप्रमाणे म्हणजे लहान मुलांशी कसं वागावं, तर त्यांना वेळ द्यायला हवा, त्यांच्या नजरेत नजर मिळून मी तुझ्यासोबत आहे हा एवढा दिलासा सुद्धा नक्कीच सपोर्टिव्ह असू शकतो. कारण आजकाल जे आत्महत्यांचं प्रमाण वाढलेलं आहे, तर त्यासाठी मी तुझ्या पाठीशी आहे एवढं जरी म्हटलं तरी मुलांना नक्कीच कळतं की नाही मी याच्यातनं बाहेर निघायला पाहिजे कारण माझे आई वडील आहेत.
0: अगदी बरोबर.
1: तर मॅडम अजून जाता जाता

0: एफएम बँड 100.6 मेगाहर्ट्झवर आकाशवाणी नागपूरचं हे विविध भारती केंद्र आहे. 10 वाजले आहेत.
1: श्रोतेहो नमस्कार. समसारा कॅन्सर केअर हॉस्पिटल लक्ष्मीनगर नागपूर प्रस्तुत हॅलो डॉक्टर या कार्यक्रमात मी वैदेही चौरे आपणा सर्वांचं स्वागत करते. श्रोतेहो, आज आपण मुख कर्करोग कारणे आणि उपचार याविषयी माहिती जाणून घेणार आहोत आणि आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत समसारा कॅन्सर केअर हॉस्पिटलचे तज्ज्ञ डॉक्टर संजोग सिंग. नमस्कार डॉक्टर.
2: नमस्कार
1: डॉक्टर. सबसे पहले तो ओरल कैंसर जब कहते हैं हम तो कैंसर ये वर्ड उसमें आता है, तो कैंसर के बारे में हम जानना चाहेंगे क्या होता है कैंसर.
2: कैंसर किसी प्रकार की जन्मजात विकृति या किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है. कैंसर एक प्रकार का ऐसा समझिए कि जो अगर हम कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है तो वो जो प्रोग्राम बनाता है उसके कंट्रोल में होता है. जैसे आजकल AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो शरीर में हो जाता है और ये खुद ही कंट्रोल करने लगता है. तो ये शरीर के कंट्रोल के बाहर चला जाता है. हमारे सेल ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि वो अपने टाइम पे जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं और फिर खुद ही खत्म हो जाते हैं. लेकिन कैंसर के सेल्स ऐसे नहीं होते. कैंसर के सेल अपने बढ़ते जाएंगे, आपको शरीर के कंट्रोल के बाहर रिप्रोड्यूस करते हैं. यानी नंबर जो होता है उनका 1 से 4, 4 से सीधा 16 इस तरह से बढ़ता है. जो शरीर का जो नॉर्मल सेल होता है वो 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, लेकिन ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है और वो कंट्रोल में नहीं होता. प्लस उसका जो साइज होता है वो भी शरीर के कंट्रोल में नहीं होता. इसीलिए वो नॉर्मल जो अगर आपके किसी अंग में कैंसर होता है तो वो दिखने लग जाता है बाहर निकल के बड़ा. और मुंह के कैंसर में खासकर कोई स्किन आपकी फट जाएगी, छाला या जख्म जिसको बोलते हैं, फोड़ा बोलते हैं हमारी भाषा में, नॉर्मल भाषा में, तो वो फोड़े जैसा दिखने लगता है क्योंकि वो ठीक ही नहीं हो रहा है, वो एक बार आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. या गठान या मांस हो गया है मुंह के अंदर तो वो भी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है. तो ये एक प्रकार से जो होता है हमारे जो बॉडी का कंट्रोल होता है सेल्स पे वो चला जाता है, तब कैंसर हो जाता है. उसके कारण बहुत से हो सकते हैं लेकिन बेसिकली होता यही है कि सेल का कंट्रोल जो है वो चला गया है बॉडी का.
1: डॉक्टर, जब ओरल कैंसर की बात करते हैं तो ये एग्जैक्टली किस लोकेशन पे होता है बॉडी में?
2: तो हमारी जो ओरल कैविटी है वो जो हमारे होंठों से शुरू होती है और जो जबान के पीछे का हिस्सा है वहां तक ये जाती है, और उसके पीछे के जो हिस्सा है उसको पड़जीभ, तो वो ओरोफेरिंक्स कहा जाता है. ओरल कैंसर सिर्फ जो होंठ से शुरू होके जीभ के पीछे के हिस्से तक, उसके बीच में जितनी चीजें हैं, उसके बीच में गाल आ गया, हृदय आ गए, आपके जो हड्डी होती है, जबड़ा होता है वो आ गए, फिर जबान आ गया. जबान के नीचे का जो हिस्सा होता है जिसको फ्लोर ऑफ द माउथ बोलते हैं. फ्लोर ऑफ द माउथ यानी जो फर्श जिसपे जबान बैठी होती है वो, और टालू हमारा जो होता है ऊपर का वो, और जो सबसे पीछे का यूवला है.

0: जीप, जो जीप के पीछे का हिस्सा होता है, ये हाँ। सब मिला के हमारा जो रीजन होता है उसको ओरल कैविटी बोलते हैं, और इसमें जो कैंसर होता है वो ओरल कैंसर माना जाता है।
1: डॉक्टर, मोस्टली कौन से एरिया में ज्यादा कैंसर दिखाई देता है?
0: ओरल कैंसर में इंडिया में ज्यादातर जबान में पाया जा रहा है। अब पहले ये गालों में पाया जाता था, लेकिन अब ये थोड़ा जबान में पाया जा रहा है। ये शिफ्ट इसीलिए भी ज्यादा हो रहा है, खासकर हमारे एरिया में, नागपुर और नागपुर के अराउंड, सेंट्रल इंडिया जिसे कहा जाता है, खर्रा खाने के कारण। क्योंकि खर्रा जब हम खाते हैं तो हमारा मुंह खुलना धीरे धीरे कम हो जाता है और जीभ में वो ज्यादा अफेक्ट करता है और यंग पेशेंट्स को ज्यादा अफेक्ट करता है। तो ये अब शिफ्ट देखा जा रहा है और इसका रिजल्ट भी बाकी कैंसर से बहुत पुअर माना जाता है। जो जबान का कैंसर होता है वो गाल के कैंसर से या तालू के कैंसर से ज्यादा खतरनाक होता है। खतरनाक ऐसे कि वो पलट के आने की संभावना, यानी अगर इसका स्टेज वन का ट्रीटमेंट मैंने किया जीभ के कैंसर का और गाल के कैंसर के स्टेज वन का किया, तो जीभ के कैंसर में वो पलट के आने की संभावना उससे बहुत ज्यादा है। तो ये ज्यादा खतरनाक जीभ में जब होता है तो माना जाता है गाल से या किसी और एरिया से।
1: डॉक्टर साहब, आपने एक रीजन तो बता दिया कि खर्रा खाने की वजह से सेंट्रल इंडिया में ये ज्यादा दिखाई दे रहा है
0: जी।
1: इसके अलावा इसके और कारण क्या होते हैं?
0: इसमें सबसे पहले तो तंबाकू का किसी भी प्रकार से आप सेवन कर रहे हैं, सबसे कॉमनली तंबाकू खैनी जो बोलते हैं हम, तंबाकू ऐसे ही खाना चूने के साथ जो लेते हैं, फिर सेंट्रल इंडिया में जो हमारे एरिया में खर्रा बहुत बड़ा कारण है, सबसे ज्यादा बड़ा कारण है, पान में आप तंबाकू मिला के खा रहे हैं। मैं अलग से ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि तंबाकू सिर्फ खाने से हो सकता है, अगर हम इसको पान में खा रहे हैं, अगर हम पान मसाले में मिला के खा रहे हैं तो नहीं होगा हमें। आप किसी भी प्रकार से तंबाकू का सेवन करें, किसी भी, यानी नस तक अगर आप अपना मंजन कर रहे हैं उससे, जो औरतें खासकर बहुत करती हैं गांवों में, नस से मंजन करती हैं, वो तंबाकू वैसे सेवन नहीं करती, लेकिन तो भी तो तंबाकू आपके शरीर में जा ही रहा है, तो उससे भी कैंसर हो सकता है। इसलिए बहुत खतरनाक है, तंबाकू आपके शरीर में किसी भी प्रकार से जाए वो कैंसर का उससे बन सकता है कारण होने का आपको। अगर मुंह में ना होगा तो किसी और जगह पे होने का कारण हो सकता है, पेट में भी हो सकता है, गले में भी हो सकता है। इसलिए आपको तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार से नहीं करना है। दूसरा कारण जो औरतों में खासकर बहुत होता है जिन्होंने कभी तंबाकू का सेवन नहीं किया, वो होता है शार्प दांत या टीथ, शार्प टीथ। तो वो शार्प टीथ जो होता है वो, यानी तेज दांत, किसी किसी के दांत बहुत तेज होते हैं, वो किसी भी कारण से हो सकते हैं। बहुत दांत आप घसते हैं, खासकर औरतों में, इसीलिए भी ये थोड़ा सा मतलब एक एनेक्डोट है, फनी एनेक्डोट इसलिए होता है कि बहुत सोचती हैं, बैठी रहेंगी 10 चीजें दिमाग में चलते रहती हैं, तो दांत पीसते रहती, पता नहीं चलता है उनको। इसलिए आप देखेंगी बहुत सी लेडीज को जो मुंह का ज्वाइंट होता है, जबड़े का ज्वाइंट कान के आगे, बहुत औरतें कंप्लेन करती हैं मुझे यहाँ दर्द होता है, वो भी एक कारण होता है आपके दांत जब आप पीस रहे हैं। गुस्सा आता है, किसी भी कारण से आ सकता है, अगर वो सोच रहे हैं किसी भी कारण से, बहुत घर में प्रेशर है, टेंशन है किसी भी प्रकार का, या नॉर्मली ऑफिस में किसी भी प्रकार से आप बहुत सोच रहे हैं और आपको ध्यान नहीं है, तो आप दांत पीसते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये आपके पार्टनर को समझ में आता है कि आप दांत पीसते हैं क्योंकि उनको आवाज आती है। लोग ये भी बताते हैं कि पार्टनर सोए हुए हैं और साथ में आवाज आ रही है दांत घसने की, आप नींद में, क्योंकि आप सोच रहे हैं दिमाग में, आपको पता नहीं, सबकॉन्शियसली आप सोच रहे हैं और दांत घस रहे हैं। तो ये इससे आपके दांत शार्प हो सकते हैं, और शार्प दांत से बार बार एक ही जगह पे अगर आपको ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा या चोट लग रही है, जख्म बन रहा है, तो शरीर शुरू में तो 10 बार 20 बार 30 बार वो जख्म भर देगा, लेकिन अगर वो 50वीं बार हुआ, 100वीं बार हुआ, डिपेंड करता है, सबकी इम्यूनिटी अलग होती है, सबका शरीर की लड़ने की शक्ति अलग होती है, लेकिन कभी ना कभी वही जगह पे बार बार चोट लगने के कारण, जख्म बनने के कारण, किसी एक दिन वहां पे कैंसर जरूर बन सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि तंबाकू से है, ये शार्प दांत से हो सकता है, और ये जब बन जाता है कभी तकलीफ वाला, तो फिर वो ठीक नहीं होता। इसीलिए अगर आपके मुंह में ऐसा कोई कारण है तो आप उसको घसवाइए मत। ये सबसे बड़ा एक मिथ भी है हम जो करते हैं, हम दांत घसवा लेते हैं, दांत घसने से वो फिर से शार्प हो जाता है थोड़े दिन के बाद, तो आपको उस पे कैप बिठाना है डेंटिस्ट के पास जाके, जो एकदम राउंडेड हो, एकदम गोल हो, जो चबे ना, ना आपका जीभ चबे ना आपका गाल चबे, वो इस तरह का ट्रॉमा ही ना क्रिएट होने दे जिससे आपको चोट लगती है। तो

0: ये कारण हम निकाल सकते हैं इसे।
1: डॉक्टर साहब, इस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे। श्रोते हो आपण ऐकत आहात समसारा कॅन्सर केअर हॉस्पिटल लक्ष्मीनगर नागपूर प्रस्तुत हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम। आजचा आपला विषय आहे मुख कर्करोग कारणे आणि उपचार, आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत समसारा कॅन्सर केअर हॉस्पिटलचे तज्ञ डॉक्टर संजोग सिंग। डॉक्टर, फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम में।
0: जी
1: ओके, तो ये बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं।
0: नहीं, एक और बहुत बड़ा रीजन है जो अब थोड़ा कम हो गया है।

0: फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम में
1: जी।
0: ओके, तो ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं।
1: नहीं, एक और बहुत बड़ा रीजन है जो अब थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि हाँ। पहले जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते थे वो कौड़ी पहनते थे, डेंचर जिसे बोला जाता है।
0: हाँ हाँ।
1: अब थोड़ा कम हो गया है वो पहनना, एडवांस प्रोस्थेसिस और जो ब्रिजेस बनने लग गए हैं मुंह के अंदर, पहले बहुत लोग पहनते थे। तो ये पहनने के कारण बहुत लोग, अब हमारी भारतीय होने की एक आदत है, हम किसी भी चीज को काम चला लेते हैं। हम सोचते हैं कि तकलीफ हो भी रही है तो चला लेते हैं यार, एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन वो जब डेंचर फिट नहीं हो रहा होता है और वो घस रहा है मुंह के अंदर, तो वो नहीं अच्छी बात है, घसना नहीं चाहिए। वो एकदम अच्छा फिट होना चाहिए। वो फिट हो जाए और आपको पता भी ना चले कि ये मुंह के अंदर कुछ है, ऐसा फिट होना चाहिए। बार बार घस रहा है तो वो जो है एक तरह का प्लास्टिक मटेरियल है जिससे डेंचर बनता है, और वो प्लास्टिक मटेरियल आपके शरीर पे यानी तालू पे या हृदय पे घस रहा है।
0: हाँ।
1: तो उससे जो जख्म बनता है, बार बार अगर बन रहा है तो वो उससे भी कैंसर हो सकता है।
0: ओके।
1: तो वो नहीं बनना चाहिए। अगर आपके डेंचर से आपके मुंह में घस रहा है और जख्म बन रहा है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए, उसको ठीक करवाइए। हाँ। वेट नहीं करना है कि नहीं ठीक हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी, नहीं। और हाँ। वो जिस उम्र के लोग पहनते हैं उनको तो फिर और तकलीफ हो जाती है। इसीलिए ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके माँ बाप पहन रहे हैं, आपके बड़े बुजुर्ग पहन रहे हैं, उनको पूछना है। बहुत बार वो नहीं बताते हैं, सोचते हैं कि हम क्या तकलीफ दें अपने बच्चों को, लेकिन उनको पूछना है आपको कि आपको इससे कोई तकलीफ हो रही है। अगर वो कहते हैं हाँ थोड़ा जख्म बन रहा है या तकलीफ होती है, दुखता है, गड़ता है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके ठीक कराइए उसे।
0: डॉक्टर, कारण जानने के बाद ऐसे लगता है कि ओरल कैंसर के लक्षण क्या दिखाई देते हैं?
1: सबसे कॉमनली जो लक्षण होता है, जो सिंपल होता है, वो एक प्रकार का छाला है। जो नॉर्मल छाला जो होता है आपके मुंह में, एसिडिटी हो गई तो एक छाला हो गया, आपको ठीक से खाना नहीं हुआ तो आपको छाला हो गया, ये छाला 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। और ये दर्द वाला छाला होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखिए आप।
0: हाँ।
1: कि जो तोंडाला वटते है बोलते हैं ना हम लोग, वो जो होता है वो बहुत दर्द देता है आपको, 4-5 दिन अति दर्द रहेगा आपको। लेकिन जो तकलीफ वाला ये कैंसर का छाला है ना, वो शुरू में दर्द कभी नहीं देता। वो जब बन जाता है ना, वो उस समय दर्द नहीं देता, वो सिर्फ आपको दिखेगा कि हाँ मुझे एक छाला है। ये एक बहुत बड़ी पहचान है उसकी, और वो 15 से 20 दिन के बाद भी ठीक नहीं होगा। वो वाला जो एप्थस या जो एसिडिटी या कोई और कारण से चोट लग गई आपको, वो छाला 15 से 20 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, 1 महीने मैक्स टू मैक्स। लेकिन 1 महीने से ऊपर अगर कोई छाला है आपके मुंह में और आप तंबाकू का सेवन करते हैं या नहीं करते हैं, आपको जरूर डॉक्टर के पास जाके उसको दिखाना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए उसमें, 1 महीना बहुत बड़ा समय होता है कोई भी दूसरे प्रकार के छाले को ठीक होने के लिए। 1 महीने में भी अगर वो ठीक नहीं हुआ है तो मतलब वो तकलीफ वाला हो सकता है।
0: हाँ।
1: तो आपको उसको जाके दिखाना चाहिए। फिर मुंह के अंदर कोई गठान है, कोई मांस जैसा बन गया है, तो वो जरूर दिखाइए, ये भी एक चिन्ह है उसका। किसी प्रकार का सफेद या लाल दाग है, चट्टा, वो भी एक कारण हो सकता है बाद में, या चिन्ह हो सकता है, तो उसको भी दिखाना है आपको। कुछ और साइंस होती है जो मुंह के आसपास के जो एरिया है उसमें कहीं मांस आ सकता है। सडनली आपकी आवाज बदल गई, मेरा नाम संजोग सिंह है, ये मेरी नॉर्मल आवाज है, मेरा नाम संजोग सिंह है, ऐसी आवाज होगी, हवा निकल रही है आपकी आवाज में से।
0: हाँ।
1: तब ये एक साइन है कि आपके स्वर तंत्र में कुछ अटक रहा है। जो हमारा स्वर तंत्र ऐसे काम करता है, जब वो बंद हो जाता है और हवा की कंपन से आवाज निकलती है, जब वो बंद नहीं हो पा रहा है तब हवा पास हो जाती है उसमें से और हवादार आवाज आने लगती है, एरी आवाज।
0: हाँ, हाँ।
1: ये एक साइन है कि आपका स्वर तंत्र ठीक काम नहीं कर रहा है। आपको जरूर कुछ अंदर गले के हो सकता है मांस या छाला, तो आपको जाके दूरबीन से जांच करानी चाहिए। तो वो आपको स्पेशलाइज डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जनरल डॉक्टर के पास वो दूरबीन नहीं होती है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने जनरल डॉक्टर के पास जा, वहां पे 1 महीना वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो कुछ दवा दे देते हैं, फिर हम वेट करते रहते हैं, तब तक वो बढ़ जाएगा। इसलिए जब भी आपकी आवाज में बदलाव है, ENT डॉक्टर के पास आपको जाना है, जो आपकी दूरबीन से जांच कर देंगे। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप निकल गए उसमें से, लेकिन अगर है तो फिर इमीडिएटली वो आपको निदान बताएंगे उसका। फिर आपको सांस लेने में, अगर आप देख रहे हैं आपको आवाज आ रही है कि मेरी एक ही नाक से हवा जा रही है, एक नाक से आपको फील ही नहीं हो रहा कि मेरी नाक हवा जा रही है, या आपको स्मेल नहीं आ रही, तो ये एक बुरा चिन्ह है। ये नाक के पीछे का जो हिस्सा है जो मुंह से जुड़ा हुआ है, वहां पे मांस हो सकता है। तो वो भी फिर आपको ENT डॉक्टर के पास जाके उसको दूरबीन से जांच करा लेनी चाहिए। ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ सीधा आंखों से नहीं दिख पाएगा, तो आपको दूरबीन से जांच करना जरूरी है। तो आपको डॉक्टर को बोलना पड़ेगा मुझे एक बार दूरबीन

0: दूरबीन से जांच करके आप दिखा दीजिए पीछे, हाँ, ताकि हाँ. आप भी निश्चिंत रहें, डॉक्टर भी निश्चिंत रहें. फिर इसके अलावा और ये हो सकता है कि सडनली आप गिटकने में आपको तकलीफ हो रही है, ठसका लग रहा है बार बार आपको. किसी किसी को बहुत ठसका लगता है, आप देखेंगे. जनरली एसिडिटी या गैस के कारण होता है, लेकिन यही चीज अगर आप तंबाकू का या स्मोकिंग का सेवन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से बीड़ी पी रहे हैं, उन लोगों में अगर बार बार ठसका लग रहा है पानी पीने में, खाना खाने में, तो जरूर दूरबीन से एक बार जांच करानी चाहिए. अच्छा चिन्ह नहीं है ठसका लगना बार बार, यानी हर बार आपको पानी पीना पड़ रहा है
1: हाँ.
0: खाना गटकने के लिए, खाना आराम से नहीं जा रहा है नीचे, नहीं उतर रहा है, तो मतलब हो सकता है कि वहां पे कोई मास है जो रोक रहा है उसे. तो ये एक कारण हो सकता है, जरूर इसकी जांच करानी चाहिए. तो ये कुछ कॉमन घसे और मुंह के मैं बता रहा हूँ आपको, जो जरूर हाँ. आप जो नॉर्मली हो सकता है, और आप ये चीज का इमिडिएटली जाके बात कर सकते हैं, दिखा सकते हैं डॉक्टर को. स्वर परीक्षण भी कर सकते हैं, स्वर परीक्षण मुंह के इसमें कर सकते हैं, लेकिन बाकी का इसमें आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए.
1: डॉक्टर साहब, इस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे. श्रोते हो, आपण ऐकत आहात समसारा कॅन्सर केअर हॉस्पिटल लक्ष्मीनगर नागपूर प्रस्तुत हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम. आजचा आपला विषय आहे मुख कर्करोग कारणे आणि उपचार, आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत समसारा कॅन्सर केअर हॉस्पिटलचे तज्ज्ञ डॉक्टर संजोग सिंग. डॉक्टर, फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम में.
0: जी
1: डॉक्टर साहब, बहुत चीजें हमने जानी कि कैंसर क्या होता है, एग्जैक्टली ओरल कैंसर क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं. अब आता है डायग्नोसिस, तो इसे डायग्नोस कैसे कर सकते हैं?
0: देखिए, डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले, सबसे बड़ा स्टेप और सबसे पहला स्टेप है स्व परीक्षण. स्व परीक्षण में आपको मुंह के कैंसर में या मुंह के कर्क रोग में 8 स्टेप्स. आप जाएंगे कभी भी इंटरनेट पे ना, एक बहुत फेमस फोटो है, उसमें एनिमेटेड फोटो है, कार्टून की फोटो है, उसमें उन्होंने 8 स्टेप्स दिखाए हैं कैसे आप अपने होंठ को उठा के, ऊपर के होंठ को, नीचे के होंठ को नीचे करके, जबान को साइड करके, यानी ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास जाना, आप खुद भी कर सकते हैं ये काम. उसमें स्टेप्स दिखाए गए हैं, तो ये आप स्व परीक्षण से शुरू कर सकते हैं. लेकिन इसमें लिमिटेशन क्या है, आपको ऐसी जगह देखना पड़ेगा मिरर के सामने, और दूसरा या तो कोई सामने रहे आपका देखने के लिए, तो बहुत बार हो सकता है उसमें छूट सकता है. तो ये एक लिमिट, और आपका मुंह अच्छा खुलना चाहिए इसके कारण.
1: हाँ.
0: अगर आपका मुंह नहीं खुलता है किसी भी कारण से, खासकर अगर आप खर्रे का प्रयोग करते हैं या पान मसाला खाते हैं जिसके कारण आपका मुंह कम खुलता है, तो फिर आप नहीं देख पाएंगे. तो उससे अच्छा है आप डॉक्टर के पास चले जाएं.
1: हाँ.
0: और नॉर्मली हर 3 महीने में दिखाते रहें. ये पहला स्टेप है निदान का, कि आप एग्जामिन करते रहें. अगर सपोज आपको अनफॉर्चुनेटली कोई छाला हो गया है, तो वो छाला आप 10-15 से 20 दिन तक वेट करिए, देखिए ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा. 1 महीने तक भी रुक सकते हैं, लेकिन 1 महीने से ज्यादा मत रुकिए. 1 महीना बहुत लंबा समय होता है ठीक होने के लिए. अगर नहीं ठीक हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए और उनको देखने दीजिए. और देख के अगर वो बायोप्सी बोलते हैं, बायोप्सी का क्या मतलब होता है, बायोप्सी मतलब हम वो जो छाला है उसकी प्रकृति जानना चाहते हैं, वो किस प्रकार के सेल्स या अंश उसके अंदर है, वो हम आंखों से देख के नहीं बता सकते. वो माइक्रोस्कोप के अंडर पैथोलॉजिस्ट को देखना जरूरी है, क्योंकि जो कैंसर होते हैं उसके कुछ स्पेशल चिन्ह होते हैं माइक्रोस्कोप में, जो नॉर्मल सेल्स और कैंसर के सेल्स को अलग करते हैं. वो सिर्फ वो माइक्रोस्कोप में देख के निश्चित कर सकते हैं 100%, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है. तो वो जो टुकड़ा निकालते हैं, वो टुकड़ा निकालने को बायोप्सी कहते हैं. और वो टुकड़ा निकाल के जांच के लिए आपको भेजना होता है. वो जांच माइक्रोस्कोप के अंडर पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो करते हैं, और वो करके फिर निश्चित करते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं. ये गोल्ड स्टैंडर्ड है. बहुत से लोग आपको पूछते हैं आके, सर स्कैन कर दीजिए, हमारा स्कैन में बता दीजिए कि कैंसर है कि नहीं. स्कैन में मैं बता नहीं सकता आपको कैंसर है या नहीं. मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ कुछ है जो दिख रहा है मुझे, और जो यहाँ पर है जितने एरिया का आपने स्कैन किया है, मैं उसमें देख के बता सकता हूँ कि हाँ ये कुछ है, इतना बड़ा है और ये एरिया में है. लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि ये कैंसर है, क्योंकि मुझे कैंसर बोलने के लिए उसकी प्रकृति जानना जरूरी है, जो सिर्फ एक पैथोलॉजिस्ट मुझे बता सकते हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट को. तो वो रिपोर्ट मुझे चाहिए. हाँ, निश्चित हो गया कि ये कैंसर है बायोप्सी की रिपोर्ट के बाद, फिर मैं स्कैन कराऊंगा. स्कैन में हम मुंह का स्कैन, घसे का, गले का स्कैन करते हैं, और छाती का स्कैन करते हैं. बहुत से पेशेंट मुझे पूछते हैं, सर लंग्स का क्यों, आप छाती का क्यों कर रहे हैं?
1: हाँ.
0: तो ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारा ट्रीटमेंट होता है ना, वो इस पे डिपेंड करता है कि कैंसर कहाँ कहाँ पे चला गया. अगर वो कैंसर है तो वो मुंह में है, वो गले में गया है, और क्या वो छाती में गया. ये 3 हम शरीर के किसी और अंग में गया.

0: ये सब से इलाज बदल जाता है। अगर सिर्फ मुंह में है तो इलाज अलग है, अगर मुंह और गले में है तो इलाज अलग है, अगर मुंह में क्या क्या पकड़ा है, उसने कितना बड़ा है तो इलाज अलग है।
1: हाँ।
0: तो ये सब इलाज अलग हो जाते हैं, इसलिए स्टेजिंग में इलाज बदल जाता है। और अगर वो छाती में चला गया, लंग्स में, फेफड़ों में चला गया है, तो इलाज एकदम बदल जाता है और वो पेशेंट की फिर बचने की उम्मीद भी कम हो जाती है, इलाज कम हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये निश्चित करना होता है इलाज से पहले कि कैंसर कहाँ कहाँ पर है, इसलिए वो हम सीटी स्कैन में कराते हैं। आजकल पेट स्कैन का बहुत प्रचलन शुरू हो गया है। पेट स्कैन एक इस प्रकार का स्कैन है जिसमें न्यूक्लियर डाई दिया जाता है और वो न्यूक्लियर डाई स्पेशली कैंसर सेल्स पकड़ लेते हैं और वो कहाँ कहाँ पे, वो ऐसे लाइट जल जाती है और दिखती है कि हमको यहाँ यहाँ, तो वो और निश्चित कर देता है कि अच्छा ये कैंसर सेल्स यहाँ यहाँ पे। लेकिन महंगा होता है वो, तो वो इसीलिए भी अभी जो रिकमेंडेशन होती है ना कैंसर की, जो एक हम लोग की रिकमेंडेशन होती है, स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन जिसे बोलते हैं, जो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड फॉलो होती है, उसमें अभी रिकमेंडेशन में पेट स्कैन नहीं आया है कि पेट स्कैन ट्रीटमेंट के शुरू में ही कराना चाहिए या नहीं। हाँ, पेट स्कैन जब बीमारी पलट के आती है, जब मैं इलाज कर चुका हूं पूरा, पेशेंट को इलाज करके समझ लीजिए 1 साल हो चुका है, 2 साल, लेकिन फिर कुछ आया, उसको एक छाला आ गया, मांस आ गया, जो कैंसर में बहुत आता है ऐसा, तब फिर स्कैन करा के देखते हैं कि सिर्फ वही आया है क्या, क्योंकि मैं तो सिर्फ वही देख पा रहा हूं, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि जब पलट के आती है ना बीमारी, तो काफी जगह पे आ सकती है, फिर सिर्फ मुंह में नहीं, फेफड़ों में भी आ सकती है, लीवर में भी आ सकती है, पेट में भी आ सकती, कहीं पे भी आ सकती है, तब मुझे पेट स्कैन की जरूरत पड़ती है। इसलिए पेट स्कैन जब बीमारी पलट के आती है ना, तब रेकमेंडेड है, ट्रीटमेंट जब शुरू हो रहा है तब रेकमेंडेड नहीं है, तब सिर्फ सीटी स्कैन या एमआरआई से हो सकता है काम। तो सीटी स्कैन या एमआरआई कराया और ये करा के फिर हमने उसकी स्टेज निश्चित की। स्टेज निश्चित करना क्यों जरूरी है, इसमें स्टेज 1, 2, 3, 4 ऐसा स्टेजेस है। स्टेज से हमें क्या पता चलता है, मैं अगर पेशेंट्स को काउंसिल कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट बताना चाहता हूँ, तो ये जो स्टेज होता है ये मुझे बताता है कि मैं पेशेंट को समझा सकूं कि ये स्टेज पे आपकी बचने की, बीमारी की पलट के आने की संभावना कितनी है। ये किसने निश्चित की है, ये न मैंने निश्चित की है न किसी और डॉक्टर ने निश्चित की है, ये एक बहुत बड़ी स्टडी होती है जो बहुत सारे डॉक्टर्स के रिजल्ट होते हैं और सालों तक किए गए हैं, उसमें से जो पैटर्न बनता है उसमें से ये निश्चित होता है। इसीलिए मैं कभी 100% आपको ये नहीं बोल सकता कि ये मैंने इलाज किया तो आप 100% ठीक हो जाएंगे। कैंसर में ये नहीं जवाब दे सकता मैं, कैंसर में मैं परसेंटेज बता सकता हूं आपको कि ये इतने में से इतने लोगों का जब ऐसा इलाज हुआ था तो इतने लोगों का ये रिजल्ट आया था। तो जरूरी नहीं है कि वो 100 लोगों का वो सेम रिजल्ट आया, उसमें से 90% का ये रिजल्ट आया और 10 लोग फिर भी उसमें ऐसा दूसरा कुछ रिजल्ट आया, तो 100% कुछ भी नहीं है कैंसर में।
1: हाँ।
0: तो ये जो स्टेज होता है ये मुझे बताता है कि स्टेज 1 की बीमारी का क्या रिजल्ट होगा, पेशेंट कितने दिन, आप देखेंगे कैंसर के पेशेंट सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं, सर कितने दिन तक रहेंगे। बहुत ही निर्दयी सवाल है ये हमारे लिए जवाब देना ना, ये किसी के लिए बोलना कि आप सामने वाले को, रिलेटिव्स भी पूछना चाहते हैं कि सर कितना बचेंगे, इससे दुखद जवाब कोई नहीं है मेरे लिए जवाब देना कि पेशेंट को ये बताना है रिलेटिव, लेकिन ये जवाब नहीं है हमारे पास, ये मेरे पास नहीं है इसका जवाब, क्योंकि सबकी इम्यूनिटी अलग होती है, सबकी बॉडी अलग होती है। हाँ, मैं उनको एक पैटर्न बता सकता हूँ कि इस स्टेज में इतने परसेंट लोग इतने दिन तक ठीक थे, लेकिन जरूरी नहीं आप उस परसेंट में आएंगे ना, वो आप दूसरे परसेंट में भी आ सकते हैं। तो जैसे स्टेज 1 में हम कहते हैं कि 90% लोग निकल जाते हैं, तो कोई भी कैंसर का जो रिजल्ट होता है वो 5 साल में देखा जाता है। 5 साल में देखा जाता है, इससे मतलब जो मैंने एक ट्रीटमेंट दिया पेशेंट को, वो पेशेंट 5 साल तक देखा जाता है कि 5 साल तक इनको बीमारी फिर से नहीं आई या ये रहे, जीवित रहे, ठीक रहे, ये 5 साल के इसमें देखा जाता है। ये जब मैं बता रहा हूं तो ये समझ लीजिए कि मैं 5 साल का बता रहा हूँ, 5 साल के ऊपर भी हो सकते हैं वो, लेकिन हमारी जो स्टडीज होती हैं सब 5 साल की होती हैं। तो जो स्टेज 1 होता है उसमें 90% लोग, 90 से थोड़े ज्यादा, ये 5 साल और उससे अधिक रह लेते हैं। स्टेज 2 में 80%, 85%, स्टेज 3 में ये 60% पे आ जाते हैं और स्टेज 4 में ये 40% पे आ जाते हैं। स्टेज 4 सबसे दुखद स्टेज है जब ये होते हैं, तो वो 40% पेशेंट आप

0: किस में है, वो 40 में है कि आप वो 60 में है, वो मैं नहीं बता सकता। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि अपन इलाज पूरा करेंगे हम लोग, और वो इलाज से जो रिजल्ट आएगा वो तो हमें पता चलेगा आगे, क्योंकि इलाज सबका सेम होता है।
1: डॉक्टर, इलाज की बात हुई है तो हम जानना चाहेंगे कि इलाज कैसे होता है और कुछ एडवांस ट्रीटमेंट है क्या?
0: जी, तो इलाज सबसे पहले मुंह के कैंसर में तो सबसे बेस्ट इलाज और सबसे बेस्ट चांस पेशेंट का बीमारी से निकलने का सर्जरी ही माना गया है आज भी। सर्जरी करके आप वो कैंसर को पूरा निकाल सकते हैं, और उसके बाद जरूरत पड़ी तो आप रेडिएशन देना है, कीमो देना है। ये उस सर्जरी की जो पैथोलॉजी रिपोर्ट होती है, एक रिपोर्ट आती है जो उसमें देखी जाती है कि ये जो पूरा कैंसर निकाला गया ये कैसा निकाला गया, पूरा अच्छे से निकला है या कहीं कहीं पे पास में है मार्जिन, या ये जो इसकी प्रकृति है ये बहुत अग्रेसिव है। तो ये वो पैथोलॉजिस्ट हमको बताते हैं कि इसमें और भी ट्रीटमेंट देने की जरूरत है आगे। फिर अगर जरूरत है तो फिर रेडिएशन के लिए पेशेंट को भेजा जाता है। तो कोई भी कैंसर का 3 प्रकार से इलाज होता है, मुंह के कैंसर में बता रहा हूं, सर्जरी, रेडिएशन जिसे लाइट का ट्रीटमेंट कहते हैं या सिकाई कहते हैं, और कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक प्रकार के इंजेक्शन होते हैं। लोगों को ये भी थोड़ी मिथ है कि कीमोथेरेपी में क्या होता है, नॉर्मल सलाइन के जो इंजेक्शन होते हैं ना वैसे ही ये इंजेक्शन होते हैं जो पेशेंट को लगाए जाते हैं, और कीमोथेरेपी इससे अलग कुछ नहीं है। बस उसमें वो जो दवा होती है उसका काम होता है कैंसर के सेल्स को मारना। तो ये तीनों ट्रीटमेंट में पूरा कैंसर डिवाइडेड है, इनका इलाज किस स्टेज में कौन सा इलाज देना होता है वो स्पेसिफिक निश्चित किया गया है रिकमेंडेशन में। स्टेज 1 में सिर्फ सर्जरी में हो जाता है आपका काम, स्टेज 2 में भी हो जाता है सिर्फ सर्जरी में, लेकिन जैसे ही आप स्टेज 3 में आते हैं वो एडवांस माना जाता है, तो उसमें आपको रेडिएशन सर्जरी के बाद देना जरूरी होता है, और स्टेज 4 में तो होता ही है। ठीक है, ये स्टेज 4 में कुछ ऐसी चिन्ह माने जाते हैं जिसके साथ कीमोथेरेपी देना जरूरी होता है। लेकिन अब कुछ ऐसी स्टडीज आई हैं, खासकर टाटा मेमोरियल से, जो सबसे बड़ा हमारा अस्पताल है कैंसर का इंडिया में, जो बहुत रिसर्च करता है इस पे, उन्होंने कहा है कि जो बहुत एडवांस कैंसर्स हैं, जो पहले ऐसे कहते थे कि इनका कुछ ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते, सर्जरी नहीं कर सकते, उसमें उन्होंने कुछ कीमोथेरेपी लगाई और उसको थोड़ा कोशिश किया कि छोटा करें और फिर उसकी सर्जरी की, तो उसमें कुछ सफलता उनको मिली है। ये नहीं बोलूंगा कि सब में सफलता मिली, कुछ केसेस में उनको सफलता मिली है। तो आजकल ये कहा जाता है कि जो बहुत एडवांस कैंसर होते हैं उसमें पहले कीमो दे दें, बहुत एडवांस, मैं ये बार बार बोलूंगा, बहुत एडवांस कैंसर मुंह के, उसमें पहले कीमो दे के उसको कोशिश करते हैं थोड़ा कम करें और फिर सर्जरी करके उसका रिजल्ट अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ये लेकिन ये बहुत लिमिटेड केसेस होते हैं, सब में नहीं। तो पेशेंट बोलते हैं पहले ही आके हमको टैबलेट दे दीजिए कीमोथेरेपी के, हमें इंजेक्शन लगा दीजिए, लेकिन ये दो धारी तलवार है, ये अच्छा भी कर सकती है और आपका समय भी व्यर्थ हो सकता है। वो कीमोथेरेपी के इंजेक्शन जरूरी नहीं है कि सब में वही असर दिखाएंगे, तो हो सकता है आपका समय व्यर्थ हो जाए और वो डिजीज बीमारी बढ़ जाए, फिर हम ऑपरेट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के हम देते हैं वो
1: इम्यूनोथेरेपी का या टारगेटेड थेरेपी।
0: तो इम्यूनोथेरेपी ये शुरू में नहीं देते, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, इम्यूनोथेरेपी कभी भी कैंसर की शुरुआत में, यानी मुंह के कैंसर की शुरुआत में नहीं दिया जाता। ये तब दिया जाता है जब बीमारी पलट के आई है, तब आप पेशेंट को देना शुरू करते हैं ये, और ये थोड़ी महंगी होती है इम्यूनोथेरेपी। ये स्पेसिफिक केसेस में काम करती, सब में काम नहीं करेगी। तो जब बीमारी पलट के आती है तो उसका फिर से बायोप्सी होता है, और वो बायोप्सी में कुछ एक जो चिन्ह होते हैं उसी को देखते हैं कि ये चिन्ह है क्या इसमें। अगर वो सेल्स में वो चिन्ह है तो ही वो इम्यूनोथेरेपी काम करेगी, अगर वो नहीं है तो इम्यूनोथेरेपी का काम करने का परसेंटेज काफी कम हो जाता है। और इंडिया ऐसी कंट्री है जिसमें सबके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि आप 2-2 लाख या 1.5 लाख का या 50,000 का इंजेक्शन रेगुलरली लगा सके, इसलिए बहुत सोच समझ के इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। काफी पेशेंट इंसिस्ट करते हैं कि सर हमें लगा दीजिए आप, लेकिन वही इंडिकेशन होना चाहिए उसका, बिना इंडिकेशन के लगाना वो सही भी नहीं है, क्योंकि हमारी उम्मीद बनते जाती है फिर उससे। लेकिन हाँ, कुछ कुछ में बहुत अच्छा रिजल्ट है जहां पे मैं वो चिन्ह दिखते हैं, इसलिए वो टेस्ट करना पहले जरूरी है। टारगेटेड थेरेपी का अभी मुंह के कैंसर में अभी उतना नहीं पाया गया, उतना रिसर्च में अभी तक ऐसा नहीं दिखाया कि बहुत असर हुआ है। तो इम्यूनोथेरेपी जब बीमारी पलट के आती है तभी काम आती है।
1: हाँ, डॉक्टर साहब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय को देखते हुए आज यही रुकना पड़ेगा। डॉक्टर संजोग सिंह, आप यहाँ पर आए और मुख कर्क रोग कारण और उपचार इस विषय पर हमारे श्रोताओं को मार्गदर्शन किया। आकाशवाणी की ओर से मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद।

0: तुलसी कुमार की आवाज में अराफत महमूद की रचना भी आपने सुनी। तनिष्क बागची का संगीत था।
1: देखो डर मरे
2: नहीं, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, शुद्ध नमक देना। शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम इवेपोरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता
3: तो
2: है।
3: ऐसा बोलो ना,
2: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान। ये हुई ना बात।
4: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध कि बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण।
5: नागपूर महानगर पालिकेकडून प्रॉपर्टी टॅक्स वर खास सवलत। 31 जुलै 2026 पूर्वी चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 चा मालमत्ता कर ऑनलाईन भरा आणि मिळवा 15% सूट। तसेच वसुली केंद्रावर ऑफलाईन भरल्यास 10% सूट उपलब्ध। घरी बसून ऑनलाईन सुविधेचा लाभ घ्या, वेळ, इंधन आणि त्रास वाचवा।
6: अधिक माहितीसाठी नागपूर महानगरपालिकेच्या वेबसाईटला भेट द्या। जनहितार्थ प्रसारित।
0: विश्व संगीत के कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत। आइए अब सुनते हैं सोहम नाईक को।

श्रोताओ, अभी आपने तनया सिंह को सुना। गीतांजलि सिंह की रचना थी और अजीत सिंह का संगीत। आप सुन रहे हैं मिश्र संगीतों का कार्यक्रम मिश्र संगीत।

मिश्रा संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अमित मिश्रा, इनकी आवाज में कौशल किशोर की रचना, कौशिक गुड्डू का संगीत।

श्रोताओ, मधुमालती कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। आज का सफर आप तय करेंगे आपकी रेडियो सखी भावना के साथ। तो आइए कार्यक्रम का आगाज मणिकर्णिका फिल्म के इस गीत से।

श्रोताओं, कहा जाता है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित, लेकिन यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार और समाज शिक्षित होता है। नारी केवल सृष्टि की जननी ही नहीं बल्कि समाज की प्रेरणा, शक्ति और प्रगति की आधारशिला भी है। समय के साथ महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और क्षमता का परिचय दिया, चाहे विज्ञान हो या खेल, साहित्य हो या कला, राजनीति हो या व्यवसाय। महिलाओं ने अपने परिश्रम, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से नई ऊंचाइयां हासिल की। आज की महिला घर और परिवार की जिम्मेदारियां इन्हें निभाने के साथ साथ देश और समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वह अपने सपनों को साकार कर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन रही है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन महिलाओं की जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई और अपने कार्यों से समाज को नई दिशाएं दी।

चक दे इंडिया इस फिल्म से हेमा सरदेसाई की आवाज में ये गीत अपने सुना। आइए अब सुनते हैं शान तथा कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में दिल चाहता है इस फिल्म से ये गीत। जावेद अख्तर के बोल है।

चक दे इंडिया इस फिल्म से हेमा सरदेसाई की आवाज में ये गीत अपने सुना। आइए अब सुनते हैं शान तथा कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में दिल चाहता है इस फिल्म से ये गीत। जावेद अख्तर के बोल है और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

श्रोताओं, महिलाओं ने विज्ञान के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। अंतरिक्ष से लेकर अनुसंधान प्रयोगशालाओं तक उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत से असंभव को संभव बनाया है।

श्रोताओ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुमालती। अब एक निवेदन सुनते हैं। श्रोताओ कृपया ध्यान दें, अगर आप अपनी पसंद के पुराने हिंदी फिल्मी गाने सुनना चाहते हैं तो आप हमें आज यानी बुधवार को फोन कर सकते हैं दोपहर 12 बजे से 12:45 के दरमियान, और कार्यक्रम है नीलावर सारीज हेलो सुनहरे नगमे। हमारे फोन नंबर है 6940067256011 और 2529266। तो हमें फोन करना न भूलिएगा आज दोपहर 12 बजे से 12:45 के दरमियान। निवेदन समाप्त हुआ। मधुमालती कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। आइए अब सुनते हैं मिनमिनी के आवाज में रोजा फिल्म का ये गीत, पीके मिश्रा के बोल और एआर रहमान का संगीत

श्रोताओं, खेल जगत में भी महिलाओं ने देश का गौरव बढ़ाया। उनकी मेहनत, अनुशासन और संघर्ष ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया है। खेल क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी भागीदारी, उपलब्धियों और नेतृत्व से सभी बाधाओं को तोड़ा है। आज वे ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रीय स्तर पर देश को गौरवान्वित कर रही है। आज लड़कियां केवल खेलने तक सीमित नहीं, बल्कि वे कोच, फिजियोथेरेपिस्ट और निर्णायक के रूप में भी खेल प्रबंधन में शानदार नेतृत्व कर रही है। प्रमुख भारतीय महिला खिलाड़ी, भारत की कई बेटियों ने विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। इसमें हम मेरी कॉम का नाम लेना ही होगा।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा?
0: हाँ बोलते हैं।
1: लगेज पुलिस स्टेशन लाया। थांबा, नाहीतर घरी येऊ हा।
0: पण का मी
1: एकट्या दुसऱ्या खोलीत जा। तुमचा मुलगा आमच्या कस्टडी मध्ये आहे आणि तुम्हाला डिजिटल अरेस्ट केलाय।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 द्या, वाचाल।
0: इतके पैसे?
1: बरं ठीक आहे, एक लिंक पाठवली आहे, लगेच प्रोसेसिंग साठी 30,000 द्या, नाहीतर मुलगा जेल मध्ये जाईल।
0: जेल मध्ये तर तू जाणार, तुझा चेहरा रेकॉर्ड झालाय।
1: अरे
0: डिजिटल अरेस्ट असं काही नसतं, हे सगळं फ्रॉड आहे, म्हणून घाबरू नका। पोलीस, बँक, RBI इत्यादींच्या नावाने येणाऱ्या सायबर गुन्हेगारांच्या फोन किंवा व्हिडिओ कॉल पासून सावध रहा। त्यांना पैसे पाठवू नका आणि लगेच पोलिसात रिपोर्ट करा।
2: हॅलो मम्मा।
0: हाय।
3: RBI सांगते,
4: जाणकार बना, सतर्क रहा।
5: नागपूर महानगरपालिकेकडून प्रॉपर्टी टॅक्स वर खास सवलत। 31 जुलै 2026 पूर्वी चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 चा मालमत्ता कर ऑनलाइन भरा आणि मिळवा 15% सूट। तसेच वसुली केंद्रावर ऑफलाईन भरल्यास 10% सूट उपलब्ध। घरी बसून ऑनलाइन सुविधेचा लाभ घ्या, वेळ, इंधन आणि त्रास वाचवा।
6: अधिक माहितीसाठी नागपूर महानगरपालिकेच्या वेबसाईटला भेट द्या। जनहितार्थ प्रसारित।
7: श्रोताओ कृपया ध्यान दे, अगर आप अपनी पसंद के पुराने हिंदी फिल्में गाने सुनना चाहते हैं तो आप हमें आज यानी बुधवार को फोन कर सकते हैं 12:00 से 12:45 के दरमियान, और कार्यक्रम है नीलावर सारीज हेलो सुनहरे नगमे। हमारे फोन नंबर 6940067-25050101 और 2529266। तो हमें फोन करना ना भूलिएगा आज दोपहर 12:00 से 12:45 के दरमियान। निवेदन समाप्त हुआ। श्रोताओ आप सुन रहे हैं मधुमालती कार्यक्रम। श्रोताओ मिट्टी से मैट तक का सफर हमें दंगल फिल्म ने दिखाया। अखाड़े से ओलंपिक तक की कुश्ती खेल में महिला अग्रेसर रह सकती है, ये बात फोगाट बेटियों ने दिखाई। खेल के लिए जो मेहनत कड़ी लगन लगती है वह जी जान लगाकर देश का नाम उन्होंने रोशन किया। आइए सुनते हैं दंगल फिल्म का ये गीत जिसे गाया है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

श्रोताओं, संगीत, नृत्य, अभिनय और साहित्य जैसे कला क्षेत्रों में भी महिलाओं का योगदान सदैव महत्वपूर्ण रहा है। उनकी रचनात्मकता ने समाज को संवेदनशीलता और सौंदर्य का नया दृष्टिकोण दिया। भारतीय कला के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान इनकी तुलना नहीं की जा सकती। महिलाओं को कुदरत की भेंट का दर्जा मिला है। जब यही भेंट कला के जरिए हम सभी के लिए कोई तोहफा बनाती है तो उसकी तुलना करना जायज नहीं होता। यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि भारतीय कला के इतिहास में महिलाओं का योगदान प्रमुख रहा है। मध्यकालीन काल से लेकर आधुनिक काल तक महिलाओं ने अपनी कला के जरिए अपनी प्रतिभा का अनोखा करिश्मा दिखाया।

श्रोताओं, ज्ञान और विज्ञान की दुनिया में गणित एक ऐसी भाषा है जो पूरे ब्रह्मांड को समझने की कुंजी मानी जाती है। संख्याओं, सूत्रों और सिद्धांतों के इस विशाल संसार में महिलाओं ने भी अपनी प्रतिभा, मेहनत और बुद्धिमत्ता से अमिट छाप छोड़ी। एक समय था जब महिलाओं को शिक्षा के अवसर भी सीमित रूप से मिलते थे, लेकिन अनेक साहसी और प्रतिभाशाली महिलाओं ने सभी बाधाओं को पार करते हुए गणित के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। उनके योगदान ने न केवल गणित को समृद्ध किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का मार्ग भी प्रशस्त किया। इन महिलाओं में शकुंतला देवी का नाम न लिया जाए तो ये मुमकिन नहीं।

श्रोताओं कृपया ध्यान दें, अगर आप अपनी पसंद के पुराने हिंदी फिल्मी गाने सुनना चाहते हैं तो आप हमें आज यानी बुधवार को फोन कर सकते हैं दोपहर 12 बजे से 12:45 के दरमियान, और कार्यक्रम है नीलावार सारीज हेलो सुनहरे रंग में। हमारे फोन नंबर 6940067-2560101 और 2529266। तो हमें फोन करना न भूलिएगा आज दोपहर 12 बजे से 12:45 के दरमियान। निवेदन समाप्त हुआ। श्रोताओं आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मधुमालती।

श्रोताओं को कृपया ध्यान दें, अगर आप अपनी पसंद के पुराने हिंदी फिल्मी गाने सुनना चाहते हैं तो आप हमें आज यानी बुधवार को फोन कर सकते हैं दोपहर 12 बजे से 12:45 के दरमियान, और कार्यक्रम है नीलावर सारीज हेलो सुनहरे नगमे। हमारे फोन नंबर्स है 6940067, 2560101 और 2529266। तो हमें फोन करना न भूलेगा आज दोपहर 12 बजे से 12:45 के दरमियान। निवेदन समाप्त हुआ। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मधुमालती कार्यक्रम। आज हमने उन महिलाओं के योगदान को याद किया जिन्होंने अपने साहस, समर्पण और कर्मठता से विभिन्न क्षेत्रों में नई मिसालें कायम की। नारी केवल परिवार की शक्ति नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के उन्नति की भी मजबूत आधारशिला है। उसकी उपलब्धियां हमें यह संदेश देती है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने का अधिकार सभी को समान रूप से है। आइए हम महिलाओं के सम्मान, समानता और सशक्तिकरण के लिए सदैव प्रयासरत रहे और उनके योगदान को दिल से सलाम करें।

0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सह अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे गीतबाजी फिल्म से गीता दत्त की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोल और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। आज के कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए याद करते हैं गीता दत्त को उनके गीतों के साथ। तो चलिए सुनते हैं उनके ही द्वारा गाया गया ये और एक और गीत।

0: हम सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देववर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में और भी नगमे हम सजाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
4: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
4: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
5: सखी सहेली।
0: और कार्यक्रम यादों की महफिल में लेते हैं एक छोटा सा विराम।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और हमने आज की यादों की महफिल सजाई है गीता दत्त के द्वारा गाए हुए गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं सुजाता फिल्म का यह गीत जिसे गाया है गीता दत्त ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और सचिन देव बर्मन ने इसे संगीत दिया है।

आइए सुनते हैं गीता दत्त के द्वारा गाया हुआ, जिसमें मोहम्मद रफी और साथियों ने उनका साथ दिया है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, और फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 55।

0: हम सुन रहे थे आर पार फिल्म का ये गीत गीता दत्त की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर का संगीत। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज सजाई है यादों की महफिल गीता दत्त के गानों के साथ। तो आइए सुनते हैं फिल्म CID का यह गीत, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतकार हैं ओपी नैयर और गाया है गीता दत्त ने।

हम सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में, कमर जलालाबादी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अगला गीत।

तुझको ये भी पता।

0: बड़ी रंगीली जिंदगी है, खुशी है दिल लगी है, मजा ये जिंदगी है, तू मुस्कुराएगा।
1: हम सुन रहे थे ये गीत श्रीमती 420 फिल्म से, गीता दत्त की आवाज़ में, जानिसार अख्तर के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं एक और गीत गीता दत्त की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

हम सुन रहे थे ये गीत आज के इस कार्यक्रम यादों की महफिल में गीता दत्त की आवाज में, और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं उन्हीं के गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं अनुभव फिल्म का यह गीत, जिसे गाया है गीता दत्त ने, लिखा है गुलजार ने और कनु रॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे साहेब बीबी और गुलाम फिल्म का यह गीत गीतादत्त की आवाज में शकील बदायूनी के बोल और हेमंत कुमार के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत कागज के फूल फिल्म से गीतादत्त की आवाज में कैफी आजमी के बोल और सचिन देवर्मन का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर बस शुरू होगा कुछ ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर, एक सफर जहां हम अपनी यादों को भी याद करते हैं और बड़े प्यारे से गीतों और जज्बातों के साथ बात करते हैं। आज सुरीला सफर की इबारत कुछ अलग तरीके से हम लिखकर लाए हैं और उस इबारत पर आप सभी ने बहुत सारे संदेश भेजे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और अब हम चलते हैं उस इबारत की ओर जो हमने आपको सौंपी थी। इबारत कुछ ऐसी है कि फिल्में बदलती हैं, किरदार बदलते हैं, मगर कुछ फैशन ऐसे होते हैं जो समय नहीं इतिहास बन जाते हैं। और जब बात फैशन की हो तो हिंदी सिनेमा का जिक्र भला कैसे ना हो। दशकों से हमारी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, वे ट्रेंड भी गढ़ती हैं, सपने भी बुनती हैं और अलमारियों का रंग रूप भी तय करती हैं। कभी अनारकली की अनारकली कुर्तियां दिलों पर राज करती हैं, तो वक्त का हेयर कट युवाओं के आईने का सपना बन जाता है। ब्रह्मचारी की सादगी भरी साड़ी हो या बॉबी का चंचल पोल्का डॉट्स, हर दौर ने अपने हिस्से का एक फैशन इतिहास लिखा है। कुर्बानी के जंपसूट ने आत्मविश्वास को नया रूप दिया, तो चांदनी के शिफॉन की साड़ियों ने हवाओं को भी रुमानी बना दिया। रंगीला का रंग हो या तेरे नाम के राधे का अंदाज, हर गली में उनकी झलक दिखाई देती थी। देवर की भाभी की बहन की बैंगनी साड़ी से लेकर जफी महट के बेफिक्र और सुकून भरे कपड़ों तक, फिल्मों ने हमारे वार्डरोब भी नहीं हमारी सोच को भी सजाया है। और फिर ये जवानी है दीवानी की साड़ियाँ जो आज भी अनगिनत अलमारियों में अपनी जगह बनाए हुए हैं, वहीं डोला रे डोला की भव्य साड़ी, वह तो मानो हर फैशन प्रेमी के सपनों की अलमारी में टंगी हुई एक अधूरी ख्वाहिश है। तो आइए यादों की इस रैंप वॉक में आप भी शामिल हो जाइए। बताइए कौन सा फिल्मी फैशन को अपनाया था आपने, कौन सा अंदाज आज भी आपके दिल के किसी भी कोने में सजा हुआ है। तो ये दो प्रश्नों के उत्तर आप बहुत देर से दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे इस बात की ख्वाहिश है। पर हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरे श्रोता लिखते हैं, आज तो फैशन का जलवा ही है, शुरुआत से लेकर आज तक फैशन हर 20 साल बाद पलट कर आती है, तो हर चीज जो पुरानी फिल्मों में दिखाई देती थी आज वही चलन में है। बड़े प्रिंट वाले कपड़े साड़ियाँ, बालों की भी वही फैशन। पर एक बात है, साड़ी नहीं बदलती, वो विभिन्नता लेकर आती है, पर कुछ साड़ियाँ राज्यानुसार वो की वो ही रहती हैं, जैसे महाराष्ट्र की पैठणी, नवारी, बंगाल की बंगाली, तमिल की कांजीवरम, गुजरात की बांधनी और सभी परंपरागत रूप से बनकर आई हैं। ये सारी बातें यहाँ पर कहती हैं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिन बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ में मौसम के फूल और पाठ बदलते हैं, उसी तरह फैशन के युग बदलते हैं, जमाना बदलता है, हालात बदलते हैं, साथ साथ इंसान के दिमाग और पहनावे में भी बदलाव आता जाता है। जी, हमारे एक श्रोता ने जानकारी दी है कि भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म थी, जो 3 मई 1913 को रिलीज हुई और वर्ष 1931 में बनी आलमारा देश की पहली बोलती फिल्म थी। इस जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। वो कह रहे हैं कि फिल्मी फैशन को अपनाने की बात करें तो वो कहना चाहते हैं, माँ तो माँ होती है, बचपन में हम खार मुंबई में रहते थे, पूज्य माता जी जब भी लिंकिंग रोड के हेयर ड्रेसर के पास ले जाती थी तो कहती थी बेटे के हेयर कट शशि कपूर जी के स्टाइल में कानों तक बड़े।

ही रखो, परंतु विवाह के बाद यानी शादी के बाद उनकी धर्मपत्नी ने डंडा दिखाकर उनका हेयर कट स्टाइल बॉर्डर फिल्म देखकर छोटे फौजी जैसे कटवा दी है और कहती है कि अब ज्यादा स्मार्ट लगने लगे हो। ये फैशन है जो बदलता रहता है। देखिए हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फैशन के कपड़े सब हमारे सिनेमा जगत की देन है। ब्रह्मचारी की मुमताज की साड़ी, देवदास की माधुरी, ऐश्वर्या की ड्रेस, माधुरी के नए स्टाइल, दीदी तेरा देवर दीवाना, अनगिनत ड्रेस श्रृंखला है। और इस सब में वो कहते हैं कि राजेश खन्ना का स्टाइल नहीं भुला सकते। काफी श्रोताओं ने बता दिए तो गाने वो बता नहीं रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। हमारे श्रोताओं में बहुत सारे श्रोताओं ने एक बात जरूर कही है कि आज तो बातें महिलाओं की होंगी, हम पुरुष इसमें क्या करेंगे। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, हम महिलाओं का फैशन, अगर हम महिलाएं फैशन करती भी हैं तो आप पुरुषों के लिए ही तो करती हैं, सच समझ कर एक दूसरे के सामने ही तो जाते हैं। तो ये फैशन जो है जो बदलता रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैशन केवल महिलाओं का बदला है। फैशन इंडस्ट्री में फैशन जो है फिल्मों के साथ बदला पुरुषों के लिए भी है। एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। कल शायद कोई एक तरह का पैंट जो पुरुष पहना करते थे आज महिलाएं पहनकर घूम रही हैं। तो बहुत सारे बदलाव आए हैं फैशन के, हम आज उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में ऐसी कोई बात है तो जरूर हमसे साझा कीजिएगा। और चलिए चलते हैं पहले गीत की तरफ। और पहले गीत में मेरा तो यही प्रश्न है कि ऐसा कौन सा स्टाइल है, फैशन स्टाइल, जो आपने देखा था, मन में था कि ये पहनना है, लेकिन किसी ना किसी कारण से आज तक नहीं पहन पाए। हो सकता है वो पुरुषों का हो सकता है वो महिलाओं का हो। आप अपनी बात रखिए कि कोई एक स्टाइल होगी जो मन ने कहा था पहन लो, या मन ने कहा था ऐसे बाल कटा लो, या मन ने कहा था ये वाली अंगूठी, ये वाली चैन, या कुछ तो होगा जो मन में होगा, उस मन की बात को हमसे कह दीजिए। और सुनिए ये वाला नगमा।

हम सुन रहे थे ये बढ़िया सा गीत जिसे हमने लिया मुगले आजम फिल्म से, और हमारे श्रोता ने सही कहा कि इसमें मधुबाला ने अनारकली सूट पहना हुआ है। लता मंगेशकर की आवाज़ और साथियों की आवाज़ में सुन रहे थे इस गीत को। शकील बदायूं ने लिखा और नौशाद ने संगीत से सजाया। हम जो ये गीत सुन रहे थे, इस गीत में यानी इस फिल्म में मुगले आजम फिल्म की पोशाकें मक्खन लाल एंड कंपनी के द्वारा डिजाइन की गई थी। दिल्ली के कारीगरों ने इसे सिला था और इसके लिए जरदोजी जरी सूरत के विशेषज्ञों ने इसका काम किया था। मखमल, रेशम, ब्रोकेट जैसे महंगे और प्रामाणिक कपड़ों का भी इस्तेमाल किया गया था।

मक्खन लाल एंड कंपनी के द्वारा डिजाइन की गई थी। दिल्ली के कारीगरों ने इसे सिला था और इसके लिए जरदोजी जरी सूरत के विशेषज्ञों ने इसका काम किया था। मखमल रेशम ब्रोकेट जैसे महंगे और प्रामाणिक कपड़ों का भी इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको बता दूं, पहले जो होता था कि कोई कंपनी वाले फिल्मों को डिजाइन करते थे, फिल्मों के कपड़ों को डिजाइन करते थे। अभी ड्रेस डिजाइनर का जो चलन था वो आया नहीं था फिल्मों में। कब आया था थोड़ी देर बाद उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब चलते हैं हमारे श्रोताओं के मजेदार बातों की तरफ। हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक तारा बोले टुन टुन क्या कहे ये तुमसे, तंग पैंट पतली टांगें लगती हैं सिगरेट जैसे। उसके साथ ही लिखते हैं भाभी की उंगली में हीरे का छल्ला, हीरे का छल्ला पहना बहुत दिन पहले बॉटम आज साड़ी पहन, शर्माई बड़ी खूबसूरत सी बात हो लिख रहे हैं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि हालांकि हमारे पुरुष श्रोताओं ने कहा कि इसमें हम क्या कमेंट करें, पर हमारे एक श्रोता ने बड़ी संजीदगी से बड़ा प्यारा कमेंट किया है। वो लिखते हैं कि प्राचीन काल में बिना ब्लाउज और पेटीकोट की साड़ी शरीर पर लपेटी जाती थी। हाँ, ये नौ गजी साड़ी होती थी जिसे पूरे शरीर पर लपेटा जाता था, उसी से एक ब्लाउज नुमा एक तैयार कर लिया जाता था और वही पेटीकोट बन जाता था और वही साड़ी होती थी। एक ही साड़ी होती थी, एक ही कपड़ा होता था। उसके बाद फिर ब्रिटिश काल में ब्लाउज पेटीकोट का प्रचलन चालू हुआ। उसके बाद अब वो कहते हैं कि आजकल महिलाएं प्री ड्रेप्ड साड़ी, कैप स्टाइल, रफेल और जैकेट स्टाइल साड़ी पहनना पसंद करती हैं। इसके अलावा साड़ी को बेल्ट के साथ पहनना भी एक बहुत बड़ा फैशन स्टेटमेंट बन गया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, फैशन बदलता जा रहा है पर कपड़े तो लगभग वही हैं। तो इसके साथ साथ हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में महिलाओं के फैशन का नाम आते ही सबसे पहले उन्हें याद आती है साधना। अच्छा, माथे पर हल्की जुल्फें, फैशन कौन भूल सकता है। और इसके साथ ही वो बहुत सारी बातें इसमें लिखते हैं। इसके साथ ही वो लिखते हैं कि फैशन का क्या कहना, हमारे हर जमाने में फिल्मी सितारों का फैशन देखते हुए अपनाया गया। मेरी मम्मी को नरगिस जैसी साड़ियां पहनने का शौक था और उन्हें, यानी वो लिखती हैं कि मुझे इंदिरा गांधी जी की साड़ी का स्टाइल पसंद है और आज भी उसी स्टाइल में साड़ी पहनती हूँ। क्या बात है, बढ़िया बात है, ऐसी फैशन ही तो हमें बनाता है, जोड़ता है किसी के साथ में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा बदली है वो फैशन है। आज स्कर्ट का कुर्ता तो कल स्कर्ट का, सही बात है, फैशन के पीछे पागल होते रहते हैं। लेकिन वो बहुत अच्छी बात कहती हैं, कहती हैं कि फैशन चाहे जितना बदले मगर मेरा तो मानना है कि फैशन कितना भी बदले आप वही पहने जो आप पर फबे फबे भी। और दूसरी बात ये भी होता है, एक बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं, कैरी करना यानी संभाल पाना। हम जिस वस्त्र को अच्छे से संभाल सकें वो पहने तो कितना अच्छा होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमने जो फैशन अपनाया वह अमिताभ बच्चन से प्रेरित होकर अपनाया, उनके बालों का हेयर स्टाइल आधे कान ढके हुए और इस टाइप की कटिंग और पैंट में जो बेल बॉटम टाइप का था उसके नीचे काफी फैला हुआ रहता था, पैंट की मोहरी ज्यादा बड़ी होती थी। जी, वो फैशन बहुत चला और बहुत लोगों ने उसे अपनाया और हमने आपसे प्रश्न पूछा था बड़ा सरल सा कि आपको ऐसा कौन सा है स्टाइल जो पसंद आया था पहन नहीं पाए। तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अच्छा, एक बहुत अच्छी बात लिखी है, अनारकली अब फैशन में आई है नए कलर में, स्त्री वर्ग पहनती नहीं है, अब आम वर्ग में फैशन में इसे ज्यादा अपनाया है, ज्यादा मोटी स्त्री अपना पेट छुपा सकती है। नहीं, देखिए क्या है, ये जो चीजें जैसे अनारकली है वो बड़ा अगर उसे हमारे कॉटन के कपड़ों में, सूती कपड़ों में बना लिया जाए तो कितना अच्छा होता है ना, पहनने में कितना सुकून मिलता है। इसके साथ हमारे श्रोता बहुत सारी बातें यहाँ पर लिख रहे हैं फैशन के बारे में। और मुमताज जी दुपट्टा बालों में लगाती थी, वो उन्हें बहुत पसंद है, और पर ना बाल तब वैसे थे ना कॉपी करना आया, सो मन की बात मन में रह गई। मुमताज की अदायगी को कौन नहीं अपनाना चाहेगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ, और ये अगला गीत है उसी हेयर स्टाइल को लेकर जो हेयर स्टाइल तब से लेकर आज तक फैशन में है। एक टाइम था जब ये आई थी और आज का वक्त है जब ये है, और इस स्टाइल को केवल इसलिए बनाया था क्योंकि माथा चौड़ा था अभिनेत्री का और माथा छुपाना था। चलिए सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम बता दीजिए।

हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में यह गीत साहिल लुधियानवी के शब्दों से सजा और संगीतकार रवि ने इसे संगीतबद्ध किया। और हमने आपसे पूछा था एक प्रश्न कि ये कौन सी फिल्म का गीत है, और बहुत सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं इस गीत को सुनकर। हमें भी प्रसन्नता होती है जब आपके मन का कुछ हम सौंप पाते हैं। तो हमारे श्रोता ने लिखा कि उन्हें बहुत पसंद है ये गीत और ये है वक्त फिल्म का खूबसूरत सा गीत। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया बातें आप लिखते जा रहे हैं। और हमारे श्रोता ने बताया कि दिल को छू लेने वाला ये गीत है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि साड़ी की फैशन रैपिंग सब चल रही है और बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे एक और श्रोता ने लिखा कि उन्हें पैंट पहनना अच्छा लगता है और स्पोर्ट्स लुक में दिखना अच्छा लगता है। तो बढ़िया बात है, अगर आपको स्वयं को उसमें देखकर अच्छा लगता है तो अवश्य वैसे दिखें। और हमारे श्रोताओं ने कहा कि एक श्रोता ने कहा कि फैशन तो रोज बदलते हैं, इसलिए इसमें ना ही फंसो तो अच्छा है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये बात भी आपकी सही है कि वैसे जिसको जो अच्छा लगे सो वही करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं पहले फिल्मों में देखा है कि हीरोइन कुर्ता साइड से बंद होता था और टाइट भी बहुत होता था और उनका बैक वाला हिस्सा अलग से दिखाई देता था। जी, ये फैशन का ट्रेंड बदलता जा रहा है और यही फैशन वाली बात में हमारे

श्रोता लिखते हैं कि मैं तो बचपन से पचपन तक फैशनेबल हूँ, चाहे कुछ भी हो, पिता की पहली संतान थी तो 70 के जमाने में फ्रॉक वेल बॉटम दिखते थे, बचपन से लेकर 10वीं तक 12वीं तक फ्रॉक्स मिडी फ्रॉक्स पहने थे, साथ में को कलर की सैंडल गॉगल्स फ्रेम वाले अब तक नहीं छूटे, बस सैंडल छोड़ के पैर तोड़ने क्या इसलिए वो सैंडल नहीं पहनती, HMT टाइटन की घड़ी के साथ, अब बालों का बताएं रीना राय वाली स्टाइल अपनाई है तो सामने के कटवा के कानों के पीछे रखवाए थे, बाबा के हाथ से कई बार मार भी खाई लेकिन फैशन नहीं छोड़ी, क्या बात है। और हमारे श्रोता ने लिखा कि फैशन से याद आई 1983 में जितेंद्र और श्रीदेवी की मवाली फिल्म आई थी, फिल्म देखी, उनके गाने की ड्रेस पसंद आई, अगली दीपावली पर वही ड्रेस अपनी दीदी को दिखाकर बनवा ली और इन्होंने उस ड्रेस को पहना, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोता ने कहा कि अनारकली के बारे में वो लिखती हैं कि वार्डरोब भरा रहता है और शिफॉन और सिल्क की साड़ियाँ, बनारसी कॉटन, क्या ये तो बात सही है कि अलग ही बात है। उन्हें घूंघट में फिल्म घूंघट की वीना रॉय की शिफॉन की लहरिया साड़ी पहनती हैं जो इन्हें पसंद आ गई थी हमारी एक श्रोता को, और शादी के बाद उन्होंने वही साड़ी बाजार में दिख गई, झट से खरीद लिया और पहनकर सबको बताई कि घूंघट वाली ही वीना रॉय ने पहनी है, और रंगोली चित्रहार में उस गाने को देखती हैं तो उन्हें अपनी वो साड़ी याद आ जाती है, क्या बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कस्बा नुमा शहर में रहते थे, महिलाएं आपस में मिलकर मैटनी शो फिल्म देखने जाया करती थी, बगल वाली एक मुंह बोली बुआ थी वह उनके साथ गई, साधना और अनीता का पहना हुआ घाघरा सेट अच्छा लगा, अब उसके डिजाइन को कैसे आंखों में बसा जाए, तो फिर से वह जुगाड़ करके लगातार 3 बार उस फिल्म को देखने गई, तब उन्हें डिजाइन एकदम से वही गरारा बनाया था अपने लिए, और जब कॉलेज पहनकर गई तो बड़ी फक्र से कहती थी यह मैंने महबूब की हीरोइन में जो पहनी उसी को देखकर बनाया, बहुत बढ़िया बात है, ये भी अपने आप में प्यार है। और 10 साल पहले बहन की हेयर स्टाइल पापा ने चेंज करवाई थी और साधना कट करवाई थी, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। अब यही श्रोताओं की बातों के बीच में मुझे एक बात याद आती है कि एक बार पढ़ा था कहीं कि भानु अथैया जो थी वो भारत की सबसे पहली और प्रतिष्ठित कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, और 1956 में आई गुरुदत्त की सुपरहिट फिल्म CID से उन्होंने शुरुआत की थी और उन्हें गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला था 1982-83 में, और उसके बाद 1973 में उसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों के लिए बहुत सारे कपड़े बनाए थे और डिज़ाइन किए थे। तो ये भानु अथैया जो थी इन्होंने ही 1968 में आई ब्रह्मचारी फिल्म की इस ड्रेस को बनाया था, यानी इस साड़ी को बनाया था जो गीत में हम देखने वाले हैं। अब आपसे मेरे पास से 2 प्रश्न हैं, पहला प्रश्न तो यह है कि अगला जो गीत है वो किस फिल्म का है, तो बस उस फिल्म का नाम बता दीजिएगा, ज्यादा कठिन नहीं है, आप फटाक से पहचान जाएंगे। और दूसरा प्रश्न ये है कि एक पल के लिए आंख बंद कीजिए, आंख बंद कर ली, अब कौन सी हीरोइन दिखी है आपको, जरा उसका नाम लिख दीजिए, ये बात पुरुष और महिला दोनों श्रोताओं पर लागू होती है, कौन सी हीरोइन आपको दिखी जिस जो आपको बहुत पसंद है, जरा उसका नाम हमें लिख भेजिए। तब तक सुनिए ये गीत और बताइए इस फिल्म का नाम।

हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोलों को, और हमने आपसे पूछा ये प्रश्न कि ये किस फिल्म का गीत है, तो आपने तो बहुत जल्दी पहचान लिया। हमारा गीत शुरू नहीं हुआ उसके पहले हमारे पास संदेश आ गया था कि ये बहुत बढ़िया गीत ब्रह्मचारी फिल्म का यह गीत है, आपने पसंद किया। उसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, हमने कहा था कि आंख बंद कीजिए और बताइए कौन सी हीरोइन दिखाई दे रही है। तो एक श्रोता तो लिखते हैं, मुझे हर हीरोइन की सूरतें एक जैसी सुंदर दिखती हैं। सही बात है, इसमें आपके घर में रहने वाली हीरोइन भी होनी चाहिए। उसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, श्रीदेवी, मीना कुमारी, किसी को श्रीदेवी की ड्रेसेस याद आ गई, किसी को, अच्छा हमारे एक श्रोता लिखते हैं, बंद आँख से मैसेज कैसे लिखें, आँख खोलने के लिए तो कहीं, हाँ हाँ आप आँख खोल सकते हैं और आँख खोलकर संदेश भेज सकती हैं। इसके साथ ही बहुत सारे श्रोताओं को, किसी को साधना पसंद आई है, किसी को हेमा मालिनी, किसी की नज़रों में कृति सेनन भी है, और कोई कहता है शिल्पा शेट्टी की फिटनेस जो है वो उन्हें प्रेरित कर रही है आँख बंद करने पर, किसी को मधुबाला दिखाई देती हैं, तो ब्रह्मचारी में मुमताज़ की साड़ी किसी को याद आ रही है, किसी को हरे रंग के दुपट्टे याद आ रहे हैं, तो किसी को कुछ नया बड़ा खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है जो याद आ रहा है। देखिए ये जो बात है ना, ये बात हमें हमारे सेंसेस से जोड़ती है कि हमें किसका क्या पसंद आ रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बंगाल

0: सीनियर सिटीजन अपने हर वैवाहिक सांस्कृतिक फंक्शन में धोती कुर्ता पहनते हैं। जी बिल्कुल, और उसका उसी का प्रयोग कई सारी फिल्मों में भी किया गया है, इस बात को हम मानते हैं। चुन्नी बाबू को ये याद कर रही हैं जैकी श्रॉफ को उन धोती दुपट्टे के साथ में। हमारे श्रोता कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के कपड़ों की बहुत नकल करी है उन्होंने, टाइट पैंट, टाइट शर्ट, हील वाले शूज और उन्हीं की तरह इतरा के चलना। अच्छा, और किसी ने लिखा है कि हमें तो काजोल याद आई देखकर। जी ये देखने की बात है, सोचने की बात है कि हमें कब कौन कहाँ कैसे याद आता है। पर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कुछ और कि मेरे दोनों लड़कियां और पत्नी जब कभी बाहर घूमने जाती हैं तो सलवार सूट और जीन्स पहना कर ले जाती हैं बेटियां माँ को, क्योंकि घूमने फिरने में आसानी होती है, बस और ट्रेन में चढ़ने उतरने में आसानी होती है, हालांकि वो घर पर तो साड़ी ही पहनती हैं। और हमारे श्रोता बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कि कभी कभी हम ओल्ड फैशन समझकर ड्रेस अलमारी के कोने में रख देते हैं, जो बाद में कभी नए फैशन के रूप में लौटता है तो फिर हम उसे फिर से ड्राई क्लीन कराकर पहन लेते हैं। कितना बढ़िया आइडिया दिया है आपने वस्त्रों के फिर से उपयोग का। हमारे श्रोता लिख रहे हैं आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है, अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले तो भाषा के साथ कपड़े बोली सब बचकुच बदला हुआ दिखाई देता है, फैशन बदलता है, लोगों की संस्कृति आराम और व्यक्तित्व को दर्शाता है। आजकल सस्टेनेबल फैशन यानी पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों का चलन है, लेकिन फैशन सिर्फ महंगे कपड़े नहीं होना चाहिए बल्कि अपनी पसंद और बॉडी टाइप के हिसाब से कोई भी स्टाइल आप चुन सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने पूछा है शर्मिला के जूड़े सबसे अलग थे, पता नहीं सच होते थे या विक पहनती थी, हालांकि उनके बाल तो बड़े दिखाई देते हैं पर कौन जाने उनके जूड़े असली थे या वो विक पहनती थी, ये बात तो हमें भी नहीं पता। पर चलिए, पसंद तो सबकी अपनी अपनी है। तो अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। इसके गीतकार का नाम बता दीजिएगा, इस गीत के गीतकार कौन है, फिल्म बॉबी से लिया गया ये गीत है। और दूसरा प्रश्न, जैसे मैं हमेशा दो प्रश्न आपको देती हूँ, दूसरा प्रश्न ये है कि आप घूमने तो गए होंगे, भारत की कई जगह पर घूमे भी होंगे, कहीं कश्मीर, कहीं मनाली या दक्षिण भारत में, या कहीं तो घूमे होंगे। जहां भी घूमने गए वहां पर सामान्यतः ऐसा होता है कि फोटोग्राफर कुछ कपड़े अपने पास रखते हैं, उन्हें आप ऊपर से पहनते हैं, फिर आपकी एक फोटो खिंच जाती है और उसे यादों के तौर पर आप अपने पास सहेज कर रखते हैं। हुआ होगा ना, ऐसी कौन सी ड्रेस है जो आपने पहनी थी कभी और उसके साथ फोटो खिंचाई थी, भारत के या विदेश के कहीं भी आप गए हो घूमने के लिए और वहां की ड्रेस पहनकर फोटो खिंचाई हो आपने, आपके परिवार में किसी ने, तो जरूर साझा कीजिएगा और बताइए अगले गीत के गीतकार कौन है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुक न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

हम सुन रहे थे बॉबी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर शैलेंद्र सिंह की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ और आप सबने सही पहचाना आनंद बख्शी के बोल। अब एक रोचक जानकारी इस फिल्म को लेकर इसकी ड्रेसेस को लेकर मिली कि इस फिल्म के जो कपड़े हैं लुक्स हैं उनको मुख्य रूप से राज कपूर ने खुद ने डिजाइन और स्टाइल किया था पर इसमें इनका साथ करने वाले बिन रामानी जिन्होंने वार्डरोब स्टाइल सजाई थी सत्यवान और बी आर लक्ष्मण इसके टेलर थे और उन्होंने पूरे इन ड्रेसेस को बनाया था। कितना दिमाग और कितनी सोच लगती है एक फिल्म की एक ड्रेस को बनाने के लिए, ये भी अद्भुत कला है अपने आप में और इस कला को भी हम सब याद रखते हैं। और जब हम याद रख ही रहे हैं तो हमें याद है कि हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था और वो प्रश्न बड़ा प्यारा सा था, बड़ा रोचक सा था कि आपने कभी कोई ऐसी तस्वीर खिंचाई है क्या। तो हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे अच्छे उत्तर दिए कि वो एक बार शिमला गई थी, बहनों के साथ फोटो खिंचाई थी, वह उनके पास में है, कोई असम घूमने गया था तो फोटो खिंचाई थी, उसे संभाल कर रखा है, कश्मीरी लिबास में 300 रुपए के फैशन के साथ रोजी रोटी भी चलती है और उन्होंने वहां जाकर फोटो खिंचाई थी, क्या बात है। मणिपुर में भी फोटो खिंचाई हमारे एक श्रोता ने, उनकी जेठानी किसी की जेठानी कश्मीर गई थी तो वहां के कपड़े पहनकर उन्होंने फोटो खिंचाई और पर्स वहीं भूलकर आ गए जो कि उन्हें बाद में मिला नहीं, इस बात का जिक्र भी वो कर रही है। उसके साथ ही हमारे श्रोता बताते बहुत

जापान गई थी तो वहां की पारंपरिक पोशाक किमोनो में फोटो खिंचाई थी, वही पोशाक जो आशा पारेख ने सायोनारा वाले इस गीत में पहनी थी। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी दी, वो कहते हैं बॉबी के इस गाने में अकार्डियन जो है वो स्वर्गीय सुमित मित्रा ने बजाया था। जी बहुत रोचक जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता ने बताया कि छठी कक्षा में थे तब उन्होंने बॉबी देखी थी, और श्रोता बता रहे हैं कि संदर्भ मुझे याद आता है जब बॉबी पिक्चर लगी थी तो ये लोग ये नहीं पूछ रहे थे कि बॉबी देखी या नहीं, लोग ये पूछ रहे थे कितनी बार बॉबी फिल्म देखी। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने किसी ने कश्मीर में फोटो खिंचाई है और किसी ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो बताया बहुत सारी बातों को। उन्हें एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सबसे अच्छा ड्रेस सैनिकों का लगता है, उन्हें देखते ही अपने आप हाथ सैल्यूट करने लग जाते हैं। क्या बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि डल झील में उन्होंने फोटो खिंचाई थी, और हमारी श्रोता बताती हैं बॉबी फिल्म का याना इसकी ड्रेस मैंने और मेरी दीदी ने एक बार बनवाई थी। नोट बैंक की टॉप पहनते थे, स्काउट पहनते थे, और बड़े फोटो भी उन्होंने इस बात को लेकर खिंचाई है। तो ये सारे हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं, और इन श्रोताओं की उत्तरों के साथ में हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हाँ, फैशन हर वक्त बदलता रहता है, और स्कूल कॉलेज भी मैं भी बहुत फैशनेबल रहे हैं। वो बड़े बाल रखते थे, स्टाइलिश कपड़े पहन के स्कूल जाते थे, कई बार स्कूल में गुरुजी से पिटाई भी होती थी। हाँ, वो दौर बड़ा अच्छा था जब गुरुजी पीटा करते थे, और हमारे गुरुजी तो कहते थे गुरुजी मारे धम्म धम्म विद्या आवे छम छम शायद आती होगी, इस बात से ऐसा हम मानकर चलते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फैशन कभी पुराना हो नहीं सकता, फैशन एक शब्द है। और उसके साथ में उनका उन्होंने ब्लाउज की बड़ी अच्छी वो बताई है कि पहले पफ वाली बाह और जो दादी नानी पहनती थी वो वाले ब्लाउज अब फिर से आ गए हैं। हाँ, कॉलेज में पैरेलल पहनते थे, प्लाजो पहनते थे, अब वापस आ गए हैं। और रेखा की दो चोटी वाले बालों की स्टाइल बहुत लोकप्रिय है। जी इतनी अच्छी बातें आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अब एक बात और हमारे मन में आती है कि जो कपड़े होते हैं वो कभी कभी बड़ी तरीके से दिखा देते हैं। जब रंगमंच में आप होते हैं या फिल्मों में होते हैं तो कपड़े आपकी स्टाइल को बताते हैं कि अगला मूड क्या है। अब हम अगर अगली फिल्म का ये गाना ले लें तो इसमें जो कपड़े हैं उन कपड़ों को मनीष मल्होत्रा ने डिज़ाइन किया है, और उन्होंने पहले जो एक्ट्रेस है यानी हीरोइन जीत यानी करीना कपूर के कपड़ों को बड़ा बेफिक्री वाले कपड़ों में दिखाया है, और थोड़ी देर बाद जब उनका दिल टूट जाता है तो सलवार सूट में दिखाया है। कपड़े भी आपकी संजीदगी को दिखा देते हैं। वैसे ही अभिनेता आदित्य यानी शाहिद कपूर को भी पहले बड़े संजीदा कपड़ों में और बाद में बेफिक्री में दिखा दिया है। तो ये दोनों चीज़ें आपके मूड को भी यानी आपकी फिल्म की कहानी को भी दिखाते हैं, तो कपड़े कुछ इस तरह से दिखाते भी हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला ये गीत, बताइए इसके गायक कलाकार कौन है, और एक बात और, सबसे सुकूनदायक वस्त्र कौन सा है जो पहनकर आप अपनी पूरी जिंदगी रह सकते हैं, सबसे सुकूनदायक वस्त्र आपका कौन सा है? अगर हमसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए तो हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे हमें सलवार सूट में बड़ा आराम मिलता है, सुकून मिलता है। आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जिसमें आराम मिलता है, बताइएगा।

हम सुन रहे थे जब वी मेट फिल्म का यह गीत इरशाद कामिल के बोल प्रीतम के संगीत के साथ, और हमने आपसे पूछा कि इसके गायक कलाकार कौन है। आपने सही पहचाना उस्ताद राशिद खान। और इसके साथ हमारे श्रोताओं से हमने एक और प्रश्न पूछा था कि आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जो बड़ा कंफर्टेबल लगता है, बड़ा सुकूनदायक होता है, तो वो आप पहनते हैं। तो हमारी श्रोता लिखती हैं कि उन्हें हल्के रंग की सूती साड़ी जो है वो उन्हें पसंद है। इसके साथ ही कोई लिखता है कि हाई हील वाले जूते, हीरो जूते पहनते थे, वो उन्हें बहुत पसंद थे, उन्होंने मंगाए भी थे, जिप वाले जूते, हाँ एक चैन वाले जूते हुआ करते थे, अभी भी फैशन में है, लड़कियां पहना करती हैं उस फैशन को आजकल। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सुकून और आरामदायक जो है वो साड़ी ही लगती है।

उनके ऊपर भी अच्छी लगती है। वैसे एक बात कही जाए तो भारतीय महिलाओं के ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, सुंदरता बड़ी सुंदरता के साथ दिखाई देते हैं। उसके साथ कई लोगों ने साड़ी को बोला, किसी ने कुर्ती प्लाजो को बोला। जब भी मैट में करीना कपूर ने पटियाला सूट पहना है जो देखते बनता है जी बिल्कुल। कुछ हमारी एक और श्रोता लिखती है, कुछ कुछ होता मैं भी, काजोल ने शुरू में डंगरी पहनी और बाद में खूबसूरत साड़ियां, मूड के मुताबिक उसको पहना गया था। जी बिल्कुल, यही तो बदलाव दिखाने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, ये बात तो कई लोगों ने लिखी कि सफेद कुर्ता पजामा और बिल्कुल ढीला पहनने में बहुत सुकून होती है, पर गंदा भी तो बहुत होता है ना पर ठीक है, सबकी अपनी पसंद है। लॉन्ग टी शर्ट और पटियाला वाला फैशन इससे ही आया था। हमारे कुछ श्रोताओं का ऐसा कहना है कि उनका कोई गीत सुनने में नहीं आया, तो मैं क्षमा चाहूंगी, सुनते जाइए, ये गीत भी तो अच्छे ही हैं, कभी कभी ऐसा भी होना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें गाउन पहनना अच्छा लगता है लेकिन किसी और के सामने जाना अच्छा नहीं लगता, गाउन उन्हें बड़ा कंफर्टेबल लगता है। जी बिल्कुल, हल्का फुल्का सा वस्त्र होता है। कोई अपनी पत्नी के कपड़ों के बारे में बता रहा है कि उन्हें सलवार सूट पसंद हैं, और कोई अपने बारे में बता रहा है, कोई कह रहा है लुंगी अच्छी लगती है पहनने में, तो किसी ने बताया बनियान और वो पट्टे वाला हाफ पैंट जो होता है वो लोगों को पसंद आता है, किसी को सूती कुर्ती और लेगिंग पसंद है, तो किसी को एक लोअर टी शर्ट में वो किसी भी फैशन में किसी भी कार्यक्रम में भी जा सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें लोग बता रहे हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि उनका विवाह जो है वो चित्तौड़गढ़ में हुआ था, ससुराल भी वहीं है, तो उनकी पत्नी के साथ चित्तौड़गढ़ गए थे और वहाँ बहुत सारी फोटो खिंचाई थी जिसका उन्हें याद है। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे एक समय था जब ग्राहक डिज़ाइन देखने के लिए फिल्म दिखाने के लिए आता था और कहता था ये वाली डिज़ाइन बना दो, यानी हमारे जो कपड़े सिलने वाले थे उनको फिल्में देखनी पड़ती होंगी उस समय पे क्योंकि वो डिज़ाइन बनानी होती थी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमारे श्रोता लिखते हैं। ऋषि कपूर की स्वेटर और देवानंद की मफलर का फैशन लाकर छा गए थे। जी बिल्कुल, और देवानंद के तो कपड़ों पर बैन भी लगा था शायद, ऐसा कुछ किस्सा भी सुनने में आता है, शायद आपको भी पता हो, किसी को लोअर टी शर्ट में आराम मिलता है और किसी को शर्ट में, किसी को सलवार कुर्ता, किसी को कुछ, हर किसी का अपना अलग विधान है कि उसे ये पसंद है। और अब हम चल रहे हैं आज के शाम के, आज के इस कार्यक्रम के कुछ अंतिम गीतों की तरफ, और ये अगला गीत आप सुनिए और बस बता दीजिए ये कौन सी फिल्म से है। और इस फिल्म के बारे में एक बड़ी रोचक सी जानकारी हमें कहीं से मिली थी तो वो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि इस फिल्म के लिए, चांदनी के लिए भी कपड़े जो बनाए थे भानु अथैया ने बनाए थे, और नीता लुल्ला ने भी इसमें बहुत मदद की थी उन कपड़ों को बनाने के लिए, और बड़ा स्टाइल फेमस हो गया था, मतलब वो बड़ी अच्छी साड़ियाँ थी और लोगों ने उस समय बहुत पहनी भी ये साड़ियाँ। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को और बताइएगा ये इस गीत के संगीतकार कौन हैं, नाम पूरा लिखिएगा संगीतकार का।

और इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है, परंतु हम आपके साथ वो साझा करना चाहेंगे जो आपने बताया है. जी, हमने पूछा था कि इसके गीत संगीतकार कौन है. पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये दोनों बातें आपने हमें बताई, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद. और आज के दिन हमने बहुत सारी फैशन डिज़ाइन और इन सब की बात की. हमारे श्रोता ने बताया कि पहले तो लड़कियां पैसे भी देती थी कि जाकर आप यह फिल्म दिखाइए मास्टर जी और फिर वैसा कपड़ा बना दीजिए. तो ये इतनी अच्छी रोचक जानकारियाँ हमें मिली, उसके लिए आप सबका धन्यवाद. सदा मंगल हो. नमस्कार, प्रणाम, सदा खुश रहिए.

आज की त्रिवेणी में पड़ोसियों की चर्चा। वर्तमान समय में अधिकांश लोग अपने कामकाज और नौकरियों के कारण प्रायः एकल परिवारों में रहते हैं। यहाँ पति पत्नी और एक या दो बच्चों का परिवार होता है। सगे संबंधी दूसरे शहरों या गांवों में छूट जाते हैं। ऐसे में पड़ोसी ही सुख दुख के साथी होते हैं। वैसे भी ये सच है कि किसी भी बड़ी मुसीबत में पड़ोसी ही मदद के लिए सबसे पहले काम आते हैं। पड़ोसियों से हमें हमेशा मृदु व्यवहार और सहयोग का भाव बनाकर रखना चाहिए। अगर पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार है तो जीवन की मुसीबतें बहुत आसान हो जाती हैं।

हम में से बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई करने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने अथवा दूसरे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए किराए के मकान लेकर रहते हैं। ऐसे लोगों को पड़ोस में बहुत सजग रहना चाहिए। उन्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे यहाँ केवल अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। उन्हें रास्ते से भटकाने के लिए पड़ोस में बहुत से आकर्षण मौजूद होते हैं। अरे

0: रहता है।
1: ऐसा नहीं है कि पड़ोसी केवल मुसीबत में ही काम आते हैं, वे हमारे किसी पार्टी या शादी समारोह में भी बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। कई बार दोनों की छतों का उपयोग करके हम छोटी मोटी पार्टी के लिए एक अच्छा स्पेस निकाल सकते हैं। अच्छे पड़ोसी अपनी छत का उपयोग और कई रोचक कार्यों के लिए कर सकते हैं, जैसे

0: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर

0: पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3,000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुद्रुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है।

0: पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए लक्ष्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशंस है।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों में बाढ़ का पानी

0: और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक के उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का यह पहला गीत, जो कि है उजाला फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में यह अगला गीत, जिसे लिया है फिल्म नागमणि से। गीता दत्त की आवाज है, प्रदीप के पुल हैं और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे शरारत फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के पोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे धूल का फूल फिल्म से यह गीत आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और एन दत्ता ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं संतान फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल और दत्तराम के संगीत के साथ और इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे समाप्त होता है आज्ञा दीजिए सदा सुखी रहिए नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: सोनाली पाठक। तो आप सभी को सोनाली पाठक का
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। क्या कर रही हो सोनाली?
2: बैठी हुई हूँ आपके सामने।
1: भाई मेरे सामने तो बैठी हो, इन दिनों क्या कर रही हो? मैंने ये जानना चाहा क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है।
2: बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है और बहुत खूबसूरती के साथ आप सामने बैठी हुई हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है, एक सुखद अनुभूति मिल रही है।
1: अरे वाह, यही तो होना चाहिए कि जब दो दिल मिलते हैं, दो इंसान मिलते हैं, दो दिमाग मिलते हैं, तो सुखद अनुभव होना चाहिए। और ये हमारी जिंदगी में होता भी है सोनाली। हमारे श्रोता भी इस बात को कहते हैं, जब हम अपने श्रोताओं के लिए आते हैं, उनसे कार्यक्रम के जरिए मिलते हैं, तो कितना सुखद एहसास होता है हमें।
2: और हम है ना कल्पनाओं के माध्यम से महसूस भी करते हैं ना मंदाकिनी जी, कि हमारे बहुत सारी सखियां बैठी हुई होगी, श्रोतागण बैठे हुए होंगे और वो क्या कर रहे होंगे,
1: हमें सुन रहे होंगे,
2: हमें सुन रहे हैं,
1: कुछ अचार भी डाल रहे हैं।
2: हाँ, हमारी कुछ सखियां जो है अचार भी डाल रही होगी कि चलिए इधर रेडियो भी ऑन है किचन में और इधर अचार बन रहा है, क्योंकि इन दिनों तो घर में अचार और मुरब्बे बनते ही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत जरूरी भी होता है घर के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं या हमारे घर की जो महिलाएं हैं, पुरुष भी जब ऑफिस जाते हैं, तो अचार और परौठा एक ऐसा भोजन है जो लगभग हर लोग लेके जाते ही अपने टिफिन।
2: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब्जी थोड़ी सी फीकी बन गई है, तो उसमें जो अचार है ना वो उसका स्वाद बहुत बढ़ा देता है खाने का।
1: और कई बार ये भी होता है कि जब घर की गृहिणियां सब्जी बनाने में थोड़ी सी आलस बरत लेती है ना, तो दाल और अचार से काम हमारे घर के पुरुष चला लेते हैं, पता
2: या है? फिर कभी सब्जी कम पड़ गई तब भी अचार से काम चला सकते हैं।
1: और या प्याज का सलाद खाना हो ना, उसमें भी अचार डालकर
2: खा सकते हैं,
1: मस्त।
2: और साथ में मुरब्बे, वो मीठे मीठे मुरब्बे तो बहुत, यानी उसमें आम का मुरब्बा बनता है, फिर करौंदे का मुरब्बा बनता है, आंवले का मुरब्बा बनता है, अलग अलग तरह के मुरब्बे बनते हैं जो भी हर घर की शान होती है।
1: शान होते। तो अभी थोड़ी देर बाद जब हम व्यंजनों पर आएंगे ना, तो हमारे श्रोता या हमारी सखियां और

0: सका, तब तक अचार और मुरब्बे पर अपनी जो है रेसिपी लिखकर भेज चुके
1: कि
0: होंगे।
1: आपके घर में किस तरह का मुरब्बा या किस तरह का अचार बनता है। कोई मीठा अचार बनाते हैं, कोई तीखा बनाते हैं, कोई कद्दूकस करके अचार बनाते हैं, तो कौन से तरह का अचार आपके घर में पसंद किया जाता है उस पर हमें लिखकर भेजिए।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे क्या और विषय हैं आज के?
1: शब्द हमारा विचार आपके, इसमें विषय है संयम।
0: संयम
1: जिसे कहना बहुत आसान है और उसे अपनाना बहुत ही मुश्किल
0: है। बहुत मुश्किल है। और वैसे हमारे श्रोताओं ने संयम पर बहुत कुछ लिखकर भेजा भी है, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं सोनाली हमारे सखाओं से, हमारी सखियों से, कि जब आपके जीवन में संयम बरतने की बारी आई तो आपने कहाँ कहाँ संयम खो दिया था
1: या फिर झुंझला उठे।
0: वही बात कि मसलन आपको बाजार जाना है, किसी पार्टी में जाना है और आपकी धर्मपत्नी ने तैयार होने में थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया और आप झुंझला गए,
1: संयम टूट गया।
0: बिल्कुल। या फिर ट्रैफिक में जब आप
1: फंस गए हो और सामने वाली, आपको पता ही नहीं है कि सामने की यानी दो गाड़ियां छोड़ के उसके आगे की गाड़ी बंद पड़ गई है और आप जोर जोर से हॉर्न देते जा रहे हैं कि ये क्यों नहीं चला रहा है, क्यों नहीं चला रहा है, भाई क्या हो रहा है।
0: और दुनिया भर की बातें हमारे मन से निकलती हैं उस वक्त, है ना, जब हम फंस जाते हैं तो हम धैर्य खो देते हैं, संयम खो देते हैं ना। और भी बहुत से ऐसे विषय हैं जहां हम अपना आपा खो देते हैं, तो हमारे श्रोताओं से हम चाहते हैं वो लिखें। संयम क्या है? संयम तो सबको पता है क्या है, लेकिन संयम की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमें ये बताना है कि हमने जिंदगी में कब कब संयम रखा और ये कितना काम आया
1: और कब कब खो दिया संयम,
0: वो तो बताना ही है, क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों
1: भी है ना। जी। और साड़ियों का संसार, इसमें हम इलकल साड़ी कर्नाटक के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे कुछ श्रोताओं ने लिखकर भी भेजी है इस बारे में जानकारी।
0: बहुत अच्छी साड़ी होती है इलकल साड़ी, कर्नाटक,
1: नरम मुलायम बहुत सुंदर।
0: तो सोनाली इस बार हम जब बाजार जाएंगे ना तो ये साड़ी खरीद कर लाएंगे।
1: बिल्कुल खरीदेंगे, इतने सुंदर कलर होते हैं इसकी इलकल साड़ी के।
0: क्या बात है। तो और देखिए, सोशल मीडिया पर वाद विवाद और समय की बर्बादी हम बहुत करते हैं,
1: बहुत ही ज्यादा। यानी हमने सोशल मीडिया ऐप खोले कि उसमें कोई एक विषय पे या कोई एक रील पे इतने लोग लिखते हैं, उसमें घंटों बाद, और फिर लोग वो मैसेज भी पढ़ते हैं किसने क्या लिखा, किसने क्या लिखा, उस पे भी 250-300 हजारों के लाइक्स होते हैं। तो ये समय की बर्बादी ही है।
0: बिल्कुल, मिलता कुछ नहीं है, है ना, लेकिन हम अपने विचार वहां थोप देते हैं। और अनावश्यक कई बार क्या होता है, साधारण सी न्यूज होती है उसको हम बहुत बड़ी बना देते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, या फिर कोई बहुत ही सेंसिटिव घटना हो गई है किसी की जिंदगी में, उस पर हम अपने विचार अनाप शनाप थोप देते हैं।
1: और कभी कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी, आपस में लड़ाई भी हो जाती है लोगों की, तुमने ऐसे क्यों लिखा, तुमने ऐसे क्यों बोला, ये तो ऐसा है वैसा है, और उसमें हमारा बहुत सारा वक्त,
0: समय, और सोचिए दिमागी हालत कैसी हो जाती है उसके बाद।
1: अगर हमें क्रोध आ गया तो हम खुद का बहुत नुकसान कर लेते हैं।
0: बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पे लिखते वक्त पहले तो हमें खुद ही सोच लेना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, फिर ये भी उम्मीद कर लेनी चाहिए कि किस तरह के विचार आने वाले हैं। इन सब में अपना समय बर्बाद करने की बजाय हम कुछ क्रिएटिव लिखे, हाँ कुछ मुद्दों पर आप आवाज उठाएं, लेकिन उस आवाज का असर दूर तक होना चाहिए।
1: और बस मैसेज किया और छोड़ दिया, उसके लिए पूरा दिन बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है
0: कि किसने क्या लिखा और किसने लाइक किया किसने नहीं किया। हम नाराज हो जाते हैं, पर अब हमारे श्रोता नाराज होने वाले हैं अगर हमने गाना नहीं सुनाया।
1: सुनवा देते हैं।

0: तो चलिए दरिया में फेंक दी हमने चाबी, पर हमने अपनी अलमारी की चाबी संभाल के रखना है जिसमें बहुत सारी साड़ियां होती
1: हैं। हाँ, वही तो मैं कहने वाली थी कि दरिया में चाबी फेंक दोगे तो हम अपनी साड़ियां और अपने कपड़े कैसे निकालेंगे भाई।
0: भाई हमारी जो अलमारी होती है उसमें अलग अलग तरह की अलग अलग प्रांत की साड़ियां होती है। तो कर्नाटक की साड़ी इलकल अगर आपने नहीं खरीदी है तो आपको जरूर
1: खरीदनी पड़ेगी, है ना?
0: बहुत सुंदर साड़ियां होती है। और भारत की संस्कृति में साड़ियों का वैसे विशेष स्थान होता है। हर प्रदेश की साड़ी अपने रंग, बुनाई और परंपरा के कारण अपनी अलग पहचान रखती है, और इन्हीं में से एक है इलकल साड़ी, जो कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है। ये साड़ी अपनी सुंदर बनावट, पारंपरिक रंगों और अनोखी बुनाई के लिए जानी जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सोनाली, और इलकल साड़ी का जो संबंध है वो कर्नाटक के बागलकोट जिले के इलकल नगर से है, और इसी स्थान के नाम पर इसका नाम इलकल साड़ी पड़ा। और ये कर्नाटक की ग्रामीण संस्कृति और हथकरघा परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: और इलकल में साड़ी बुनने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। स्थानीय बुनकर परिवारों ने इस कला को वर्षों की मेहनत और अनुभव से जीवित रखा है। पहले ये साड़ियां विशेष रूप से महिलाओं के पारंपरिक पहनावे का हिस्सा थी, लेकिन आज देश विदेश में भी इनकी मांग
1: हो गई है। बिल्कुल सही कहा, और इलकल साड़ी की सबसे बड़ी पहचान है इसकी अनोखी बुनाई तकनीक। इसमें साड़ी के जो मुख्य भाग है, बॉर्डर है और पल्लू को एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है, और पारंपरिक रूप से इसमें टोपे तेनी तकनीक का उपयोग किया जाता है जो इसे अन्य साड़ियों से अलग बनाती है।
0: और पारंपरिक इलकल साड़ियों में सूती और रेशमी धागों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। साड़ी का मुख्य भाग अक्सर सूती धागों से और पल्लू और बॉर्डर रेशमी धागों से बनाया जाता है, और इसकी हल्की और आरामदायक बनावट इसे रोजमर्रा के पहनावे के लिए भी उपयुक्त बनाती है।
1: हाँ बिल्कुल, और इलकल साड़ियों में लाल रंग मिलता है, हरा है, नीला है, बैंगनी है और मरून जैसे पारंपरिक रंग जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, और इसके पल्लू पर सुंदर धारियां और पारंपरिक आकृतियां भी बनाई जाती हैं, बॉर्डर पर विशेष डिजाइन इसकी पहचान बनाते हैं, और कई साड़ियों में मंदिर कला या ज्यामितीय पैटर्न की झलक भी देखने को मिलती है।
0: और एक इलकल साड़ी केवल एक कपड़ा नहीं है मंदाकिनी जी, बल्कि बुनकरों की कला, धैर्य और मेहनत का परिणाम होती है। हथकरघे पर बैठकर बुनकर धागों को जोड़कर एक सुंदर कलाकृति तैयार करते हैं, और इस काम में अनेक बुनकर परिवारों की आजीविका भी जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इलकल साड़ी जो है कर्नाटक की एक पहचान है और उसकी परंपरा का प्रतीक है। विवाह के अवसरों, त्योहारों या विशेष अवसरों इसमें पहनने की परंपरा रही है, और ये साड़ी जो है भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता और सादगी को भी दर्शाती है।
0: और आज इलकल साड़ी पारंपरिक रूप से कई नए डिजाइनों में भी उपलब्ध है। आधुनिक रंगों और नए पैटर्न के कारण युवा पीढ़ी में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, और ये भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है ताकि जो हमारे ग्रामीण तबके के लोग हैं उन्हें उनकी जो है
0: घर चल सके,
1: उनको एक आजीविका का साधन मिल सके। और इलकल साड़ी केवल पहनने का वस्त्र नहीं, जैसा भी आपने कहा था, ये कर्नाटक की मिट्टी, वहाँ की संस्कृति और बुनकरों के कौशल की कहानी मानी जाती है, और इसके हर धागे में सोनाली परंपरा की गर्माहट है और कलाकारों के हाथों की मेहनत छिपी होती है, और ये भारतीय हथकरघा विरासत का एक सुंदर उदाहरण है जिसे सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।
0: ये बिल्कुल हमें जिम्मेदारी हम महिलाओं को उठाना चाहिए कि जब भी कभी कर्नाटक घूमने गए आप, तो आपको इलकल साड़ी जरूर खरीदना चाहिए। और क्या होता है ना

0: रख लीजिए, हम साड़ियाँ तो खरीद ले आते हैं लेकिन उसे पहनते नहीं है। हाँ। तो साड़ियों को पहनना भी उतना ही जरूरी है। कि कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो या फिर कोई पार्टी हो, तो साड़ियाँ जरूर महिलाओं को पहनना चाहिए। अब क्या होता है कि महिलाओं का ऐसा लगता है कि वक्त बहुत
1: ज्यादा लगता है,
0: पर थोड़ी तैयारी हमने थोड़ी 1-2 घंटे पहले तैयारी करके रख ली कि पहले से हमने साड़ी अच्छे से प्रेस कर ली, ब्लाउज प्रेस कर लिया, उसके जो उसमें पहनने वाले जो गहने वहने सब निकाल के रखे, तो हम आराम से पहन के जा
1: सकते। और जिनको साड़ी पहनने का अभ्यास है तो वो बहुत जल्दी पहन लेते हैं, कुछ बहनों को अभ्यास कम होता है तो सीखा भी जा सकता है।
0: और आजकल तो सिलवा भी सकते हैं हम साड़ियाँ, यानी आप उसमें बिल्कुल एक हुक लगाना है और पल्लू भी उसमें सिला हुआ ही होता है, तो बिल्कुल जितना समय हमें सूट पहनने में लगता है उतना ही समय में साड़ियां भी पहन सकते
1: हैं, उसी तरह से पहना भी जाता है। लेकिन वो खुद जब पहना जाता है ना सोनाली, जब खुद प्लीट्स लगाई जाती है और पल्लू को सजाया जाता है ना, उसका मजा कुछ और
0: होता है, उसकी बात कुछ और होती है ना।
1: चलिए तो गीत सुन ले,
0: सुनते हैं गीत।

0: हाँ तो सोनाली, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि दैनिक जीवन में क्या कुछ करना है इस पर ध्यान हमारा थोड़ा कम हो जाता है और हम सोशल मीडिया की बहसों में उलझे रहते हैं।
1: और हमारी जो सखी है, हमने पूछा था ना कि क्या कर रहे हैं मंदाकिनी जी, तो हमारी एक सखी ने कहा कि हम अचार नहीं बना रहे, हम प्रेस करते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं। और एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद हमें पसंद नहीं, हम तो विविध भारती के पेज पर श्रोताओं के अच्छे विचारों को पढ़ते हैं, जिसे जानकारी भी मिलती है और आनंद भी आता है।
0: क्या बात है, क्या बात है, छा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही, सही बात है।
1: तो ऐसी जब
0: बेतुकी बहसों में पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ सार्थक सुने, और विविध भारती एक ऐसा उनके लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब कुछ सार्थक होता है, कोई वाद विवाद नहीं,
1: और मनोरंजन के साथ में ज्ञानवर्धन भी होता है,
0: एक पन दो का है ना। तो आज हम सोशल मीडिया के वाद विवाद पर, समय की बर्बादी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है सोनाली, हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, और इसके माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी है, समाचार और विचारों को तुरंत जान भी लेते हैं, जुड़ भी जाते हैं, जरूरी भी है, और लोगों को अपनी प्रतिभा को और विचार को व्यक्त करने का ये अवसर भी देता है, मौका भी देता है।
1: मंदाकिनी जी, ऐसा होता है कि विचारों में अंतर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है, हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग अलग होता है, अलग अलग विचार समाज की सुंदरता है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ स्वीकारना उतना ही आवश्यक है।
0: हाँ, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए, कोई किस विचारधारा का हो सकता है, कोई किसी विचारधारा का, हम अपनी विचारधारा उस पर थोपे नहीं, और विचारों में अपने का अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों से जो बड़े विवाद होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी पोस्ट पर, किसी फोटो पर, वीडियो पर या समाचार पर एक छोटी सी टिप्पणी से बहस शुरू हो जाती है, और वो बहस इतनी लंबी हो जाती है कि व्यक्तिगत हो जाती है ये चीजें, और एक दूसरे को हम भला बुरा कहने लग जाते हैं, आरोप देने लग जाते हैं।
1: और एक बात है ना मंदाकिनी जी, कि जो शब्द होते हैं ना उसमें भावनाएं नहीं होती। अब जैसे मैंने आपको ऐसे ही कोई बात हंसते हंसते बोल दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पर वही बात जब मैं मैसेज के रूप से मैं आपको लिखूंगी तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है कि इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया।
0: हाँ, हाँ।
1: तो लिखना नहीं, अगर आपको बोलना भी है तो कोई बात आप बोल कर लिखिए, ना कर लिखिए, और जब हम ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा समय की भी बर्बादी होती है। तो हम ये समय जो होता है ना बहुत अनमोल होता है, तो सोशल मीडिया पर बेवजह बहस करते करते लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना समय व्यर्थ हो गया। समय है जो परिवार, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वयं के विकास में जो लगाया जा सकता है वो हम बिल्कुल पूरे टाइम
0: बर्बाद कर देती है। और इससे क्या होता है सोनाली, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती
1: है, बहुत ज्यादा बिगड़ती है।
0: हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति की जरूरत है ना आजकल, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम मानसिक रूप से बीमार से हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जो है हम इतनी नकारात्मक चीजें पढ़ते हैं, चर्चाएं पढ़ते हैं, इतना विवाद उसमें देखते हैं, तो मन में तनाव और बेचैनी तो आएगी ही, और हम भी अपनी बात लिखते हैं, कई बार हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लग जाते हैं। तो सोचिए, हमें लगता है अच्छा मुझे हरा दिया, ये बात तो मैं ये लिख देती हूँ,
1: चलिए ये तो मेरी बात मैं लिख कर ही रहूंगा, हाँ। रहूंगी, है ना।
0: तो ये जब चीजें आती हैं तो आप अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा की जगह क्रोध और निराशा से घिरने लगते हैं,
1: और रिश्तों में दूरी आ जाती है। जहाँ गुस्सा है तो वहाँ पर रिश्तों में दूरी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, और यह ऑनलाइन विचारों का मतभेद व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते बहस जीतने से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं।
0: बिल्कुल सही। और एक बात और है कि हम हर विषय पर अपनी टिप्पणी पर अपनी बात कहना बहुत जरूरी समझते हैं, या अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं तुरंत, ये बहुत गलत आदत है। आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए,
1: थोड़ा सोचे समझे, संयम से काम है।
0: वो संयम यहाँ काम आता है कि हमें क्या कहना है, समझदारी इसी में होती है सोनाली, कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपनी राय दें, या समय की बर्बादी तो नहीं है, हम किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ये सब भी हमें समझना होगा।
1: और मंदाकिनी जी, एक और बात है, इतने ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल होता है कि यानी घृणा मन में उत्पन्न होने लगती है, बहुत कड़वे, बहुत गंदे, बहुत भद्दे, अभद्र।

0: भाषा का बहुत
1: इस्तेमाल
0: होने लगता है, तो वो एक गलत है। वो क्या है, एक को देख के दूसरा भी उसी तरह
1: जी,
0: की भाषा
1: उसे
0: का
1: आप देखिए ना, समाज में कितना गलत संदेश जाता है। हमारे बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो वो भी यही भाषा सीख रहे हैं, उनके मन में भी वो सम्मान और आदर नहीं होता। कई बार स्त्रियों की फोटो होती है, लोग उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे होते हैं, तो जो बच्चा है वो भी यही देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसे भी लगता है कि ये सब आम बात है और ऐसा कर देना चाहिए। बड़ा होकर वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है।
0: सोशल मीडिया के इतने फायदे हैं कि उसका उपयोग हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छे विचार फैलाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है, पर हो रहा है उल्टा।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये विवाद का मंच नहीं है, संवाद का माध्यम है। आप संवाद करिए, समय का मूल्य समझिए, समय जीवन की जैसा कि सबसे कीमती संपत्ति है, इसको आप जाने, और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप सोशल मीडिया में लिखिए, आप लोग लिखते हैं लगातार, लेखक हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं लोग, और आप अपनी बनाइए एक ऐसी जहां पर आप अपनी बात कह रहे हैं, अपने मन की बात, और फिर लोगों के विचार आमंत्रित करें, तो अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके जीवन को, आपकी भावनाओं को, आपके दिमाग को बेहतर बनाती है।
0: यानी सोशल मीडिया स्वयं अच्छा या बुरा नहीं, उसका उपयोग हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हर छोटी बात को विवाद बनाने के बजाय समझदारी और संयम से काम ले, तो यही माध्यम ज्ञान, जुड़ाव और सकारात्मक बदलाव का साधन भी बन सकता है।
1: बिल्कुल, बहुत ज्ञान है। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो नई नई जानकारियां, हमें अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं। हम उस पर अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी जानकारी पढ़ने को मिलती है, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको मिलता है।
0: पुराना जमाना याद कीजिए ना, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें कितनी सारी किताबों को रेफर करना पड़ता था कि इस किताब में इस लेखक ने इतनी अच्छी बात लिखी, उस किताब में,
1: लाइब्रेरी में जाना होता था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़नी पड़ती थी किताब।
0: तो एक क्लिक पर इतनी सारी, यानी ज्ञान का भंडार खुला है,
1: सब कुछ बैठे हुए मिल जाता है। और मुझे तो ये भी याद है सोनाली, कि कई बार हमें ऐसे टॉपिक्स पर संवाद लिखने होते थे स्कूल कॉलेज में, कि हमें अपने पास या अपने माता पिता के साथ साथ पड़ोसी लोगों के पास भी जाकर कई बार विचार जानने पड़ते थे कि अंकल आप इस विषय के हैं, हमें क्या इस पर कुछ लिखा पाएंगे, है ना। तो ये सब बातें भी हमारे जीवन में हुआ करती थी जब सोशल मीडिया नहीं था। आज तो सब कुछ आपके पास, उसका सदुपयोग करना चाहिए,
0: उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए कि भाई जो अच्छा है वो अच्छा, यानी जो अथाह महासागर है इसमें के हीरे मोती हमें चुनना है, ना कि उसकी जो गंदी चीजें या गलत बातें उसे हमें अनदेखा करना है।
1: इसका मतलब ये नहीं हुआ सोनाली कि हम वाद विवाद से बचें, लेकिन अच्छी बातों पर वाद विवाद हो, सार्थक, उसका अंत सार्थक होना चाहिए,
0: और उसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी
1: नहीं करनी चाहिए, है ना। इसलिए इससे जुड़े लेकिन सार्थक कामों के लिए। और अब हम एक छोटा सा
0: ब्रेक लेते हैं।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली और मंदाकिनी जी गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, उसके बाद में फिर हम श्रोताओं के कमेंट्स भी लेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: सोना, मेरे सामने भी सोना ही बैठी है सोनाली के रूप में।
1: चलिए हमारे एक साथी लिखते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग बेहुदा चीजों के लिए ज्यादा हो रहा है। मसलन हास्य व्यंग्य के फूहड़ वीडियो बनाना, फेक न्यूज को वायरल करना, बेसिर पैर की ब्लॉगिंग करना वगैरह। आज के समय की सोशल मीडिया ऐसी बीमारी बन गया है जिससे युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा ग्रस्त है। सिर्फ वाद विवाद ही नहीं, सोशल मीडिया के यूज ने हमारे बहुमूल्य समय को भी नष्ट कर दिया है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद करना समय की पूरी बर्बादी है, क्योंकि ये एल्गोरिदम पर आधारित होते हैं जहां लोग केवल भावनाओं को भड़काने और मानसिक तनाव का काम करते हैं। इससे उत्पादक चर्चा के बजाय केवल नकारात्मकता और अलगाव ही पैदा होता है। वाद विवाद के नुकसान, ऊर्जा और समय की हानि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली बहसें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती जिससे आपका कीमती समय और मानसिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। और इसके अलावा मानसिक तनाव, क्रोध अलग होता है। इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से लिखा है और इसके साथ ही जो है इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया कितना हानिकारक है। हमारे विशेषज्ञ इस पर अपनी राय देते हैं। गलत सूचनाओं का प्रसार होता है। ऑनलाइन बहसों में अक्सर बिना पुष्टि किए तथ्य साझा किए जाते हैं जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और समाज में सोशल मीडिया के प्रभाव के लाभ और हानियां भी बहुत हैं। आप उसका उपयोग करें, सीमित करें, और सबसे अधिक किस एप्स पर आप समय बिताते हैं ये भी आपको जानना होगा। और इस पर वो बहुत सारी बातें लिखते हैं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, आए दिन सोशल मीडिया झगड़े का अखाड़ा बन चुका है। किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा होता है। साथी एक लिखते हैं, सोशल मीडिया पर वाद विवाद करके खुद के दिमाग खराब करने बराबर होता है, क्योंकि इस मंच पर विभिन्न देश या प्रदेश से अलग अलग दिमाग वाले लोग जुड़े मिलेंगे जिससे हम कभी जानते ही नहीं, तो उनसे ऐसे बेकार में वाद विवाद हमें क्यों उलझना चाहिए। आप उनकी पोस्ट ध्यान से पढ़ लें, अगर वो व्यक्ति और उसके प्रश्न जवाब देने लायक है तो उनसे जुड़े, वरना दूर ही रहे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, नौबत भी आ सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद में उलझना अधिकतर समय की बर्बादी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सार्थक चर्चा के बजाय गुस्से और प्रतिक्रियाओं से उलझने उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ बहस करने से मानसिक तनाव बढ़ता है और आप का समय जो है व्यर्थ होता है। मानसिक तनाव और ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑनलाइन बहस में अक्सर लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। कटु शब्दों और आलोचनाओं को पढ़ने से मानसिक

0: शांति हमारी भंग होती है, नकारात्मकता हावी हो जाती है और सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के जवाब में तर्क वितर्क करने में घंटों निकल जाते हैं। इस समय का उपयोग किसी रचनात्मक कार्य में, पढ़ाई में, कौशल सुधार में किया जा सकता है। बहुत बार लोग जानबूझकर कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जिसे लोग और उत्तेजना में आकर लिखते हैं और धीरे धीरे उस जगह से फिर हट जाते हैं।
1: वही एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर में संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। लोग घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के वीडियो देखते, पोस्ट स्क्रॉल करते और अनावश्यक चर्चाओं में लगे रहते हैं। इससे पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय कम बचता है। कई बार सोशल मीडिया की लत व्यक्ति की एकाग्रता और उत्पादकता को भी प्रभावित करती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और सार्थक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए ताकि समय का सदुपयोग हो सके, जीवन में संतुलन बना रहे।
0: बिल्कुल, एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया एक मंच है, यहाँ सोच समझ कर ही अपने विचार रखें। अंधाधुंध कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। लोग बदले की भावना रखते हैं और परिणाम स्वरूप कई बुरे काम भी हो जाते हैं।
1: वही एक साथ ही लिखते हैं कि इन मंचों पर लोग विचार खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन इन मंचों पर होने वाले वाद विवाद अक्सर ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहां सार्थक चर्चा की बजाय समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए घंटों तक तर्क वितर्क करते रहते हैं और अंत में चर्चा किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के बजाय आरोप प्रत्यारोप और कटुता में बदल जाती है, और ऐसे वाद विवाद हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली इन्होंने, और एक बात हम भी कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं सोनाली जो व्यक्तिगत द्वेष को भी उस पर निकाल लेते हैं। मसलन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें कुछ कहना है तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग गए हैं आजकल, और उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां, अभद्र बातें करने लग गए हैं। तो इस तरह से कितना बुरा लगता है, आप सोचिए कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं और अपना मन का विकार इस रूप में निकालते हैं, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है।
1: और क्या होता है ना कि ये जो समय इतना मूल्यवान है कि जिस उम्र में हमें अपना करियर बनाना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छे संस्कार हमें अपने अंदर समाहित करना है, उस वक्त हम इन सब बिना काम की चीजों में उलझे हुए हैं, फिर ये समय तो फिर नहीं आएगा ना।
0: बिल्कुल, कभी समय लौट कर नहीं आता, बल्कि आप ही बाद में जो है एक तरह से दुख करते हैं कि हम धोखा खा गए, समय निकल गया और अब पछताई होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर ये बात आती है जो हमने आज का विषय रखा है ना, संयम, वो यहाँ काम आता है ना, कि जीवन में संयम का कितना ज्यादा स्थान है और किस तरह से हमें हर विचार को एकदम तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए वो संयम रखना चाहिए। तो हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि भाव, विचार, वाणी और व्यवहार ये संयम के चार स्तंभ हैं। संयम का सही अर्थ है आत्मनियंत्रण, धैर्य और संतुलन। ये किसी भी परिस्थिति में विशेषकर उकसावे, गुस्से या लालच के क्षणों में अपनी भावनाओं, इंद्रियों और इच्छाओं को काबू में रखने की एक मानसिक क्षमता है।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि मन, वचन, इंद्रियों और वाणियों पर आत्मनियंत्रण ही संयम है। भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है, और जिसने ऐसा नहीं किया उसका मन शत्रु है। तो भैया, अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।
0: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संयम मतलब मन, वाणी और कर्म पर स्वयं का नियंत्रण। मन जब कुछ गलत चाहे, जुबान कुछ गलत बोलना चाहे या शरीर कुछ अनर्थ करने की कोशिश करे, तब खुद को रोक लेना ही संयम है। संयम हार नहीं, ठहराव है। बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, गुस्से में बोला गया एक भी गलत शब्द जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर देता है, और संयम से बोली गई बात रिश्तों की मिठास को कायम रखती है। जिसने संयम साध लिया मतलब उसने खुद को जीत लिया।
1: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं, संयम वो खामोशी है जिसमें जल्दबाजी नहीं होती लेकिन समझदारी की आवाज साफ सुनाई देती है। हर ताकत दिखाई नहीं देती, कुछ ताकतें संयम बनकर भीतर रहती है, सही समय पर अपना प्रभाव दिखाती है। संयम का फल सिर्फ सफलता नहीं, मन की शांति भी होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों, भावनाओं और निर्णयों को संतुलन रखता है, उसके व्यक्तित्व में अलग ही गरिमा दिखाई देती है। संयम जीवन की पतंग की वो डोर है जो उसे ऊंचाइयों तक भी ले जाती है और बिखरने से भी बचाती है। नदी की गहराई और इंसान का संयम दोनों शोर नहीं करते, लेकिन उनकी शक्ति बहुत दूर तक महसूस होती
0: है। क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संयम वो शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है। आज की तेज रफ्तार जीवन में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, ऐसे समय में संयम हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य धैर्य, मेहनत और प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। एक बीज भी जब वृक्ष बनने में समय लेता है, उसी प्रकार जीवन में उपलब्धियां भी समय और निरंतर प्रयास मांगती हैं। बिल्कुल, हम कई बार अपना आपा खो देते हैं, मेहनत करते हैं और हमें फल नहीं मिलता ना, तो हम अपना संयम खो देते हैं।
1: एक साथी ने लिखा है कि कई बाधाएं, कई कठिनाइयां, कई कांटे मुझे मिले जीवन के पथ पर, परंतु मैंने संयम रखा, हिम्मत न हारी और माता रानी पर अटूट विश्वास रखा, और आज इस मुकाम पर पहुंच गए हूं कि शादी के बाद मेरे संयम को कायम

0: में मेरी धर्म पत्नी ने बहुत सहयोग दिया। मेरा सभी सखियों सखाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने इष्ट पर विश्वास रखें और संयम रखते हुए कठिनाइयों का सामना करें, सफलता जरूर मिलेगी।
1: बिल्कुल सही कहा, और संयम का तो बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए जीवन में। आपने देखा होगा सोनाली, अभी कई बार हम पढ़ते हैं, जिसका जिक्र हम कई बार करते हैं कि एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम में कोई दिक्कत हो गई, हम पास नहीं हुए, उतने नंबर नहीं मिले, तो बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या की ओर चले जा रहे हैं। तो ये वही है कि वो संयम जो आपा खो रहे हैं, धैर्य खो दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें संयम से काम लेना चाहिए। आज
0: इस
1: नहीं
0: साल
1: तो
0: नहीं तो अगले साल आपको परीक्षा में सफलता मिल ही जाएगी,
1: जिंदगी
0: और इतना सुंदर जीवन है मिला
1: उसको
0: है,
1: हम खत्म कर दें
0: जी। तो बच्चों को ये हमें, और क्या होता है ना, इसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि बच्चों ने किसी चीज की जिद की तो हम तुरंत उन्हें ले देते, उन्हें संयम अंदर से सीखने की चीज है कि वे बोला कि आज ही चाहिए ये डिश, आज ही बनना चाहिए, तो तुरंत मम्मियों का प्यार उमड़ पड़ता है कि नहीं आज मांगा है तो आज ही दे देना है, आज उन्होंने कोई खिलौना मांगा है तो आज ही लाकर देना, आज उन्होंने कोई कपड़े की जिद की है तो वही हम लाकर देते हैं। तो हमें भी उन्हें थोड़ा सा संयम से काम लेने के लिए कहेंगे, ठीक है आज टाइम नहीं है तो हम कल जरूर लाकर देंगे या दो चार दिन बाद लाकर देंगे। तो बचपन से ही उन्हें इस
1: ये
0: तरह
1: संयम सिखाया जाए। दूसरा वही कि परीक्षा में अंक लाना महत्वपूर्ण है लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं है, उनको संयम में रहना सिखाएं। कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपके नंबर कम आ गए, आप उतने नंबर नहीं ले पाए, अगली बार मेहनत करिए ना कि आप अपने जीवन को ही
0: समाप्त
1: कर ले, है ना। तो ये संयम हर जगह जरूरी है और अब हमें संयम हमें भी रखना चाहिए बोलने का।
0: गाना
1: सुनाना चाहिए
0: सुना।

0: मंदाकिनी जी, हमारे
1: जी
0: बहुत सारे साथियों ने, हमारे सखियों ने जो ना अचार और मुरब्बे की बहुत सारी रेसिपीज लिखकर भेजी है। तो आम का मुरब्बा, कच्चे आम इन्होंने लिखा है, कैरी 1 किलो कतलों में कटे हुए, गुड़ 800 ग्राम से 1 किलो बारीक कुटा हुआ, सौंफ 1 छोटा चम्मच, हल्की दरदरी और कलौंजी 1/2 छोटा चम्मच, इलायची 1 पाउडर 1 छोटा चम्मच, उसके अंदर भुना जीरा 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। बनाने की विधि है कि आम के कतलों को उबाल ले, अब एक कढ़ाई में बारीक कुटा हुआ गुड़ और 1/2 कप पानी डाले और पकने दे। गुड़ की चाशनी बनाने पर इसमें उबले हुए आम के कतले डाल दे, इसे मध्यम आंच पर पकने दे। आम के टुकड़े गुड़ की चाशनी को सोख कर एकदम रसीले और पारदर्शी हो जाएंगे। इसी समय इसमें सौंफ, कलौंजी, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर भी मिला दे। जब चाशनी शहद की तरह गाढ़ी और एक तार की हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिला ले। आम का गुड़ वाला मुरब्बा तैयार है। ठंडा होने पर कांच की बर्नी में रखे, इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ
1: खा सकते हैं। इसका मतलब हमारी सभी बहनें प्रेस करने में नहीं लगी है ना
0: कुछ मुरब्बे और अचार
1: बना रही है। मुझे तो डर था कि आज हमें अचार और मुरब्बा खाने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि एक सखी ने लिख दिया था कि वो तो प्रेस कर रही है,
0: और एक सखी कह रही है कि हम बैठ के सुन रहे हैं,
1: तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे ये अचार और मुरब्बे। तो इसका मतलब हमारी सखियां जो है हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और लगातार जो है मुरब्बा और अचार बनाने की तैयारी भी कर रही है ना। तो मैं पहले एक संदेश सुना दूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं।
0: जी,
2: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: तो सोनाली, हमारे सभी सखी और सखा जान गए होंगे कि आज के मेहमान कार्यक्रम में 4 बजे ये बातचीत वो सुन सकते हैं।
0: हम भी सुनेंगे उनके साथ में।
1: बिल्कुल, हम तो सुनेंगे ही और साथ में कैरी का अचार या मुरब्बा भी खाते जाएंगे। ठीक है, तो भाई एक सखी लिखती है कि गुड़ और कैरी का गुजराती स्टाइल का अचार है। इसमें कच्ची कैरी है यानी कच्चा आम, 1 किलो गुड़, 1 किलो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ होना चाहिए गुड़, चीनी 1 कप गुड़ के साथ मिलाने से अचार का टेक्सचर अच्छा होता है। अचार का मसाला 200 से 250 ग्राम, राई की दाल, मेथी की दाल, सौंफ, दरदरी, कुटी धनिया का मिश्रण, कश्मीरी लाल मिर्च, 2-3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 3-4 छोटे चम्मच नमक स्वादानुसार, चम्मच आपको हींग लेनी है, तेल लेना है मूंगफली का या राई का, 1 कप गर्म करके ठंडा किया हुआ लौंग और काली मिर्च भी आपको लेनी है साथ में 10-12। ठीक है, आम को तैयार करना है। कच्चे आम को धोकर अच्छी तरह सुखा लेना है। इसके बाद इसे छीलकर मध्यम आकार के टुकड़ों में काट ले, क्यूब्स जैसे बना ले। आम के टुकड़ों में 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लें और इसे ढककर 5-6 घंटे या रात भर के लिए आप छोड़ दें। अगले दिन क्या होगा कि आम के टुकड़ों को छानकर हमें अलग कर लेना है और जो पानी उन्होंने छोड़ा है वो हटा देना है। आम के टुकड़ों को सूती साफ कपड़े पर फैलाकर 3-4 घंटे के लिए पंखे की हवा देनी है ताकि उनके अंदर जो नमी होती है ना वो खत्म हो जाए। फिर मसाला तैयार कर लें। एक बर्तन में अचार का मसाला डालें, हल्दी, हींग भी डाल लें, इसके ऊपर हल्का गरम किया हुआ तेल डाल दें और ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें। मसाले को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब इसमें भुना हुआ नमक डालें, कश्मीरी लाल मिर्च डालें, लौंग डालें, काली मिर्च डालें, इन सबको मिलाना है। फिर अचार को कैसे मिलाना है, एक बड़े और सूखे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में जो सूखे हुए आम के टुकड़े हैं और तैयार मसाला है उनको डाल

0: कर अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें गुड़ और चीनी डाल दें। सभी सामग्रियों को साफ हाथों से या सूखी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बर्तन को सूती कपड़े से बांधकर 2-3 दिन तक धूप या छाया में रखें और दिन में 3-4 बार अचार को चम्मच से ऊपर नीचे या हिला लें। 3-4 दिनों में गुड़ और चीनी पिघल कर चाशनी बन जाएगी और आम के टुकड़ों के साथ मिलकर गाढ़ा रसा तैयार हो जाएगा और आप एक गुजराती जो है ये गुड़ कैरी का अचार खा सकते हैं।
1: मेरे तो मुंह में पानी आ गया। थेपले के साथ में कितना अच्छा लगेगा ना।
0: क्या बात है, तुम्हें तो थेपले की भी याद लग रही है।
1: अब मुरब्बा बनाने की सरल विधि है तो इन्होंने कहा है कि 1 किलो फल जैसे आंवला है या फिर कोई भी फल ले सकते हैं और 1.25 किलो चीनी है, 4 से 5 कप पानी है, 4-5 इलायची, फलों को अच्छी तरह से धो ले और फलों को कांटे से गोंद ले ताकि चाशनी अंदर जा सके, हल्का सा उबाल ले उन फलों को और फिर बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर एक तार की गाढ़ी चाशनी तैयार करें। चाशनी में फल डालकर धीमे आंच पर पकाएं। जब फल पारदर्शी दिखने लगे और चाशनी गाढ़ी हो जाए तब इलायची पाउडर डालें। ठंडा होने पर साफ सूखे कांच के बर्तन में भरें। मुरब्बा जितना पुराना होगा उतना स्वाद और उतना ही अच्छा होगा।
0: हाँ, वही एक सखी ने लिखा है कि हम जो सिंपल सा अचार बनाते हैं वो बता देते हैं। बिल्कुल, सिंपल सा अचार भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आम का अचार डालने का सही समय है, वो कह रही है। हम नाप तोल कर नहीं बनाते, बस सबसे पहले कैरी को धोकर सुखा लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक हल्दी डालकर उसको रख देते हैं। दूसरे दिन उसका पानी हटाकर थोड़ा सुखा लेते हैं। बस फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लेते हैं, जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें अचार मसाला डालकर मिला लें और उसमें इन कैरियों को डालकर मिला लें और साफ सूखी कांच की भरनी में डाल दें। कुछ दिनों तक उसे रोज बार बार हिलाएं, तेल ऊपर तक होना चाहिए ताकि अचार जो है खराब नहीं होगा। अगर तेल ज्यादा नहीं डालना हो तो मसाले थोड़ा ज्यादा डाल दें और कैरी को अच्छे से सुखा कर उसमें डालना है और लगभग हिलाते रहना है जब तक कैरी पक नहीं जाती है।
1: और अब क्या करना है?
0: अब तो हमें बहुत अचार खिला दिया है श्रोताओं को हमने।
1: अचार और मुरब्बा खा लिए तो मीठा मीठा गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुन लेते हैं।

0: हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये एकदम गलत बात है, ये गीत आप ऐसे वक्त सुनाते हो जब जाने का समय हो जाता है, अभी न जाओ छोड़कर। एक सखी ने लिखा, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, काम करते करते अब संयम खो दिया और फोन लेकर बैठ गई।
1: लेकिन आपने सही कहा, हमें तो जाना होगा, इसलिए हम कहेंगे कि अब रुकेंगे नहीं नहीं
0: नहीं। तो इजाजत लेते हैं आप सभी को, सोनाली पाठक
1: और मंदाकिनी जोशी का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान में मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया है जो कला में माहिर है, जो रंग भरते हैं, जो अपनी पेंटिंग में रंग भरते हैं, जिंदगी में रंग भरते हैं। अखिलेश जी की पेंटिंग्स आधुनिक अमूर्त कला और लोक संवेदनाओं का अनूठा संगम है। उनकी कृतियों में रंग केवल सजावट नहीं होते बल्कि वे भावनाओं की भाषा बन जाते हैं। वे कैनवास पर ऐसी आकृतियां और रेखाएं रचते हैं जो पहली नजर में थोड़ी रहस्यमय लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे दर्शक को अपने भीतर के अनुभवों और स्मृतियों से जोड़ देती हैं। बहुत सारी बातें अखिलेश जी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे इस कार्यक्रम में आज के मेहमान में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और अपने देश के जाने माने पेंटर अखिलेश जी का विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है
2: जी। नमस्कार,
1: कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
2: विविध भारती एक ऐसी चीज है जो बचपन से आपकी स्मृति में है और हम लोग बहुत जब छोटे थे जब से विविध भारती

0: सुनते आ रहे हैं, और खास तौर पे हमारे पिता वो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम आता था,
1: संगीत सरिता,
0: संगीत सरिता
1: अभी भी आता है।
0: उसमें हाँ, उसको हम लोग बहुत सुना करते थे। और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो एक ज्वाइंट फैमिली होने से 10 बच्चे थे, तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध बहुत शुरू से अनजाने ही बना।
1: जी जी। और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे, मेरे ख्याल से पहले स्वर्ण पदक विजेता, तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
0: ऐसा कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे, तो उस दौरान मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं।
1: अच्छा।
0: तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करता था। और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया और उसके साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया। और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में, फाइन आर्ट्स कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइन आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ एडमिशन लिया और विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे रामनारायण दुबे, इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि चित्रकला क्या है। हमारे पिता जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी और वो उसके बारे में बताया करते थे और हमें अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहाँ ले जाया करते थे और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। मगर जो कंटेम्पररी आर्ट का जो समझ पैदा हुई मेरी कॉलेज में आने के बाद भी।
1: जी, वहीं से पेंटिंग से आपका जुड़ा हुआ।
0: जी हाँ।
1: तो आपके बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि 20 बरस की उम्र में ही आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लग गई थी और बहुत बड़ी पेंटिंग आपने बनाई थी, वो क्या बात है हमारे श्रोताओं को?
0: जी जी, जब मैं 20 साल का था तब मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था और उस वक्त कोई स्टूडेंट वन मैन शो करे ऐसा संभव नहीं होता था, मतलब उसके लिए रास्ता नहीं था कि आप। किंतु मेरे पिता चूंकि खुद चित्रकार थे, उनका मेरे को बहुत सपोर्ट था और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ तुम करना चाहते हो तो जरूर करो। और फिर मैंने एक ड्राइंग का शो किया जो कि 110 फीट लंबा अकेला एक ड्राइंग था जिसको देख करके जाहिर है इंदौर के उस वक्त के जितने हमारे कलाकार दोस्त थे और हमारे वरिष्ठ कलाकार थे उन सभी लोगों को एक अलग रोमांच की बात थी कि गैलरी में आप घुसें और ड्राइंग शुरू हो और गैलरी से जब आप बाहर निकले तो ड्राइंग खत्म हो।
1: क्या बात है।
0: तो वो एक शुरुआत थी और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है आर्ट फील्ड में, यही करना है या यही रहना है, तो फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एक इमेज बने या बनना शुरू हो।
1: जी, तो ये जो इमेज बनाने वाली बात है, फिर आपने अपनी इमेज बनाने के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर झुका हुआ आपका, तो ये किसी ने आपको सलाह दी या आपने खुद चुना, क्या था आपके मन में
0: उस वक्त? हमारे कॉलेज में एक विषय होता था जो कंपलसरी सभी को करना होता था, वो था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर। तो चूंकि मैं बचपन से ही मिनिएचर पेंटिंग के किताबें और हमारे पिता के कारण उनसे मेरा एक बड़ा गहरा संबंध था, कांगड़ा वैली के या भसौली या बूंदी या इन सारी कलम से बहुत ही परिचित था मैं, तो मैंने हमारे टीचर से कहा कि मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ बजाय वेस्टर्न मास्टर के, तो क्या मुझे ये परमिशन होगी और मैं चाहूंगा कि मुझे नंबर भी उसी पे मिले।
1: जी जी।
0: और अगर आप कहें तो मैं 2 वेस्टर्न मास्टर की कॉपी भी बना के दे दूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि मेरे को जांचा परखा इसी से जाए जो मिनिएचर। तो फिर उन्होंने सिलेबस में चेंज किया और मुझको अलाउ किया कि हाँ आप मिनिएचर बनाएं। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे मिनिएचर उनका गहन अध्ययन किया कि कौन सा बनाना चाहिए। तो उसमें जो मैंने चुना था उसमें तो 200-300 इमेजेस थी, आकृतियां थी, किंतु उसी वक्त एक पेंटिंग मेरे मिनिएचर ध्यान में आया कि इसमें एक अभिसारिका जो है जंगल से गुजर रही है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है, तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिसारिका वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर और सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्भीक, इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते हुए वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता

0: व्यवस्था कैसे देख रही है। तो वो उसके हाथ में न कोई प्रकाश का स्रोत है, न कोई लालटेन है, न कोई दिया है, और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर, बादलों में बिजली कड़क रही है, तो बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, दो लहराते हुए सांप बने हुए थे सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी। तो वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग को
1: मंथन करने
0: हिला देने वाला था, और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भई हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बरतना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फिफ्थ ईयर से अमूर्तन में काम करना शुरू किया, जब फाइनल ईयर होता था हमारा, और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिन, और वो पनिहारिन जो है वो उसमें पांच फिगर बनानी होती थी, और वो कुआं और ये सब जो पानी भर रही है इस तरह का कुछ मैंने उस वक्त फिर बनाया, जो चित्र था एब्स्ट्रैक्ट बनाया कम्प्लीटली। और मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे फेल करेंगे और क्या होगा, किंतु मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर ग्वालियर जबलपुर सबकी एग्जाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्जाम ग्वालियर में हुई थी, तो मैं अकेला फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, बाकी सारे लोग सेकंड डिवीजन में थे।
1: क्या बात है, बढ़िया।
0: तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मुझे नंबर मिले।
1: जी जी।
0: और हमारे जो भी देखने वाले थे, जांचने वाले थे, उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
1: अखिलेश जी, आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र उकेरते हैं कि जंगल है और वहां पर जंगल में वन प्राणी है और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह की चुनौती होती है? ये सारे दृश्य आप बता रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है? तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आप करते
0: हैं? मैं तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूं कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह है उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको पूरी तरह से अपनी जो भी समझ है उसको छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आंख मुझे मिली है वही आंख एक दर्शक के पास भी है, और जितना मैं देखता हूं उतना वो भी देखता है, तो मैं उनके देखने पे संदेह नहीं करता हूं, और मैं चाहता हूं कि उनका देखना जागृत हो। और उसमें जो चुनौतियां होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियां दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में, फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में, और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग जो है आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीजें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं, जो चित्रात्मक चुनौतियां हैं कायदे से देखा जाए तो। और ये जो सामाजिक चुनौतियां हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना चाहिए देखने वाले को, या उसको। मैं तो देखता हूं कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं, जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीर्घा में वो प्रवेश करते हैं, और तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं। तो ये जो उनका एक समर्पण भाव है जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य ये कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
1: जी जी। चित्रकला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खास तौर से विविध भारती के लिए कहा है, आपने भी इसका जिक्र किया अभी इस वक्त। कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाए?
0: मैं सुनाना चाहूंगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
1: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या आपकी?
0: इस गाने से जुड़ी हुई नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज है उसमें जो कशिश है वो एक इस गाने को खास बनाती है, और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती
1: जी,
0: है।
1: जी, और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे।
0: किशोर कुमार मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे, तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए, और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज खत्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे। वो सिर्फ गाना गाते थे, और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
1: ओह क्या बात है, तो ऐसी तमाम यादें होती हैं। हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को का भी समावेश कर

0: किशोर कुमार मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे। तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज खत्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे। वो सिर्फ गाना गाते थे और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
1: ओह क्या बात है। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को का भी समावेश करते होंगे। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं
0: जी।
2: वो शाम कुछ

0: गाने के बाद हम आते हैं उस मुद्दे पर। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग में, आपकी चित्रकारी में मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है, एक पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उन आदिवासी लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना, खंगाला, बताइए विस्तार से।
1: हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया और वहाँ पर हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया देखना इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और वो साथ साथ एग्जिबिट थे एक ही छत के नीचे। तो उस तरह से मेरा भी संपर्क जो है आदिवासी कला से वहाँ से शुरू होता है और उसके बाद उन सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर उन के गांव जाना, उनके गांव में जा करके उनके साथ काम करते हुए समय बिताना, ये सारा चीज़ जो है उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। तो वो उनका जो देखना है वो इतना निर्दोष है और उनका जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी इस आस्था को कहाँ से अपने चित्रों में प्रकट करें। तो ये जो देखना था और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपनी सीधी साधी अप्रोच की तरफ। तो उसका एक प्रभाव पड़ता ही है। और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के आखिरी चित्र देखें तो वो लोग भी इसी सिंप्लिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं। जो हुसैन हो चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है तो वो उसी ही

0: सादगी, उसी आस्था और उसी मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है,
1: मिलता है। कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके जहन में आ रही है इस समय कि आप कहीं गए हों और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
0: वैसे तो मैं घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र नहीं बनाता हूं, क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहे हैं और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था, अब मेरे लिए जो रंग हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी है, मैं देखता हूँ कि हर रंग अपने में एक प्रश्न है जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव को जब जानना शुरू करते हैं तो वो खुद आपको चमत्कृत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चमकता हुआ ऑरेंज था, और वो इतना ज़्यादा चमकीला और इतना ज़्यादा ब्राइट था कि मैं खुद 3 दिन तक उस पर कुछ काम नहीं कर पाया और रोज सिर्फ बैठ करके उसको देखा करता था कि अब इसके साथ ऐसा कौन सा रंग लगाया जाए जो उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने मेरी सहायता करे। और 3-4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया और मेरे लिए बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था वो ब्राउन कलर में बदल गया।
1: गजब।
0: और तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ था जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। तो ये जो रंग अपने भेद खोलते हैं किसी एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही एक आश्चर्य की बात होती है और मेरे लिए चमत्कार, आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक अप्रोच रखूं।
1: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि जो रंगों की बात की तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, किन रंगों का ज्यादातर प्रयोग करते हैं और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है, आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं?
0: हाँ, मेरी पहले तो मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था और वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी था, किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हरी रंग एक बड़ी चुनौती है। पीला रंग लगाना सबसे मुश्किल काम है।
1: हम अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहेंगे हरा रंग आपको पसंद है और अखिलेश जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क हरा, तोता हरा और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग जी।
0: हाँ, तो मुझे मतलब फिर रंग बरतते वक्त कैनवास पे मुझे ये भी लगा कि मुझे उसे अपने जीवन में भी बरतना चाहिए, तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया और उस तरह से बहुत ही रंगों से जो डरते हुए लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच उनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है ये मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें तो आपको उसके अंदर और भी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, कई रूप भी नज़र आने लगते हैं, कई रेखाएं भी नज़र आने लगती हैं, किंतु हम अपने देखने पे हमेशा इतना संदेह करते हैं कि हम उसको समझना चाहते हैं, जो कि एक गलत रास्ता भी हो सकता है
1: जी।
0: किसी चित्र को समझने की जरूरत नहीं है, उसे देखने की जरूरत है। तो जब आप देखना शुरू करते हैं तो वो आपके साथ उसका एक संवाद शुरू होता है और वो चित्र खुलना शुरू हो जाता है आपके साथ धीरे धीरे। आप अपने घर में लाके उसको लगाते हैं तो आप उसको रोज अगर देखते हैं तो रोज आपको एक नए कुछ उसमें चीजें नजर आने लगती हैं। तो वो एक तरह से ग्रो भी होता है आपके साथ रहते रहते, जैसे हम लोग भी ग्रो होते हैं वैसे चित्र भी विकसित होता रहता है लगातार। तो ये जो चीजें हैं हर दर्शक को ख्याल रखनी चाहिए
1: जी। बिल्कुल, यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना आना है, तो कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मैं चाहूंगा कि भूपेन का एक गाना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन,
1: मौसम फिल्म का गाना है
0: जी। हाँ,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: गाने से पहले बात चल रही थी रंगों की, रंगों की बहुत सारी बातें आपने बताई और एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया, इंदौर में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज दिए थे, एक बेंगलोर में दिया था एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि फिर 3-4 महीने लगेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 3-4 महीने बेंगलोर चला जाता हूँ। तो फिर मैं बेंगलोर चला गया था और वहाँ से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ, और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया और प्रदर्शनी लगाना, कलाकारों से मिलना, बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहाँ के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं, जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह करके भी चित्रकला का संसार प्रकट हुआ
0: जी। और एक हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आए और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना है जरा बताइए।
1: वो मेरा पहला वनमेन शो था बम्बई में और जहांगीर आर्ट गैलरी में, और ओपनिंग में चेस्टर हविस करके एक अमेरिकन कलेक्टर थे जो कि

0: सालों से हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे, तो वो संयोग से मेरे एग्जीबिशन में आ गए थे। और मैं चूंकि अमूर्त चित्र बनाता हूं, तो उन्होंने मेरे एग्जीबिशन से 4-5 चित्र खरीद लिए, जिसको देख करके मतलब जाहिर है एक अलग तरह का वो फैला, और वो पूरा एग्जीबिशन जो है मेरा आधे घंटे में सेल आउट हो गया था। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी चमत्कार की बात थी। और फिर दूसरे दिन चर्चा हबीज आए, उन्होंने फिर अपने को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि भाई मैं हूँ मेरे कलेक्टर और मैं ये काम करता रहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो और उनकी पत्नी डेविडा दोनों थे, और फिर उन्होंने हमसे बात बात करी, तो काफी रुचि पूर्वक उनसे बात हुई। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी खास कलाकार थे उन सब के चित्र जो है वो खरीदा करते हैं, और उनका एक बड़ा कलेक्शन उनके पास था।
1: तो हम सब के लिए कितनी गौरव की बात है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, कि विदेश से एक बंदा आकर अपने देश की चित्र को, अपने देश की कला को ले जाते हैं, तो हम सब के लिए फख्र की बात है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मकबूल फिदा हुसैन से आपका नाता रहा है, और तो इनके बारे में बताइए, इनसे कुछ खास बारीकियां सीखने को मिली या अपने पिताजी से ही सब कुछ सीखा आपने?
0: हाँ नहीं, हुसैन साहब से तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला, और हुसैन साहब के साथ एक ऐसा संबंध बना बाद में जा करके कि उनकी मैंने जीवनी भी लिखी, और उनकी जीवनी जब पढ़ी उन्होंने और लंदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो बोले यार हमारी ऑटोबायोग्राफी से आपकी बायोग्राफी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, क्योंकि उसका 6 महीने में दूसरा एडिशन छपा था, तो इतनी ज़्यादा वो बिकी थी। तो हुसैन साहब इस बात से बहुत ही खुश हुए थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराओ तो अपन लंदन में रिलीज करेंगे। और फिर वो अनुवाद इतने धीमी गति से हुआ, बाय द टाइम जब तक वो अनुवाद पूरा हुआ हुसैन साहब दुनिया में नहीं रहे, तो वो उनकी ख्वाहिश अधूरी रही। एक उनकी दूसरी भी ख्वाहिश थी, उनका 1956 में पहला वन मैन शो हुआ था प्राग में, और वहाँ पर उनके साथ उनकी जो इंटरप्रिटेटर थी मारिया, उनके साथ उनका प्रेम शुरू हुआ, और फिर बाद में उनसे वो शादी भी करना चाह रहे थे तो वो हो नहीं सके। और मारिया ने जब ये शादी करने के लिए गए, उन्होंने मना कर दिया कि भई आप दूसरी संस्कृति से आते हैं, मैं दूसरी संस्कृति को बिलोंग करती हूँ, तो शायद ठीक से नहीं होगा। तो हुसैन साहब ने उस दौरान उन 4-5 सालों में 3 वन मैन शो किए थे प्राग में, और तीनों उनको डोनेट कर दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे। तो कई साल बाद 2002 में मैं जब दुबई गया, तो हुसैन साहब ने मुझे बताया कि मारिया आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और एक बड़े फोटोग्राफर से शादी कर ली है उन्होंने, और मैं अभी उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने मेरे 80 चित्र वो जो उनको मैंने भेंट करे थे वापस लौटा दिए। और वो उन्होंने 80 चित्र जो है अपने घर के एक कमरे में पूरे डिस्प्ले कर रखे थे, और वो बहुत महत्वपूर्ण चित्र इसलिए भी थे कि वो सारे चित्र 1956 के पहले के थे,
1: जी, जी,
0: और हुसैन साहब का हुसैन बनना 1956 में बिटवीन स्पाइडर एंड द लैंप नाम की पेंटिंग से होता है, उसके बाद हुसैन हुसैन बनते हैं। मगर ये सारे काम जो हैं 50 से लेके 55-56 तक के सारे काम थे, और बड़े खूबसूरत काम थे। ये उस चरनी को दिखा रहे थे जो हुसैन साहब ने तय की थी अपने को पाने तक की। वो चाहते थे कि मैं हुसैन और मारिया के प्रेम प्रसंग पर एक नॉवेल लिखूं।
1: तो आपने
0: तो मैंने कहा कि भाई उसके लिए मेरे को प्राग जाना होगा और आपके साथ ही जाना होगा। तो हुसैन साहब बोले कि हाँ ठीक है, तो तुम अक्सर अक्टूबर नवंबर में आते हो, अगले साल तुम जून में आना, तो मैं जून में फ्री रहता हूँ, तो अपन दोनों चले चलेंगे प्राग, और फिर मैं आपको उन सारी जगहों को ले जाऊंगा जहाँ हम लोग मिले थे और जो हुआ था। मगर नेक्स्ट ईयर जून 10 को उनकी डेथ हो गई, तो वो हो नहीं पाया,
1: ख्वाहिश अधूरी रह गई।
0: तो उन्होंने जितना मुझे बताया था उसके आधार पर मैंने एक नॉवेल की शुरुआत का अंश लिखा हुआ है जिसका नाम है हुसैन और हसीना।
1: जी, तो हम शुभकामना करते हैं कि वो उपन्यास पूरा हो, क्योंकि अब हमारी भी दिलचस्पी बढ़ गई है कि हम पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जब आप ये बता रहे थे कि उन्होंने सारी पेंटिंग वापस कर दी।

0: यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी भी आपने लिखी है, अब लेखन की बात चली है तो आपके लेखन के पक्ष को भी हम उजागर करना चाहते हैं। अपने श्रोताओं को बता दें कि अखिलेश जी बहुत बढ़िया, और इनके भीतर सुंदर कलम की ताकत है, बहुत बढ़िया लेखक भी हैं। तो आप इसके बारे में बताइए, कैसे बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी लिखने की बात मन में आई, प्रेरणा मिली आपको?
1: हाँ, मैंने है ना ऑटोबायोग्राफी लिखी है हुसैन साहब की और रजा साहब की और जगदीश स्वामीनाथन की, और जो बीबी कारंत थे उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपने जब आखिरी दिन थे, बीमारी के दिन थे, उस दौरान कन्नड़ की एक प्रसिद्ध राइटर है वैदेही, उनको बोल करके अपनी ऑटोग्राफी लिखवाई थी कन्नड़ में, और उसमें ये हुआ कि उसका एक अंग्रेजी अनुवाद हुआ, और अंग्रेजी अनुवाद तो बाबा कारंत जो है भारत भवन में थे, और हम लोगों की बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और उनके साथ काफ़ी गहरे संबंध भी थे। तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने जीवन भर काम जो किया है, ज़्यादातर काम जो है हिंदी नाटकों में किया है, हिंदी भाषा में किया है, और स्कंदगुप्त जैसा नाटक किया है, चंद्रगुप्त जैसा नाटक किया है, ये जयशंकर प्रसाद के इतने कठिन नाटक हैं कि जिसको करने के लिए किसी भी डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई थी, मगर बाबा कारंत एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे कि उन्होंने स्कंदगुप्त में से स्कंदगुप्त नाटक क्या है वो ढूंढ निकाला। और अगर आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का ये नाटक तो शायद आप, मैं भी नहीं समझ पाया कि इसमें नाटक कहाँ है। ही वॉज ब्रिलियंट माइंड एक्चुअली। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया और वो अभी छपने के प्रोसेस में है
0: जी।
1: तो वो इस वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही एक मार्क शागाल बड़े पेंटर हुए हैं रशिया के, जो पेरिस चले गए थे, और फिर बहुत ही जो तीन बड़े चित्रकार हैं जिन्होंने काफी बड़े बदलाव लेके आए चित्रकला के संसार में, उसमें मार्क शागाल, पिकासो और मातीस का नाम लिया जाता है। तो उनकी भी जो ऑटोबायोग्राफी थी लावी मतलब द लाइफ, उसका मैंने अनुवाद किया है आप बीती नाम से
0: जी जी।
1: और ये तो आप बीती सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए भी कि मार्क शागाल ने अपने को इतने ऊपर से देखा है, इतना ऑब्जेक्टिवली देखा है कि आपको भरोसा नहीं होता ऐसा कि कोई व्यक्ति अपने से बाहर रह करके अपने बारे में इस कदर लिख सकता है। वो यहूदी थे तो यहूदियों पर उस वक्त रूस में जो जुल्म हो रहे थे उन सबका उन्होंने वर्णन किया, उनके परिवार पे जो संकट आते थे यहूदी होने के नाते, यहूदी होने के नाते उनको कई चीजों से वंचित रहना पड़ता था, मास्को में नहीं जा सकते थे यहूदी लोग बगैर परमिशन के, और अगर जाएंगे तो उनके पास एक नौकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं नौकर हूं। ये सारा उन्होंने भुगता, मगर पूरी किताब में शिकायत का एक स्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको पढ़ते वक्त। वो एक सीधे कविता की तरह उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि वो हर किसी को पढ़ना चाहिए
0: जी,
1: कि कोई व्यक्ति अपने को अपने से बाहर रह करके कैसे देख सकता है इतने ऑब्जेक्टिवली।
0: ये बहुत बड़ी बात है और एक वैचारिक समृद्धि भी मिलती है इस तरह की किताबें पढ़कर।
1: हाँ।
0: तो हम सबको पढ़नी है ये किताब। और आपका जो लेखन पक्ष है उसमें और भी बहुत कुछ है, अचंभे का रोना और दरस पोथी और शीर्षक नहीं, इन किताबों में क्या दर्ज है हमारे श्रोताओं को?
1: ये जो मेरी किताबें हैं इन

0: किताबों में मैंने चित्रकला पे और चित्रकारों पे जो बातचीत करी है वो है इन सारी जगह में, और उसमें कई चीजें ऐसी भी हैं जो मतलब पहली बार किसी ने चित्रकला में उसको छुआ है और उस पर बात करी है। तो ये सारे निबंध हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग चित्रकारों के ऊपर भी हैं और चित्रकला के प्रश्नों पर भी हैं। तो ये मेरे निबंधों की किताब है एक तरह से, जो 5-7 है, एक उनके बारे में भी है शीर्षक नहीं दरस पोथी और अचंभे के रोने के अलावा। तो इस तरह से मतलब काफी लिखने का मेरा कोई पैशन नहीं है, मतलब मैंने जितना भी लिखा है हमेशा किसी के कहने पे लिखा है।
1: जी,
0: जैसे हुसैन साहब की बायोग्राफी भी उनके कहने पे मैंने लिखी
1: जी।
0: वैसे ही मतलब कभी किसी ने कहा कि स्वामीनाथन पे लिख दो, तो फिर स्वामीनाथन की बायोग्राफी मैंने उन पे लिखी। तो ये सारे जो आर्टिकल्स या जितना भी मेरा लेखन का पक्ष है वो मतलब किसी के आमंत्रण पे है वो।
1: जी, तो दोनों में से कौन सा आपका पसंदीदा शौक है, पेंटिंग या लेखन?
0: मेरे लिए तो पेंटिंग ही है, मतलब लिखना तो कभी कभार है, मतलब मैंने ऐसा कुछ खास नहीं। अभी इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूँ स्वामीनाथन के साथ मेरे जो पर्सनल संबंध थे, इतने साल 9-10 साल मैंने उनके साथ काम किया भारत भवन में, उसके बाद 14-15 साल उनके साथ संपर्क रहा, तो एक लंबा संपर्क था और मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी स्वामी से मिलना और स्वामी जी को जानना। क्योंकि जब हम लोग 74 में पहली बार दिल्ली गए थे तो वहां पर ट्रिनाल देखने गए थे हम लोग, इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी और बहुत एक्साइटेड थे। जब रात को लौट रहे तो वहां कैनॉट प्लेस पे एक हमने बैनर देखा, 6 who declined ट्रिनाले। तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी 6 लोग हैं, 6 कलाकार हैं जिन्होंने ट्रिनाल को जो है कैंसिल आउट किया। तो धूमिमल आर्ट गैलरी में वो एग्जीबिशन थी, तो हम लोग धक्का मुक्की करके जैसे तैसे अंदर घुसे तो हमें स्वामीनाथन ही दिखे एक चित्रकार की तरह। तो उनसे मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे सीनियर लोग जो थे, तो मैं तो उस वक्त सेकेंड ईयर में ही था, तो मैं तो सबसे जूनियर था तो सबसे पीछे ही था। तो मैंने भी अपनी स्केचबुक आगे जब बढ़ाई तो स्वामी जी ने एक ऐसे पलट के देखा, मेरे ख्याल से फ्रिक्शन ऑफ सेकंड हमारी नजरें मिली होंगी, उन्होंने ऑटोग्राफ करके लौटा दिया और फिर हम लोग चले भी आए
1: जी।
0: फिर जब 81 में मैं इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू देने के लिए बैठा था, तो स्वामी जी मेरे पास सीधे आए और बोले हम लोग पहले मिल चुके हैं।
1: क्या बात है।
0: तो मेरे लिए तो एकदम से मतलब
1: आश्चर्य हुआ,
0: बहुत ही आश्चर्य था, क्योंकि मुझे तो याद रहना चाहिए था कि मैं स्वामीनाथन से मिला हूँ, पर स्वामी जी को वो इतनी सी झलक उन्होंने देखी, ठीक से देखा भी नहीं होगा शायद, इतनी भीड़ थी, इतना सारा क्राउड था। बस उन्होंने वो स्केचबुक लौटाते वक्त एक जो होता है देखना उड़ती सी नजर, बट ही रिमेम्बर वेरी क्लियरली कि हम लोग पहले मिल चुके हैं
1: जी। यहाँ पर याद कीजिए कोई गाना, कौन सा गाना सुनवाया?
0: मैं यहाँ पर मोहम्मद रफी का एक गाना, फिर मिलोगे कभी,
1: इस बात का वादा कर लो, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने से पहले आपके लेखन पक्ष की बात हो रही थी, कुछ अनुवाद भी आपने किए हैं बहुत सारे, तो उन अनुवाद की किताबों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: तो एक तो मैं बता चुका हूँ मार्क शागाल की, मैंने ऑटोबायोग्राफी का अनुवाद किया। दूसरा एक बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा की एक छोटी सी किताब है, तो उसका मैंने एक अनुवाद किया था। एक स्वीडन के नॉवेलिस्ट हैं अग्नेता प्लायल, उनका एक नॉवेल है डॉग स्टार, वो बहुत ही बढ़िया नॉवेल है। और उसमें भी वही बात है कि वो सारी झंझटों तकलीफों और मुसीबतों के जिक्र के बावजूद भी उसमें शिकायत का कोई स्वर नजर नहीं आता है, उसकी जो नायिका है उसका। तो एक मैंने उसका अनुवाद किया, और ये जो बाबा कारंत के ऑटोबायोग्राफी है उसका अनुवाद। तो इस तरह से अनुवाद का कर्म जो है, मैं मतलब अपने पढ़ने के ही एक ढंग को विकसित करने का तरीका है
0: जी, वो। जी बिल्कुल। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग्स बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों में संग्रहित हैं, देश में विदेश में, यहाँ तक कि फ्रांस ललित कला अकादमी, महात्मा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्धा और भारत भवन में तो है ही। तो ये जो इतनी सारी पेंटिंग्स का संग्रह है आपके पास, हमारे श्रोताओं को बताइए तकरीबन कितना बड़ा संग्रह है और कैसे किया ये सब मुमकिन? एक आम जिंदगी में, एक आम चित्रकार के खाते में नहीं आता है।
1: नहीं, मेरे ख्याल से सभी चित्रकारों के खाते में आता है, और वो बस ये है कि उनको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए और उसको लगातार दिखाते रहना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे चित्रकार मेरे दोस्त हैं और अभी भी इंदौर में रहते हैं, बढ़िया काम करते हैं, और सच में वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मेरे को उनके काम को देख करके रश्क होता है कि काश मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर वो लोग कभी दिखाते नहीं हैं। तो ये जो एक दिखाना है, प्रदर्शन करना है, ये एक बहुत जरूरी पक्ष है। अदरवाइज कुछ ऐसा हो जाएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब हमें ये तो देखना ही चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं तो लोगों तक पहुंचे कैसे। तो वो जो पहुंचना है उसी का एक रास्ता है जिसमें इन सारे संग्रह में वो कलाकृतियां जा पाती हैं, या उसमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तभी वो आपके चित्र को खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह का अनुभव भी मेरा रहा है कि जब भी मैंने कहीं शो किया है तो लोगों ने उसको पसंद किया है, और उसमें से कई चित्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण कलेक्शन में गए हैं।
0: और ये लोगों के लिए सीखने के लिए भी एक
1: जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसको हम अगर दिखाएंगे नहीं तब उसके बारे में हम कैसे कुछ तय कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो दर्शकों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अपना बनाना। तो वो जो बनाना है, खाली वहीं पर चित्र खत्म नहीं होता है, चित्र पूरा होता है जब एक दर्शक उसे देखता है।
0: सही बात है। तो भारतीय संस्कृति और कला का बड़ा ही गहरा संबंध है, और आप अपनी पेंटिंग में भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को भी उकेरते हैं, तो ये कैसे होता है उन तमाम श्रोताओं के लिए बताइए जो सीख रहे हैं।
1: हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी हमारी

0: चित्रों में आता है या हमारे स्वभाव में या हमारी बातचीत में या हमारे लिखने में, वो आपके उसी अनुभव से पैदा होता है जो आपने यहाँ रह करके उसको जाना समझा और भोगा है। तो ये जो संबंध आपका जो बना है अपनी परंपरा से और जो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से और जो अपने दृश्य से, जो अपने रंगों से, वो ही आपकी एक स्थायी स्मृति में अनकॉन्शियसली चित्र बनाते वक्त काम करते हैं
1: जी।
0: तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई हमें बहुत जागरूक करके, एक अच्छा चित्रकार जो है वो बहुत कीन ऑब्जर्वर भी होता है, बहुत ध्यान से देखने वाला, वो एक एक चीज समझने वाला, मतलब अपनी तरह से उसको एब्जॉर्ब करने वाला होता है और वो सारी चीजें अनकॉन्शियसली बाद में आपके काम में दिखाई देती हैं। तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ था, मेरे जो प्रदर्शनियां हुई वो जापान से लेकर के कैलिफोर्निया तक, मतलब मेरे ख्याल से तमाम देशों में भी, और उसमें ऐसे भी हुआ कि जर्मनी में शो हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब फ्रांस में हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब लंदन में हुआ तो, मगर ये तीनों देश ऐसे हैं कि अगर एक तरह के चित्र एक देश में पसंद है तो दूसरे देश में नहीं हो सकते हो।
1: जी जी जी।
0: क्योंकि उन लोगों के बीच में अपनी एक जो देखने समझने की फांक है वो बहुत बड़ी है। तो ये नहीं हो सकता कि जो जर्मनी में पसंद किया जा रहा है वो फ्रांस और लंदन में भी पसंद हो, या जो लंदन में पसंद किया जा रहा है वो जर्मन लोग भी पसंद करें। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है,
1: जी,
0: क्योंकि
1: जी।
0: जर्मन आदमी भी मनुष्य है और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं वो सारे मनुष्य हैं, क्योंकि मेरे चित्र कोई गाय बैल जानवर तो देखते नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं है मेरे इसमें जो कॉमन फॉर्म है, ऐसे कोई लाइन नहीं है जो कॉमन लाइन है, मगर रंग एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, तो वो शायद रंग ही हैं जो मनुष्य को संबोधित हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एनलाइटनिंग चीज थी कि मैं उसके साथ अपने चित्रों को भी समझ पाया कि मेरे चित्र में ऐसी कोई ये बात है जो एक मनुष्य को संबोधित है, चाहे वो जैपनीज हो, चाहे वो, मतलब जो चित्र न्यूयॉर्क में पसंद किए जाते हैं वो कैलिफोर्निया में बिल्कुल नहीं होते हैं। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में भी उतना ही पसंद किया गया जितना कैलिफोर्निया में। तो ये जो चीजें होती हैं, मतलब इसी ने मुझे बाध्य करा कि मैं अपने चित्रों में उस एलिमेंट को समझने की कोशिश करूं जो एक अलग अलग संस्कृति और अलग अलग विचार और अलग अलग जीवन शैली को जीने वाले लोग पसंद कर रहे हैं।
1: जी जी। यहाँ पर आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मेरे ख्याल से हमें वो है जरा खफा खफा
1: जी सुनते
0: ये वाला सुनता।

0: इस गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके लिए माना जाता है कि आपने पेंटिंग की एक नई परिभाषा गढ़ी है, एक परंपरा को नए सिरे से परिभाषित किया है, तो ये किस तरह से किया है, क्या प्रयोग किए हैं आपने?
1: मेरे ख्याल से जो कलाएं हैं, सभी कलाएं जो हैं भविष्योन्मुखी हैं और वो अपनी परंपरा से कुछ लेती हैं और उसको पुनर्परिभाषित कर देती हैं। तो ये जो एक सतत उसका अपना स्वभाव है जो चलता रहता है, हमारी कलाएं जो हैं अतीत में नहीं झांकती हैं, वो अतीत से जो कुछ भी लेना होता है वो ले लेती हैं और अपने भविष्य में अपने विचरण जारी रखती हैं। तो ये जो उनका स्वभाव है कलाओं का, वो अपने आप ही इसको इस तरह का बना देता है जिसमें आप अपनी परंपराओं से बहुत सारी चीजें सीखते समझते और बरतते हैं और उनका एक नया रूप सामने आता है, वो पुनर्परिभाषित होकर के नए ढंग से आपके सामने आती हैं। तो ये एक संबंध जो है उसका अटूट संबंध है और इसीलिए कलाएं जो है हमेशा नई और आकर्षित करने वाली होती हैं।
0: जी, और हमारे उन श्रोताओं के लिए बताइए कि जो सीख रहे हैं, जो पेंटिंग की आपकी बारीकियां हैं, किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? जैसे बहुत सारी बातें हैं जो सीखते हैं, तो किस तरह का पेपर, ब्रश और रंग का मिलान कैसे करें उसे?
1: ये जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें तकनीकी रूप से भी ऑपरेट होती हैं और मेरे ख्याल से कोई भी चित्रकार अगर एक अच्छा चित्रकार है तो वो पहले तकनीक को अच्छे से जानता समझता है और फिर उसको बरतता है। तकनीक का गुलाम नहीं होता है, तकनीक उसकी गुलाम होती है।
0: जी जी।
1: तो चाहे हम वाटर कलर करें, चाहे हम पेस्टल कलर करें, चाहे एक्रेलिक, चाहे ऑयल, इन सब के करने का जो ढंग है वो अलग होगा। तो उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से हर युवा चित्रकार के लिए ये जो पीरियड होता है अपना कॉलेज का समय, उसका 4 साल का 5 साल का, वो इन सब तकनीकों को सिखाने के लिए एक लंबा समय होता है और वो उस वक्त उसको पूरे तन मन धन से ये काम करना चाहिए कि वो अपने को एक विद्यार्थी की तरह बरते। अभी मैं देखता हूँ कि विद्यालय में जाते से ही वो अपने को आर्टिस्ट की तरह बरतने लगते हैं, जो कि एक गलत रास्ता है। आप हमेशा विद्यार्थी रहेंगे तो आप ज्यादा सीख सकेंगे और मुझे ये भी लगता है कि एक चित्रकार जीवन भर एक विद्यार्थी ही बना रहता है, वो लगातार सीखता ही रहता है, दूसरों के चित्रों से भी सीखता है, अपने चित्रों से भी सीखता है।
0: ये कहा जाता है कि एक चित्रकार के लिए ये जरूरी है जानना कि कौन कौन से रंग को मिलाए तो अगला रंग बनता है, जैसे आपने बातचीत के दौरान बताया।
1: हाँ,
0: ये भी थोड़ा सा बताया।
1: ये बहुत ही जरूरी होता है कि है ना, आप रंगों के मेल मिलाप से भी एक नया रंग बनाना सीखते हैं और आप रंगों को पास पास रख कर के भी एक नया रंग का अनुभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों चीजें आपको लगातार काम करने से ही आती हैं। रदा साहब अच्छी बात कहते थे कि चित्रकला वो मुश्किल प्रेमिका है, वो उसके पास चली जाएगी अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे वाले के पास चली जाएगी। तो जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं और फिर उसने अपने अनुभव से उसको बरत सकते हैं।
0: एक चित्र को बनाने में कितना वक्त लगता है ये बताएंगे?
1: इसमें दोनों तरह की चीज होती है। कई बार चित्र जो है खुद भी इतने

0: जिद्दी होते हैं कि वो पूरा होने में 3 महीने 4 महीने लगा सकते हैं, और कई बार काम शुरू होते से ही आप उसमें इतना रम जाते हैं कि उसी दिन वो चित्र पूरा होता है। ये एक तरह की परिस्थिति पे भी निर्भर करता है कि कब आप किस मूड में किस तरह से उस काम को शुरू किए हैं, और फिर इसमें यात्राएं भी बीच बीच में बहुत सारे व्यवधान पैदा करती है। तो एक चित्र आपने बनाया, तो चित्र बनाना हमेशा स्थगन का काम है, आप हमेशा अपने विचारों को रोक देते हैं वहां जहां आपने चित्र छोड़ा है। विचार बहुत तेजी से भागते हैं, तो आप अगर उनका पीछा करने लगते हैं तो शायद चित्र बिगड़ सकता है, मगर आप रोक कर रखते हैं अपने को, अगले दिन आते हैं फिर वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन आते हैं तब भी वहीं से शुरू करते हैं जहां छोड़ा था। तो ये जो एक मुश्किल प्रक्रिया भी है कि जिसमें आप अपने को रोके रखते हैं, भले ही विचार आपके उससे आगे जा रहे हों मगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते,
1: और वापस उस चित्र में उस यात्रा में वापस लौटना भी
0: मुश्किल होता है वो।
1: जी, इस पूरी बातचीत में अखिलेश जी आपने बड़ी ही काम की बातें और बड़ी ही प्रयोगशील बातें बताई हैं, और इतनी सारी जानकारी के लिए, इतनी दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। इसके अंतर्गत हमने सुनी मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आए जो वो जिंदगी में तो खुशियों की पालकी पर बैठ मन चल पड़ा था एक अनजानी दुनिया में। उनका दामन थाम खुशियों की गुल्लक भरते रहे, उनकी प्यार भरे निगाहों ने फूलों की बारिश की, अधरों ने लिख दी जिंदगी की नई वसीयत और फिर जिंदगी ख्वाब बन गई।

जब जिंदगी की रफ्तार में इंसान खुद को दौड़ता हुआ रोबोट बना लेता है, जब इंसान महज लफ्ज़ का जादूगर हो जाता है, जब इंसान में जज्बात नहीं रह जाते, तो वो इंसान नहीं बल्कि एक पुर्जा में तब्दील हो जाता है। जिंदगी में धूप, बारिश, नमी, बादल का एहसास बना रहे, इसलिए वक्त निकाल कर खुद से गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है।

हंसने की चाहत कई बार जिंदगी को आंसुओं का सैलाब बना देती है। आंखों की नदी को मुस्कुराहट से ढक लेते हैं हम। दिल में खामोशियों का जहां होता है, चेहरा यूं ही कुछ बोलता रहता है, क्योंकि बोलना इंसान की फितरत है। भीड़ में रहते हुए भी हम एकाकी होते हैं, हंसने की चाहत में हम आंखों में नदी भर लेते हैं।

हम दर्द, हम साया, हम सफर का जुदा होना, जिंदगी जैसे अंधेरे से घिर जाती है, जाने वाला चला जाता है दूर, कहीं दूर, लेकिन दिल नहीं मानता। दिल अपने भीतर उम्मीद का दिया जलाए रखता है कि शायद वो आएगा। टूट कर भी जीने का हौसला पा लेता है दिल। कुछ अजीब है ये दिल, अजीब है ये जिंदगी।

वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें मिलती है सच्ची मोहब्बत। मोहब्बत कभी स्वीकारोक्ति की मोहताज नहीं होती। मोहब्बत में जलकर भी अपनी और उसकी राहें रोशन कर लेते हैं। हर किसी के हिस्से में नहीं आती सच्ची मोहब्बत। कुछ लोग मोहब्बत की राहों में चलते हुए भटक जाते हैं। वे नहीं समझ पाते मोहब्बत की गहराई। ऐसे में तन्हाई मुस्कान बनकर उनका साथ निभाती है।

हमारे मन में यादों का सागर होता है, कुछ दर्द भरी यादें, कुछ खुशगवार यादें। कुछ दर्द भरी यादों की लहरों से हमारा मन चोटिल होता रहता है, कुछ दर्दीली यादें हमें सहलाती भी हैं, हमें सिखाती भी हैं, कुछ प्यारी यादें हमें इस तरह गुदगुदाती हैं कि हम खुद को भूलकर किसी की जादू भरी बातों में खो जाते हैं।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने

कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, शुभ संध्या। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत है समीर का, संगीत है जतिन ललित का और फिल्म का नाम है गुलाम।

लीजिए सुनिए अगला गीत किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है गुलशन बावरा, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है झूठा कहीं का।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: नुसरत बद्र का लिखा गीत सुनिए श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में। संगीतकार है इस्माइल दरबार और फिल्म का नाम है देवदास।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म का नाम है रॉकी।

आइए अब सुना जाए अगला नगमा अलका याग्निक की आवाज में। अनु मलिक के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है समीर ने और फिल्म का नाम है लज्जा।

तराने नए पुराने। श्रोताओं, अभी आप इस कार्यक्रम को सुन रहे थे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। श्रोताओं, कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और इसके बाद 6:05 पर आप विविध भारती नागपुर केंद्र से मराठी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम

0: FM 100.6 मेगाहर्ट्सवर विविध भारतीचं हे नागपूर केंद्र आहे. संध्याकाळचे 6:15 झालेली आहेत.
1: घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी. शुद्ध नमक देना, शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम इवेपोरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है.
2: तो ऐसा बोलो ना,
1: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान. ये हुई ना बात.
3: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध की बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण.
4: भारत सरकार द्वारा खनिज क्षेत्र में किए गए दूरदर्शी सुधार आज भारत की मजबूत नींव बन रहे हैं.
5: इन्हीं प्रयासों को नई गति दे रहा है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन. ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और सामरिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक क्रिटिकल एवं रणनीतिक खनिजों की खोज को मिल रही है नई दिशा.
4: MECL देश की खनिज आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने हेतु खनिज संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के. MECL रहा है राष्ट्र निर्माण.
7: नागपूर महानगर पालिकेकडून प्रॉपर्टी टॅक्स वर खास सवलत. 31 जुलै 2026 पूर्वी चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 चा मालमत्ता कर ऑनलाईन भरा आणि मिळवा 15% सूट. तसेच वसुली केंद्रावर ऑफलाईन भरल्यास 10% सूट उपलब्ध. घरी बसून ऑनलाईन सुविधेचा लाभ घ्या, वेळ, इंधन आणि त्रास वाचवा.
8: अधिक माहितीसाठी नागपूर महानगरपालिकेच्या वेबसाईटला भेट द्या. जनहितार्थ प्रसारित.

जय माला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहला गीत हेमंत कुमार और साथियों की आवाजों में, गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीतकार हैं नौशाद और फिल्म का नाम है गंगा जमुना।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे समर्पण का।

0: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
4: 20 जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
5: कौन लाया?
0: लव स्टोरी। इस फिल्म का गीत सुनिए अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

नूरी। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है नक्श लायलपुरी, तर्ज है खयाम की।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।
1: सुबह जलाओ, शाम जलाओ।
2: सर्वोत्तम क्वालिटी का स्वरूप देव दर्शन धूप।
3: एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
4: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: एक दूजे के लिए इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार।

0: सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन है कल्याण जी आनंद जी की और फिल्म का नाम है गजब।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है योगेश, संगीत है सलील चौधरी का और फिल्म का नाम है अन्नदाता।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय माला।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत आज सुनिए राग अनुराग में रागों पर आधारित कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। गीतकार हैं भरत व्यास, संगीतकार हैं सी रामचंद्र और ये गीत आधारित है राग माल कौंस पर। फिल्म का नाम है नौ रंग।

अगला गीत है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीतकार हैं भरत व्यास, संगीतकार हैं एसएन त्रिपाठी। फिल्म का नाम है रानी रूपमती और ये गीत आधारित है राग मधु माधवी सारंग पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं रोशन, फिल्म का नाम है ममता और ये गीत आधारित है राग यमन पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग में आज आपने सुने रागों पर आधारित कुछ फिल्मी गीत।

हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं झलकी वो कैसी होगी, लेखिका सुधा जौहरी, प्रस्तुतकर्ता एच एस व्यास।

0: मुझे।
1: अरे
0: अरे राम,
1: कैसे चलती हो माँ? क्या हुआ?
0: अरे मेरे बेटा उठाओ, हाथ तो पकड़ो लो, लो, बेटा।
1: अरे हाथ दो ना माँ।
0: अरे अरे मार दिया।
1: अरे भगवान को दुआ दो अम्मा के हड्डी पसली नहीं टूटी, और भीड़ भाड़ की वजह से स्कूटर की स्पीड कम थी।
0: अरे बेटा मैं तुम्हारी अपनी ही धुन में चली जा रही थी, तुम्हारे स्कूटर से ना मैंने थैला टकराया और बस फिर पैर उखड़ गए बेटा।
1: लगी तो नहीं ना अम्मा?
0: अब बेटा बुढ़ापे का शरीर है तो गिरी तो झटका तो लगा ही ना, भीड़ को देखो कोई मेरा रुका भी नहीं। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो बेटा?
1: मैं तो यहीं पास सब्जी मंडी तक।
0: अच्छा बेटा तो चलो मुझे भी वहीं पर उतार देना, मुझे भी उधर ही जाना है, फिर मैं चली जाऊंगी।
1: अच्छा कुछ पानी वानी पियोगी अम्मा?
0: नहीं अब ठीक है बेटा, अब चल।
1: अच्छा लो बैठो पीछे। हाँ, हाँ, कस के पकड़ना मुझे। हाँ,
0: हाँ, हाँ
1: और सड़क पर चलो ना अम्मा तो दाएं बाएं देख के चला करो। हाँ
0: अरे वो तो मैं बड़ी होशियारी से चलती हूँ हमेशा, वो तो क्या है ना आज मंगलवार है तो हनुमान चालीसा बोलती जा रही थी, वो तो अच्छा हुआ कि पवन सुत ने बचा लिया।
1: वैसे कौन हो अम्मा, कहाँ रहती हो?
0: अरे बेटा मैं कौन, छोटी थी तो सब शंभू की छोकरी कहते थे, बड़ी हुई तो राम नारायण की बहू, फिर शंकर की अम्मा और अब सोनू की दादी।
1: फिर भी माँ बाप ने कोई तो नाम रखा होगा ना अम्मा है?
0: हाँ बेटा रखा था नाम शारदा। अरे बेटा तुम्हारा नाम क्या है?
1: मेरा नाम अंशु, अंशुमान।
0: ओ अंशु, ये तो बेटा आंसू जैसा नाम लगे, आगे क्या बोला बेटा?
1: मान, अंशुमान। सूरज को कहते हैं अम्मा।
0: ओ अब आजकल के नाम तो बेटा समझ में भी ना आवे, अब मेरा ही नाम देखो ना शारदा, नाम विद्या की देवी और पढ़ी कुल पांचवी तक। अरे बेटा सब्जी मंडी तो आ गई।
1: हाँ, आपको कहाँ उतारू अम्मा, मुझे तो यहीं सामने जाना है।
0: बस बेटा यहीं सामने उतार दे। अरे ये तो कुछ जासूस इंटरनेशनल है बेटा, तुम जासूसी करते हो?
1: नहीं नहीं वो तो ऐसे ही कुछ काम है अम्मा।
0: अच्छा भगवान तेरा भला करे, अच्छा चलती हूँ।
1: क्या बुढ़िया है, वहां तो हाय हाय कर रही थी और अब क्या फुर्ती से जा रही है मटक मटक कर। खैर
2: जैन सर, ये जासूसी कंपनी खोले एक हफ्ता हो गया पर कुल दो केस आए और वे भी हमसे सुलझे नहीं।
3: यू नो मधु, हर काम में वक्त लगता है। पहले कुत्ता खोने का केस आया था, दे वर स्टूपिड पीपल, छोटा कुत्ता छोटा कुत्ता छत पर चढ़ गया, उतरना उसको आता नहीं था और बस उन्होंने शोर मचा दिया।
2: राइट सर, एकदम बुद्धू लोग थे।
3: और दूसरा लड़की भागने वाला, हम तो उसे ढूंढ ही लेते पर लड़की समझदार थी, ब्राइट गर्ल, पता चल गया उसको कि दोस्त गड़बड़ है, सो घर लौट आई।
2: अगेन यू आर राइट सर।
3: यू नो ये शहर बहुत बड़ा यानी मेट्रो टाइप नहीं है। यू नो जब मैं न्यूयॉर्क में था
2: सर, लाल बत्ती जली, कोई गेट पर है सर।
3: देखो देखो उस छिपी खिड़की से देखो, मैं भी देखता हूँ।
2: वो देखिए सर, स्कूटर पार्क करके एक नौजवान आ रहा है।
3: हाँ तुम बाहर के ऑफिस में जाओ क्विक, बस इसे ऐसा लगना चाहिए हम बेहद व्यस्त जासूस हैं। यू नो द यूजुअल ट्रिक्स।
2: ऑफ कोर्स सर, 5 मिनट में लेकर आती हूँ, गुड लक सर।
3: तब तक मैं ऑफिस जमा लूँ। ओहो कितनी मिट्टी है मेज पर, साफ करने का भी वक्त नहीं है, खैर देखा जाएगा। हाँ मेरी किताब है, ये मोटी वाली खोल लेता हूँ।

0: मे आई कम इन सर?
1: कम इन।
0: सर, ये मिस्टर अंशुमान है।
1: हेलो, आई एम जयंत, जयंत भंडारकर।
2: हेलो सर। सर, आप अभी लेंस से क्या देख रहे थे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
1: आप देख रहे हैं ना मेज पर कितनी धूल है।
2: हैं?
1: इस पर जो भी आता है अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ जाता है। और भी बहुत कुछ है, वो हमारी सीक्रेट स्पेशल बातें हैं।
2: जी,
1: मैं बता नहीं सकता। कहिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं?
2: वो बात ये है सर कि वो क्या हुआ कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तय कर दी है सर।
1: और आप करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप किसी और लड़की से मोहब्बत करते हैं, राइट?
2: नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बात ये है सर कि मैं उस लड़की को देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, और उससे भी पहले ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़की है कैसी।
1: तो आप उसके घर या कॉलेज को नहीं चले जाते?
2: नहीं जा सकता ना सर,
1: क्यों?
2: क्योंकि सर वो एमए कर चुकी है और उसके घर के सब लोग मुझे पहचानते हैं। लड़के लड़की को एक दूसरे को दिखाने का चलन हमारे यहाँ आज भी नहीं है ना।
1: ठीक है, आप हमें सिर्फ उसका पता दे दें, फिर सब कुछ हम पर छोड़ दें। वो लड़की का नाम क्या है?
2: जी, लड़की का नाम है शारदा। लाइए, पता मैं लिख देता हूं। सर, आपकी फीस?
0: फिलहाल तो आप 500 रुपए जमा करा दें।
2: बिल्कुल, ये लीजिए, ये लीजिए सर। सर, आप लोग कैसे क्या करेंगे?
1: लिसन मिस्टर, मेरी सेक्रेटरी मधु उससे दोस्ती करेगी, फिर वह उसको किसी सुनसान पार्क में ले जाएगी।
2: फिर सर?
1: उधर एक गुंडा इनको छेड़ेगा,
2: सर फिर?
1: दूसरी तरफ से मैं और आप आकर उस गुंडे को पीटेंगे।
2: हाँ सर।
1: मैं उसे कॉलर पकड़ कर ले जाऊंगा और आप उससे आराम से बातें करिएगा।
2: वाह, क्या बढ़िया, ब्रिलियंट आइडिया है सर। क्या प्लान है सर, एकदम फिल्मी अंदाज में। बाय गॉड, मजा आ जाएगा
1: आप
2: सर।
1: जानते हैं न्यूयॉर्क में लोग मुझे क्या कहते थे?
2: क्या कहते थे सर?
1: जयंत नहीं, जायंट।
2: जायंट? पर सर, जायंट तो मतलब वो क्या कहते हैं कि बड़ी बड़ी भारी भारी भरकम चीज को कहते हैं, और आप तो माशाल्लाह बड़े मुख्तसिर से एकदम मिनी इंसान हैं, छोटे से बिल्कुल हल्के फुल्के हैं।
1: यही तो है, कोई देखने में जायंट लगता है विशालकाय, और कोई दिमाग से जायंट होता है जैसे शर्लिक होम्स, जेम्स बॉन्ड, हरक्यूलिस।
2: ये सब तो सर दुनिया के मशहूर उपन्यास वाले जासूस है ना
1: हाँ,
2: सर।
1: और मैं असली जासूस हूं, जयंत द जायंट।
0: सर, दूसरे ऊपर के खर्चों के लिए जैसे गुंडे को देना होगा और फिर हम लोगों का आना जाना।
1: राइट, क्या नाम है आपका?
2: जी, वो क्या बोलते हैं, अंशुमन, अंशुमन।
1: मिस्टर अंशुमन, 500 रुपये और जमा करा दीजिए।
2: लीजिए सर, ये लीजिए मैडम।
1: तो ठीक है अंशुमन, हम आपको संपर्क करके जगह और दिन बता देंगे।
2: ठीक है सर, मैं चलता हूं। सर, जितनी जल्दी हो सके प्लीज। अच्छा सर, मैं चलता हूँ, बाय सर।
0: सर गया, हमें 1000 रुपए दे गया।
1: पैसे लेने वाले गुर तो तुम्हें याद है ना मधु?
0: यस सर, पहले 500 रुपए बोलो, अगर उसकी चेहरे पर कोई रेखा ना उभरे तो किसी बहाने 500 और मांगो, और फिर कोई रिएक्शन ना हो तो 500 और।
1: खैर, अब तुम बताओ उस लड़की शारदा से दोस्ती कैसे करोगी?
0: वो तो मैं कर लूंगी, पर गुंडे का इंतजाम वो मुझसे नहीं होगा।
1: अरे दूर जाने की क्या जरूरत है, मेरा भाई है ना, वो मेरी बुआ जी का लड़का, वो तो लड़की छेड़ने की बात सुनते ही फौरन मान जाएगा।
0: आप चंद्र जी की बात कर रहे हैं? वो तो इतने हैंडसम हैं, गुंडे कैसे लगेंगे सर, और फिर वो तो जेंटलमैन लगते हैं।
1: मेकअप माय डियर, मेकअप तुम बस देखे जाओ।
0: पता तो यही लगता है, वो पीला वाला घर है। चलो घंटी बजाते हैं। चल मधु, ओखली में सिर दिया है तो मूसलों से क्या डरना।
3: जी कहिए, क्या काम है आपको?
0: मैडम, मैं कुछ सर्वे कर रही हूँ इस क्षेत्र की महिलाओं का, आपसे कुछ पूछ सकती हूँ?
3: हाँ, आइए बैठिए, अब पूछिए जो भी पूछना है आपको।
0: आपका नाम?
3: टाइप किया हुआ फॉर्म है ना आपके पास, लाइए मैं खुद ही भर देती हूँ। वैसे मेरा नाम शारदा है, आप?
0: मधु, मैं मधु हूँ।
3: इस सर्वे से क्या होगा मधु जी?
0: पता चलेगा ना किस उम्र यानी एज ग्रुप की महिलाएं क्या क्या कर रही हैं।
3: अच्छा, ये लीजिए, भर गया आपका फॉर्म।
0: ओह, तो आपने एमए किया है, आजकल क्या कर रही हैं आप?
3: अभी तो कुछ नहीं मधु जी, सिर्फ बोर हो रही हूँ।
0: शारदा जी, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं बने आपके? यानी आजकल तो चलन है, फैशन है।
3: अरे नहीं मधु जी, हमारी तो

0: परवरिश, हमारे संस्कार कुछ ऐसे ही हैं। पर ये बताइए, आपका है कोई खास?
1: अरे कहाँ, ना किसी ने सीटी बजाई, ना कभी किसी हैंडसम यंग मैन से टक्कर हुई। पर हाँ, मन जरूर करता है कि कोई स्पेशल मिले।
0: जरूर मिलेगा मधु जी, ऊपर वाला सबका जोड़ीदार बनाता है। वैसे आप रहती कहाँ हैं?
1: शारदा जी, बस यहीं पास ही। तुम शाम को बोर होती हो तो घूमने क्यों नहीं आती?
0: अब अकेले कहाँ जाऊं मधु।
1: मैं भी अकेली हूँ। ऐसा करें, कल शाम पार्क चलें, पर जरा सुनसान है।
0: अरे अच्छा है मधु, भीड़ भाड़ से वैसे भी जी घबराता है, मुझे तो सुनसान जगह ज्यादा पसंद है। चलो, एक दोस्त तो मिली आप जैसी।
1: तो कल शाम 6 बजे?
0: हाँ ठीक है मधु, कल साथ चलते हैं। ऑल राइट, ओके मधु, बाय
1: ओके बाय।
0: बाय।
2: चंदर, ये चंदर, वो देखो, वो आ रही है मधु और शारदा।
3: हाँ?
2: जयंत भैया, आप देखिए, आपकी मधु कितनी अच्छी लग रही है पिंक लिबास में, एकदम गुलाब के फूल जैसी।
3: अबे तुझे मधु को नहीं, मधु को नहीं, शारदा को छेड़ना है।
2: हाँ?
3: वो देख उधर, वो वहां अंशु भी छिपा बैठा है।
2: हाँ?
3: अरे वो पास आ गई है, जा।
0: सच मधु, कितनी ताजगी है हवा में, जी चाहता है इसे बाहों में समेट लें।
1: पर सन्नाटा कितना है, पता नहीं लोग यहाँ क्यों नहीं आते। शारदा देखो, तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है।
0: आने दो, होगा पार्क में कोई।
1: शारदा अजीब सा आदमी है।
0: अरे कुछ नहीं करेगा, आराम से चलो। ओ देखो मिस्टर, यह बदतमीजी नहीं चलेगी यहाँ पर। उधर जाकर टहलो, जो तुम्हारी कोहनी जो है ना, लड़कियों को ना लगे।
2: कोहनी जरा तिरछी हो गई, आपकी ये चुन्नी भी कितनी खूबसूरत है, ऐसे छूलू?
0: आपकी टोपी, बनियान, रुमाल और लूंगी भी बहुत खूबसूरत है, मैं भी जरा इन्हें छू लूं। ये ले गुंडा।
2: अरे मेरी मां,
0: अरे ये खा,
2: अरे
0: अब ये भी मां।
2: अरे अरे अरे अरे मेरी लूंगी, मेरी लूंगी।
1: बस शारदा, बस बस बस, अरे बस करो, लोग आ रहे हैं। बस शारदा, अरे बस करो, बस करो, लोग आ रहे हैं।
2: अरे मैं तैयार मर गया।
4: अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ?
0: तुम अंशु मां,
4: तुम, आप मुझे जानती हैं?
0: फोटो देखी है, तो ये ड्रामा तुमने किया है?
4: मैं दरअसल तुम्हें देखना, तुमसे मिलना, बात करना चाहता था शारदा।
0: तो अब ये बेचारा तो बीच में ही पिट गया ना, अब उठाओ भाई इसे।
1: इन्हें मैं संभालती हूँ। चंदर जी अब ठीक तो है ना?
3: अरे क्या घपला हो गया, जासूसी कैसी की तैसी।
1: चंदर जी ज्यादा लगी क्या?
2: तुम्हारा हाथ लगते ही दर्द गायब हो गया मधु, लग रहा है गुलाब के फूलों का सहारा मिल रहा है।
1: हटिए भी,
0: तो इसलिए तुम जासूसी संस्था में गए थे?
4: हाँ वो, पर तुम्हें कैसे मालूम? ओ तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आवाज पहचानी सी क्यों लग रही है मुझे?
0: वो लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है।
4: मैंने तुम कल, तुम यूं, अम्मा तुम ही थी ना? तुम ही थी ना?
0: हाँ बेटा, मैं हूँ शंभू की छोरी शारदा।
4: तो कैसा लगा शारदा? ए शर्माने से काम नहीं चलेगा, चलो मैं ही बता देता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी शारदा, बस मेरी कल्पना साकार हो गई, अब तुम बताओ ना।
3: अरे रे रे रे रे रे रे रे रे रे। अरे ये इन दोनों को क्या हुआ? लगता है कि जासूसी का धंधा बंद करना पड़ेगा, ये सेक्रेटरी तो गई काम से। मधु मधु,
1: सॉरी सर, सॉरी सर, लो चंदर जी पानी पियो।
0: क्यों मधु, हो ही गई ना हैंडसम यंग मैन से टक्कर, हट।

0: नगरपालिकेच्या वेबसाईटला भेट द्या. जनहितार्थ प्रसारित.
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन. कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में.

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए गायक और संगीतकार A.R. रहमान और श्वेता शेट्टी की आवाजों में महबूब का लिखा गीत। फिल्म का नाम है रंगी।

आइए अब सुना जाए अगला गीत अलीशा चिनॉय, कुमार सानू और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं जफर गोरखपुरी और फिल्म का नाम है होंडा राज।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यह है राष्ट्रीय सेवा विविध भारती। आइए सुनिए अगला गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं नदीम श्रावण और फिल्म का नाम है राजा।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं वाजिद खान, श्रिया घोषाल और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं कौसर मुनीर, संगीत है साजिद वाजिद का और फिल्म का नाम है एक था टाइगर।

0: अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का

0: उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
1: We heard 26 delegates from
2: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
3: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की खेड से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं जिनमें 3

0: की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: I also refer to the unwarranted...
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई। असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए आशा भोसले की आवाज में, नगमा निगा।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में अगला गीत। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है सूरज।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था।

0: जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत रचना कल्याण जी आनंद जी की, और फिल्म का नाम है इशारा।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में वो नगमा जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है मदन मोहन का और फिल्म का नाम है पूजा के फूल।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में इंदिवर के बोलो।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, तर्ज है शंकर जयकिशन की और फिल्म का नाम है संगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां

0: रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोधे प्याली में।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद सम्मानित कपूर परिवार की सदस्य हैं। परदादा पृथ्वीराज कपूर, दादा राज कपूर, पिता रणधीर कपूर और माँ बबीता की लाडली बेटी करिश्मा प्यार से पुकारी जाती हैं लोलो। वैसे घर में कोई इन्हें लोलीमा तो कोई लोला भी कहता है।

करिश्मा कपूर परिवार की ऐसी पहली महिला सदस्य हैं जिन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया। हालांकि इससे पहले उनकी मां बबीता और चाची नीतू सिंह भी फिल्मों से जुड़ी थीं, लेकिन कपूर परिवार से जुड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों से नाता तोड़ लिया। और जब करिश्मा ने फिल्मों में काम करने की बात अपने परिवार के सामने रखी तो उनकी ये बात मानने के लिए कोई राजी नहीं हुआ और तब उनका साथ दिया उनकी माँ ने और इस तरह करिश्मा आ गई फिल्मों में। तब उनकी पहली फिल्म आई प्रेम कैदी।

करिश्मा को अपने फिल्मी करियर को संवारने में उनकी माँ बबीता ने हर कदम पर उनका साथ दिया और करिश्मा ने भी अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि फिल्मों में आने का उनका फैसला गलत नहीं था।

करिश्मा कपूर के शुरुआती फिल्मी करियर में आने वाली ज्यादातर फिल्में गोविंदा के साथ आईं और बाकी की फिल्मों में भी करिश्मा के डांसेस और खूबसूरती का करिश्मा उनकी एक्टिंग पर हावी रहा।

करिश्मा कपूर एक संवेदनशील अभिनेत्री हैं, ये बात बताने का मौका करिश्मा को नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो खुद भी कहीं ना कहीं ऐसे मौके की तलाश में थी और आखिर ये मौका उन्हें दिया श्याम बेनेगल ने। फिल्म थी जुबैदा।

करिश्मा कपूर की कुछ और चर्चित फिल्में थीं अनाड़ी, खुद्दार, राजा बाबू, कुली नंबर वन, बीवी नंबर वन, शक्ति, राजा हिंदुस्तानी, साजन चले ससुराल। आइए सुने कुछ सुरीली झलकें।

करिश्मा के करिश्माई हुस्न और जादुई अदाकारी का दीवाना तो पूरा जमाना है, और शायद ये बात वो भी अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए फिल्मों से नाता तोड़ना वो भी नहीं चाहेंगे।

0: रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

सामिन, मैं आजकल सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं अपना प्रेम कहीं रख कर भूल गई हूँ। हाँ, मैं अपना प्रेम कहीं रख कर भूल गई हूँ। ढूंढ रही हूँ उसे। दुख का दरवाजा खुला, करुणा के कमरे में झांका, हंसी को हटाकर देखा, सपनों की भी तलाशी ली, कहीं न मिला तो आज ही थाने में जाकर रपट लिखा दी है कि प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है। हाँ, प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है एक भी पल।

कहते हैं चखे बिना तो नमक तक की परख पूरी नहीं होती, और मैंने मोहब्बत कर ली, स्वाद चख भी लिया। हाँ, कैसे थे मोहब्बत के वो पल, इश्क की वो गलियां। अब कुछ याद नहीं रखना चाहती मैं, कुछ भी तो याद नहीं रखना चाहती।

तुमसे ही की थी मोहब्बत, हाँ कुछ कुछ याद है मुझे, पर अब मैं भूलने लगी हूँ। तुम जो चाहो कहो, मेरे दिल को कुरेदो। तुम जो चाहो कहो, मेरे दिल को कुरेदो। मेरे सीने में गुलाब भर भर के बिखेर तो चाहे। मैं भूल चुकी हूँ सब कुछ कि तुम करते थे मुझसे कभी प्यार, चूमते थे मेरी पेशानी को, मेरे हाथों पर करते थे बोसों की अनगिनत बरसात। हाँ भूल चुकी हूँ मैं अब सब, भूल चुकी हूँ मैं अब सब।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बदल चुकी हूँ मैं, भुला के तुमको आगे बढ़ चुकी हूँ मैं। और प्रेम ही तो सब कुछ नहीं है, हुँ? ये न तो मांस है, न ही कोई पे, न नींद, न तूफानी बारिश से बचने के लिए छत, न ही डूबते हुए लोगों के लिए कोई तैरता हुआ सहारा। फिर क्यों करूं मैं मोहब्बत, क्यों याद रखूं तुम्हें मैं, हाँ फिर क्यों तुम्हें याद रखूं मैं।

जीवन में जो आई थी उमंग, पतझड़ में जो आया था वसंत, सर्दियों की वो बहकी बहकी रातें, प्यार की सारी वो गहरी गहरी बातें, वो प्रेम को निभाने का अटल इरादा, हमेशा साथ रहने का वो वादा, सब धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तुमने आसानी से कह जो दिया था, भूल जाओ ये सब, और मैं भूल गई हूं सब सब कुछ सब सब कुछ।

जब प्यार खत्म होता है तो दिल में एक खालीपन रह जाता है। निसंदेह तुम्हारे जाने से घर खाली हो गया था और जीवन सूखी बंजर जमीन, पन्ने जिंदगी के खाली रह गए थे। दिल के किसी सुनसान कोने में पीड़ाएं चुपचाप घर कर गई थीं। हाँ, ये सच है, पर अब समय का मरहम उन्हें भर चुका है। हाँ, समय का मरहम उन्हें भर चुका है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे साथ रहे ना रहे, मेरा साथ दे ना दे, मैं अब आजाद हूँ। अब मैं अपने वश में हूँ। हाँ, अब मैं अपने वश में हूँ, किसी और के नहीं।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें

रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमेरिकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने

0: की चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 106.6 MHz पर यह है विविध भारती का नागपुर केंद्र। रात की 11:05 और 17 सेकंड हो गए हैं। हाजिर हो गए हम लेकर के बेला के फूल। आज के बेला के फूल की शुरुआत कर रहे हैं हम सौतन फिल्म के गीत से। गीत को गाया है किशोर कुमार ने, लिखा है सावन कुमार ने और धुन बनाई है उषा खन्ना ने।

श्रोताओं, अब सुनते हैं इंदिवर का लिखा हुआ गीत। फिल्म है दयावान। गीत को संगीत में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाजें ज्वाली मुखर्जी और सपना की।

श्रोताओं, बेला के फूल में अब आप सुनेंगे रवि के संगीत निर्देशन में गहरा दाग फिल्म का गीत। गीत को गाया आशा भोसले मोहम्मद रफी ने, लिखा है शकील बदायूनी ने।

श्रोताओं लीजिए अगला गीत 40 डेज इस फिल्म से आशा भोसले मन्ना डे की आवाजों में। गीत को लिखा कैफी आजमी ने, धुन बनाई बाबुल ने।

श्रोताओं, बेला के फूल की ये आखिरी पेशकश, नौजवान फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़, साहिर लुधियानवी के बोल, एसडी बर्मन का संगीत।

विविध भारती का ये नागपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब सुनिए मौसम की जानकारी। बीते 24 घंटों के दौरान नागपुर और इसके आसपास के इलाकों का अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस था। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 2 डिग्री से कम रहा। आने वाले 24 घंटों में नागपुर और इसके आसपास के इलाकों में आसमान बादलों से छाया रह सकता है। इसके साथ ही जोरदार बारिश की भी संभावना है। साथ ही अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। ये थी मौसम की जानकारी। FMN शंभर पूर्णांक 6 मेगाहर्ट्ज वर आकाशवाणी नागपुर सह हे विविध भारती केंद्र आहे। रात्रीचे 11:30 आणि 5 सेकंद झाली आहेत। आमच्या केंद्राचे आजचे कार्यक्रम संपलेत। पुन्हा आपली भेट होईल उद्या सकाळी 5:55 शुभ रात्री। जय हिंद।